शुभ प्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026 प्रातः के 5:58 और 22 सेकंड हो रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। अब हम अपने दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

0: इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत भजन गुलशन कुमार और साथियों के स्वर में। आराधना करते हैं प्रातःकाल की इस सुबह में माँ के, और चलते हैं उनकी शरण में, क्योंकि सारा जहां है जिसकी शरण में माँ की महिमा बसी है हर कण कण में। आइए मिलकर अपनी दोनों हथेलियों को जोड़ते हैं और माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी केंद्र छिपापात केंद्र से। आइए श्रोताओं सुनते हैं अगला भजन। माँ तो ममता की मूरत होती है, जब कोई भी भक्त माता के दरबार में जाता है तो वह केवल ज्ञान धन यह शक्ति नहीं मांगता, बल्कि वह माँ का असीम प्यार मांगता है। आइए इस प्यारे से भजन को हरिओम शरण के स्वर में सुनते हैं और माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए अब चर्च करते हैं गुरु की आराधना और सुनते हैं ये शब्द देवेंद्र सिंह के स्वर में। राजपाट वैभव नहीं चाहिए मुझे, चाहिए तो मन का सुकून और अपने आराध्य का आशीर्वाद।

लीजिए, आप सुनिए अफजल हुसैन के स्वर में ये नात। अल्लाह की इबादत करना हम सब का एक कर्तव्य है, लेकिन उनकी बताए नेक रास्ते पर चलना हमारी अनिवार्यता है।

आइए श्रोताओं, आप कार्यक्रम के अंत में माता संतोषी की आराधना करते हैं, आरती करते हैं। आज उनका प्रिय दिन भी है। माँ संतोषी तो नाम ही संतोष का है। जो मन में संतोष रखता है, माँ उसी के घर में सुख संपत्ति का भंडार बढ़ती है। गुड़ अर्चना परम प्रियता में संतोष किए, संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दिए।

माँ संतोषी की आरती के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

प्रातः के 6:30 हो रखे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान, गायक स्वर है सुरेश वाडेकर का और संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकेयी का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था, विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना यह है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकेयी को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे सुरेश वाडिका और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ही नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:40 हो रखे हैं। प्रस्तुत है चिंतन।
1: भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सब में संभाव से व्याप्त हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। सभी प्राणी ईश्वर के ही रचे हुए हैं और ईश्वर सबके अंदर हैं। वे अकारण भी कृपा करते हैं। उनका स्वभाव है दया करने का, कृपा करने का और रक्षा करने का। इंसान तो उन्हें अक्सर भूल जाता है, पर वे एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते। वे कहते हैं कि मुझे जो जिस भाव से भजता है, मैं भी उसे उसी भाव से भजता हूँ। जो भगवान को अपना मानता है, भगवान भी उसे अपना मानते हैं। भक्तों के संबंध में उन्होंने कहा है कि मैं भक्तों के पराधीन हूँ। जब से सृष्टि की रचना हुई है और जब तक सृष्टि रहेगी, प्राणी और भगवान का साथ हमेशा हमेशा रहा है और हमेशा हमेशा रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उपदेश करता हूँ, मैं अनुमंता हूँ, मैं भरता हूँ, मैं महेश्वर हूँ, मैं धारण करने वाला हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पितामह हूँ, मैं पिता हूँ और मैं शीघ्र ही मृत्युलोक से उद्धार करने वाला हूँ। जो हमें बनाता है, जो जीवन दाता है, जो भरण पोषण करता है, शरीर यात्रा पूर्ण हो जाने पर नया शरीर देता है या फिर मुक्त कर देता है और हमें हर पल हमारे लिए वह सब करता रहता है, वही हमारा परम आत्मीय है। ईश्वर के साथ आत्मीयता स्थापित करने के लिए मनुष्य लालायित रहता है। जिस प्रकार सूरज अपना प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में बिना किसी पक्षपात के बिखेरता है, जिस प्रकार पृथ्वी अमीर गरीब ऊंच नीच के भेदभाव के बिना सभी को आश्रय देती है, उसी प्रकार ईश्वर करुणा निधान है जो सभी जीवों पर संभाव रखता है। ईश्वर में असीम आस्था रखकर कर्म मार्ग में अग्रसर होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होने से मनुष्य के सभी कर्मों का नाश हो जाता है और वह बंधन मुक्त हो जाता है। ईश्वर से अधिक गुण संपन्न कोई नहीं है जो निर्माण की इच्छा लिए ज्ञान संपन्न होकर प्राणियों पर अनुग्रह करता है, वही ईश्वर है। उसके ज्ञान से उपासक जिस पदार्थ की इच्छा करता है, उसको वो प्राप्त हो जाता है। किंतु ब्रह्म भाव से ईश्वर का चिंतन करने के लिए ईश्वर को सगुण तथा साकार मानना आवश्यक है। वर्तमान में हर कोई यही सोचता है कि हम किसी के लिए कुछ करेंगे तभी कोई मेरे लिए भी करेगा। सांसारिक व्यक्तियों में विश्वासघात, बेईमानी, धोखाधड़ी देखी जा सकती है, परंतु परमात्मा अत्यंत विश्वसनीय है और हम सब के लिए सर्व प्रकार से मंगलकारी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, दयालु और सच्चिदानंद स्वरूप है।
0: ये था आज का चिंतन। श्रोताओं, साधारण शब्दों में हम अगर देखें, आत्मीयता का अर्थ है गहरा भावनात्मक जुड़ाव या अपनापन, या शारीरिक आकर्षण से परे दो लोगों के बीच का वह मजबूत रिश्ता है जहां वे बिना किसी से डरे अपने विचार, भावनाएं और राज एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। इसलिए सही कहा है कि भगवान के बताए रास्ते पर चलकर न केवल हम मानसिक शांति को प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने उस मानसिक बल से इस गहरे भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन का एहसास भी कर पाते हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:45 होने को है। प्रस्तुत है गांधी कथा।

माता की अनुज्ञा और आशीर्वाद लेकर और कुछ महीनों का बच्चा स्त्री की गोद में छोड़कर मैं बड़ी उमंगों के साथ बंबई पहुंचा। पहुंचा तो जरूर, पर वहां मित्रों ने भाई से कहा कि जून जुलाई में हिंद महासागर में तूफान उठते रहते हैं और इसकी ये पहली समुद्री यात्रा है, इसलिए दिवाली के बाद यानी नवंबर में भेजना चाहिए। किसी ने तूफान में किसी जहाज के डूब जाने की बात भी कही। इससे बड़े भाई चिंतित हुए। उन्होंने इस प्रकार जोखिम लेकर मुझे तुरंत भेजने से इनकार किया और मुझे बंबई में एक मित्र के यहां छोड़कर खुद वापस अपनी नौकरी पर राजकोट लौट गए। एक बहनोई के यहां रुपए रख गए और अनेक मित्रों से मेरी मदद करने की सिफारिश भी करते गए। बंबई में मेरे दिन कटना कठिन हो गया, मुझे विलायत के ही सपने आया करते। इसी बीच बिरादरी में खलबली मची, पंचायत बुलाई गई, कोई मोड़ बनिया अब तक विलायत नहीं गया था और मैं जा रहा हूं तो मुझसे जवाब तलब होना ही चाहिए। मुझे पंचायत में हाजिर होने का हुक्म मिला, मैं गया। मुझे पता नहीं कि मुझ में कहां से यकायक हिम्मत आ गई, मुझे हाजिर होने में न हिचक हुई और न डर लगा। बिरादरी के सरपंच से दूर की कोई रिश्तेदारी भी थी, पिताजी के साथ उनके संबंध अच्छे थे। उन्होंने मुझसे कहा, बिरादरी समझती है कि तुम्हारा विलायत जाने का विचार ठीक नहीं है, हमारे धर्म में समुद्र यात्रा की मनाही है, फिर हम ये भी सुनते हैं कि विलायत में धर्म की रक्षा नहीं हो सकती, वहां साहबों के साथ खाना पीना पड़ता है। मैंने उत्तर दिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि विलायत जाने में तनिक भी अधर्म नहीं है, मुझे तो वहां जाकर विद्या अभ्यास ही करना है, फिर जिन चीजों का आपको डर है उनसे दूर रहने की मैं अपनी माता के सामने प्रतिज्ञा कर चुका हूं, इसलिए उनसे मैं दूर रह सकूंगा। मुखिया जी बोले, पर हम तुमसे कहते हैं कि वहां धर्म नहीं बच सकता, तुम जानते हो कि तुम्हारे पिताजी के साथ मेरा कैसा संबंध था, तुम्हें हमारा कहना मानना चाहिए। मैंने उत्तर में कहा, पिताजी के साथ आपके संबंधों का मुझे पता है, आप मेरे लिए बड़े हैं, पर इस मामले में मैं लाचार हूं, विलायत जाने का निश्चय मैं नहीं पलट सकता, पिताजी के मित्र और सलाहकार जो विद्वान ब्राह्मण हैं मानते हैं कि मेरे विलायत जाने में कोई दोष नहीं है, माताजी और भाई साहब की अनुमति भी मुझे मिल चुकी है, पर बिरादरी का हुक्म तुम ना मानोगे, मैं लाचार हूं, मेरा ख्याल है कि इस मामले में बिरादरी को दखल नहीं देना चाहिए। इस जवाब से मुखिया को गुस्सा आ गया, मुझे दो चार खरी खोटी सुना दी, मैं शांत बैठा रहा। मुखिया ने हुक्म दिया, ये लड़का आज से बिरादरी से बाहर माना जाएगा, जो कोई इसे मदद देगा या विदा करने जाएगा बिरादरी उससे जवाब तलब करेगी और उस पर 125 जुर्माना होगा। मुझ पर इस निश्चय का कोई असर न हुआ, मैंने मुखिया महाशय से विदा ली। अब देखना यह था कि भाई साहब पर इस फैसले का क्या असर होता है, वो डर गए तो सौभाग्यवश वो दृढ़ रहे और मुझे लिख भेजा कि बिरादरी के विचारों के उपरांत भी मैं तुम्हें विलायत जाने से नहीं रोकूंगा। इस घटना के बाद मैं अधिक अधीर हो गया, भाई साहब पर दबाव डाला गया तो और कोई विघ्न आ पड़ा तो, इन चिंताओं में दिन गुजर रहे थे कि इतने में पता लगा कि 4 सितंबर को रवाना होने वाले जहाज में जूनागढ़ के एक वकील बरिस्ट्री पास करने के लिए विलायत जाने वाले हैं। जिन मित्रों से भाई साहब मेरे लिए सिफारिश की थी मैं उनसे मिला,

0: उनकी भी ये सलाह थी कि ये साथ छोड़ना नहीं चाहिए। समय बहुत थोड़ा था, भाई साहब को तार दिया, जाने की इजाजत मांगी। उन्होंने दे दी। मैंने बहनोई से रुपए मांगे। उन्होंने बिरादरी के हुक्म की बात कही। वो जाति बहिष्कार का जोखिम उठाने से डरते थे। मैं कुटुंब के एक मित्र के यहां पहुंचा और प्रार्थना की कि आप किराए आदि के लिए आवश्यक रुपए दे दें, पीछे भाई साहब से ले लीजिएगा। इन मित्र ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, मुझे हिम्मत भी दिलाई। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया, रुपए लिए और टिकट कटाया। विलायत की यात्रा का सब सामान तैयार करना था। एक दूसरे अनुभवी मित्र थे, उन्होंने सामान तैयार कराया। मुझे सब विचित्र लगा, कुछ रुचा, कुछ बिल्कुल न रुचा। नेक टाई तो, जिसे बाद को मैं शौक से पहनने लगा था, तनिक भी न रुचती थी। अधकटी जैकेट, नंगी पोशाक लगी। पर विलायत जाने की शौक के सामने इस अरुचि का कोई महत्व न था। राह में खाने का यथेष्ट सामान भी साथ रख लिया। मेरे लिए जगह भी मित्रों ने जूनागढ़ के वकील त्र्यंबक राय मजूमदार के कमरे में ही की थी। उनसे मेरे बारे में सिफारिश भी की। वो प्रौढ़ अवस्था के अनुभवी गृहस्थ थे, मैं 18 साल का दुनिया के अनुभवों से शून्य युवक था। मजूमदार ने मित्रों से मेरे बारे में बेफिक्र रहने को कहा। इस प्रकार मैंने सन 1888 की 4 सितंबर को बंबई बंदरगाह छोड़ दिया।
1: अब सुनिए ये

0: इसी के साथ गांधी कथा अब संपन्न होती है।
1: आप सुन रहे थे गांधी कथा। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रखे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, पहले संस्कृत में, उसके बाद हिंदी में।
2: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषः पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य, हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य 22 दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
3: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री, प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
2: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधार स्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः, सुरक्षा, आर्थिक भविष्यं च सुदृढतया परस्परं संबद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविधपक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालां आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। 57 दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्र यात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिक रूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88,000-3,000 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांधरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर प्रातः के 7 बजकर

0: 5 मिनट और 9 सेकंड हो रहे हैं। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में जानकारी का विषय है डायरिया, कारण, लक्षण और उपचार।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए जो जानकारी लेकर आए हैं उसका विषय है डायरिया रोग कारण, लक्षण और उपचार, और इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता। तो आओ सुनते हैं ये जानकारी।
2: डायरिया की बीमारी को सामान्य भाषा में अत्यधिक दस्त होना कहते हैं, जिसमें जो मरीज होता है उसे बार बार शौच जाने की आवश्यकता महसूस होती है, वो बार बार टॉयलेट जाता रहता है। वैसे तो ये बीमारी है डायरिया की, ये सभी उम्र में समय समय पर कभी भी हो सकती है, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे उनको अत्यधिक हो जाती है, क्योंकि उम्र के साथ में हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे शरीर के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बड़े लोगों में भी डायरिया के रोगी अक्सर पाए जाते हैं। ये जो डायरिया है, वैसे तो ये बीमारी सामान्य रूप से पूरे साल भर ही कभी भी किसी व्यक्ति को, अगर लापरवाही वो बरतेगा अपने जीवन में तो कभी भी हो सकती है। फिर भी जो मानसून का समय होता है, अत्यधिक गर्मी होती है जिसमें कि दूषित खाना जल्दी हो जाता है, तो उसमें जो मानसून का समय और अत्यधिक गर्मी में ये बीमारी हो जाती है। और छोटी उम्र के बच्चों में बीमारी विंटर डायरिया कहलाती है, विशेषकर जाड़ों में ही होती है, जो वायरस के कारण से होती है। ठंड में जो है ना, इसका जो वायरस है वो तेजी से फैलता है, जो रोटा वायरस इसका नाम है, तो इसलिए ये छोटे बच्चों में रोटा वायरस की वजह से जो डायरिया होता है उसे वायरल डायरिया कहते हैं, ये अक्सर हो जाता है। सामान्य रूप से जीवन में हमें स्वच्छता का तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और जो ये बीमारी है मुख्य रूप से खान पीन की दूषित वस्तुओं के कारण ही होती है, तो हमें जो है अपने घर पर स्वच्छता के साथ भोजन बनाना चाहिए और बाहर की चीजों का सेवन कम से कम करना चाहिए। तले भुने पदार्थ, अत्यधिक घी से बनी हुई चीजें, मैदा इत्यादि का सेवन से बचना चाहिए, और जो कोई खाना आप रखा हुआ खा रहे हैं अगर वो खराब महसूस हो तो उसको सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। खाना ताजा बनाकर ही खाना चाहिए, अगर यदि खाना बच गया हो तो उसको किसी जो भी आप पे साधन है ठंडी जगह पर फ्रिज स्वच्छता के साथ में उसको रखा जाना चाहिए। कुछ डायरिया ऐसे होते हैं जो दूषित खाने की वजह से होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं, कुछ इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं, और कुछ डायरिया, विशेष डायरिया का मैं बताना चाहूंगा, एक डायरिया जो है वायरस के साथ साथ में एक लैक्टोज इंटॉलरेंस जो होती है, दूध के जो पदार्थ हैं वो भी कई बारी व्यक्ति को नहीं पचते हैं, जब भी वो दूध का सेवन करते हैं तो उसको बार बार ये बीमारी हो जाती है। वो विशेष रूप से अलग बीमारी लैक्टोज इंटॉलरेंस में आती है, जिसकी अब दवाई भी आ गई है, उसका सेवन के साथ में दूध पच सकता है। वैसे तो इसमें अगर कोई दूध आपको नहीं पच रहा है तो दूध से बने हुए पदार्थों से बचना चाहिए। जो कोई मरीज इस डायरिया से ग्रसित हो जाता है तो जो साथ में लोग हैं उनको देखना चाहिए कि उसको बुखार तो नहीं है, पेट में दर्द कितना है उसको, और जो बार बार जो दस्त हो रहे हैं उसमें पानी की कमी ना हो जाए। डायरिया में जो मुख्य परेशानी पैदा होती है वो पानी की कमी, जिसको इंग्लिश में डिहाइड्रेशन कहते हैं, उस पर ध्यान रखा जाना चाहिए। ये सामान्य बात है कि पहले तो हमें बीमारी हो ही ना, घर में हमारे किसी भी व्यक्ति को बचाव की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए हमें हमेशा फलों का सेवन ज्यादा करना चाहिए, मांस आदि की चीजों से बचना चाहिए, और इसी तरह से हम हमेशा बाजार की चीजों जो है खुले में जो बिकती हैं उनसे बचना चाहिए, फल वगैरह ताजे चाहिए। सबसे पहले स्वच्छता ही मुख्य है, जो भी फल हम सेवन घर में करें उनको पहले हमें धोने के बाद ही सेवन करना चाहिए। जो आजकल जो पेस्टिसाइड्स फलों को पैदा करने में मतलब ज्यादा यूज हो रहे हैं, इस तरह के फलों से बचना चाहिए और हमेशा मौसम के ही फलों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि जो फल रखे हुए होंगे बिन मौसम जो फल हम खाते हैं उनमें जो केमिकल्स से उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, नहीं तो उनका हमारे शरीर में दूषित प्रभाव पड़ता है। उपचार के लिए यह है कि जो मुख्य इसका जो लक्षण है, जो इसका कॉम्प्लिकेशन है, वो डिहाइड्रेशन है। जब भी रोगी को हमारे दस्त शुरू हो तो हमें पानी की प्रचुर मात्रा में पिलाना चाहिए, और पानी जो है हमारा शुद्ध होना चाहिए, और जो सरकारी अस्पतालों से ORS के घोल के पैकेट फ्री मिलते हैं वो घर में रखने चाहिए, और जैसे ही दस्त स्टार्ट हो पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए, और समय पर किसी योग्य चिकित्सक को संपर्क करना चाहिए, इन डायरिया जैसी भयंकर बीमारियों से दूर रहेंगे।
1: डायरिया रोग कारण, लक्षण और उपचार, इस संबंध में अभी आपने डॉक्टर

0: एके गुप्ता से ये जानकारी सुनी। कल फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। नमस्कार।
1: स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत डायरिया कारण लक्षण और उपचार विषय पर जानकारी सुनी। आइए अब सुनते हैं खेती की बातें के अंतर्गत घुलनशील उर्वरकों का पर्णीय छिड़काव विषय पर जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज खेती की बातें कार्यक्रम में विषय है घुलनशील उर्वरकों का पर्णीय छिड़काव। किसान भाइयों, आधुनिक कृषि में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए केवल खेत में खाद और उर्वरक डालना ही पर्याप्त नहीं होता। कई बार फसल में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी दिखाई देने लगती है जबकि खेत में पहले से उर्वरक डाले जा चुके होते हैं। ऐसी स्थिति में पौधों को तुरंत पोषण उपलब्ध कराने का सबसे प्रभावी तरीका पर्णीय छिड़काव, जिसे हम फोलियर स्प्रे के नाम से भी जानते हैं। इसमें घुलनशील उर्वरकों को पानी में पूरी तरह घोलकर पौधों की पत्तियों पर छिड़का जाता है। पत्तियां इन पोषक तत्वों को सीधे अवशोषित कर लेती हैं, जिससे पौधों को शीघ्र लाभ मिलता है। किसान भाइयों, आज बदलती जलवायु, असंतुलित उर्वरक उपयोग, सूखा, अधिक वर्षा तथा मिट्टी की गुणवत्ता में कमी के कारण पौधों में पोषक तत्वों की कमी अधिक देखने को मिलती है। ऐसी परिस्थितियों में घुलनशील उर्वरकों का पर्णीय छिड़काव किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी तकनीक सिद्ध हो रही है। यह कम समय में पौधों को आवश्यक पोषण प्रदान करता है, पौधों की वृद्धि बढ़ाता है, फूल एवं फल गिरने से रोकता है तथा उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार करता है। किसान भाइयों, घुलनशील उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जो पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं और जिनका घोल स्प्रे मशीन से आसानी से पत्तियों पर छिड़का जा सकता है। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और साथ ही इनके साथ जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीशियम तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी उपलब्ध होते हैं। इनका उपयोग फसलों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में किया जाता है। पर्णीय छिड़काव का सबसे बड़ा लाभ यह है कि पौधों को पोषक तत्व बहुत कम समय में उपलब्ध हो जाते हैं। जहां मिट्टी में दिए गए उर्वरकों को पौधों तक पहुंचने में समय लगता है, वहीं पत्तियों पर किए गए छिड़काव का प्रभाव कुछ ही घंटों में दिखाई देने लगता है। किसान भाइयों, सूखा, जल भराव, अत्यधिक गर्मी या ठंड जैसी परिस्थितियों में भी पौधों को अतिरिक्त ऊर्जा और पोषण देने के लिए घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग किया जा सकता है। धान, गन्ना, दलहन, तिलहन, सब्जियों, फलों तथा फूलों की लगभग सभी फसलों में पर्णीय छिड़काव लाभकारी पाया गया है। धान में कल्ले बनने और बालियां निकलने के समय तथा दलहनी फसलों में फूल आने से पहले और बाद में तथा सब्जियों में फूल और फल बनने के समय घुलनशील उर्वरकों का छिड़काव करने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। अब बात आती है भैया, घुलनशील उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया, घुलनशील उर्वरकों की बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक पौधों की हरी वृद्धि बढ़ाते हैं, फास्फोरस युक्त उर्वरक जड़ों के विकास तथा फूल बनाने में सहायक होते हैं, पोटाश युक्त उर्वरक फलों की गुणवत्ता, आकार, रंग और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, संतुलित एनपीके, घुलनशील उर्वरक विभिन्न अवस्थाओं में पौधों को संपूर्ण पोषण प्रदान करते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण से जिंक, आयरन, बोरोन आदि की कमी को भी दूर किया जा सकता है। किसान भाइयों, कई किसान एक साथ कीटनाशक, फफूंदनाशक और उर्वरक मिलाकर छिड़काव कर देते हैं। ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी आपसी संगतता यानी कि कॉम्पेबिलिटी सुनिश्चित हो। यदि जानकारी ना हो तो पहले थोड़ी मात्रा में मिलाकर परीक्षण करें या कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें। किसान भाइयों, पर्णीय छिड़काव से पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता बढ़ती है, जिससे अधिक भोजन बनता है। परिणाम स्वरूप पौधे अधिक स्वस्थ, हरे भरे और मजबूत बनते हैं। फूलों की संख्या बढ़ती है, फल अधिक लगते हैं, दानों का भराव अच्छा होता है और उपज में भी वृद्धि होती है। किसान भाइयों, हमें यह समझना चाहिए कि पर्णीय छिड़काव मिट्टी में दिए जाने वाले उर्वरक का पूर्ण विकल्प नहीं है। किसान भाइयों, आज कृषि में जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों पर अनेक प्रकार के तनाव बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में घुलनशील उर्वरकों का पर्णीय छिड़काव फसलों को तनाव से उबरने, पोषण संतुलित रखने और बेहतर उत्पादन

लेगा हमारा दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में आज आप आनंद ले सकेंगे उषा पंत के गाए रुहेलखंडी लोक गीतों का। समय रहेगा प्रातः 9:25।

सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता में आज हमारा विषय रहेगा वन और भोजन। वन महोत्सव सप्ताह के संदर्भ में आज इस पर आपसे चर्चा की जाएगी। समय रहेगा प्रातः 10:30। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा दिन में 11:30 और एक और प्रायोजित कार्यक्रम हमारी भेड़िया आप सुन सकेंगे दिन में 12:00। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत दिन में 12:15 पर आज आप सुनेंगे लियाकत अली का सारंगी पर बजाया राग पटदीप मिड डे मेलोडी। इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम को सुनिएगा दिन में 12:30 पर और बहनें सुन सकेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार दिन में 1:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे श्रीमती मनीषा की वार्ता बदलता मौसम और खान पान।

श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद प्रसारित होगा रात्रि 9:30 पर। सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप प्रतिभाग कीजिएगा और रात्रि 10:30 पर रात के हम सफर कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। सुगम संगीत में 7:32 पर विविध कलाकारों की गाई नात आप सुनेंगे। कानूनी सलाह के अंतर्गत शाम 6:45 पर एडवोकेट विजेंद्र सिंह से एसके नौटियाल की बातचीत सुनेगा। भेंटवार्ता का विषय रहेगा अवैध कब्जा संबंधी कानूनी जानकारी। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रादेशिक समाचार अब हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: इस दुनिया में आए हैं, ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं, थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है, नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य के आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण की अनुदान राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए SIT दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी।

0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में वीवीजी रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी यह योजना। और मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत, मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आश्रय गृहों सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण के लिए अनुदान राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। एक रिपोर्ट।
1: दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्रय गृहों में रहने वाले मानसिक मंदित और निराश्रित दिव्यांगजन पूरी तरह संस्थागत देखभाल पर निर्भर होते हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन से जुड़े प्रत्येक प्रयास को प्राथमिकता दे रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने हर जनपद में नियमित रूप से सहायक उपकरण वितरण शिविर आयोजित करने और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से रितेश।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के उद्यान और कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि कल जनभवन लखनऊ में आम क्रेता विक्रेता सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के सिलसिले में कल एक बार फिर एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची। जांच को आगे बढ़ाते हुए टीम विभिन्न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। मामले की जांच अवधि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस बीच अयोध्या विकास प्राधिकरण ने श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में आरोपी लोकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। एडीए के सचिव ने बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण नोटिस जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: एडीए की ओर से नोटिस जिस निर्माणाधीन संपत्ति को दिया गया है वह लोकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम दर्ज है। नोटिस में 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने और यह बताने को कहा गया है कि भवन का नक्शा प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं। उधर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने चौकी सिविल लाइन में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत अन्य के खिलाफ तहरीर दी है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्र सरकार की कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना ने 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लिया है।
3: इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल आने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल तिरुपति में विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
4: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जीरामजी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे, पहले विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में अधिनियम के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान, गरीबों को संबल और गांवों के सतत विकास को नई रफ्तार देने का मजबूत माध्यम बनेगी।

0: जी धारण बनाए। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम विकसित उत्तर प्रदेश बनाए। लेकिन विकसित उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम आप सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो विकसित भारत की राष्ट्रीय के रूप में आपके गांव के विकास के लिए भारत सरकार बहुत बड़ा योजना अब आपका विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित राज्यसभा प्रदेश।
1: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 कल पहले दिन शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। परीक्षा के दूसरे दिन आज प्रथम पाली में उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी पाली और कल की प्रथम पाली में प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभाग में बारिश की संभावना जताई है। इस बीच राज्य में मानसून के आने के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, हालांकि कई जिलों में लोगों को अभी भी उमस का सामना करना पड़ रहा है।
2: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।
3: दक्षिण पश्चिम मानसून ने आगे बढ़ने के साथ ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश को आच्छादित कर लिया है। 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना।
2: ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। राज्य के आश्रय गृहों, सह प्रशिक्षण केंद्रों और हाफवे होम में रहने वाले संवासियों के भरण पोषण की अनुदान राशि बढ़ाने का लिया निर्णय। श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले की जांच के लिए SIT दोबारा पहुंची अयोध्या। बार एसोसिएशन ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ दी तहरीर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में VBG रामजी अधिनियम के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण भारत में श्रम को सम्मान और गांवों के विकास को रफ्तार देने का माध्यम बनेगी यह योजना। और मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक जताई बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: मीडिया वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:31 और 42 सेकंड हो रखे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: साथ साथ।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ को लेकर आ गई हूँ मैं आपके साथ, आपकी सखी निधि भारद्वाज। कहिए कैसे हैं आप, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और जुड़े हैं हमसे। बस यही बात हर बार हमें कहनी अच्छी लगती है और आपसे सुननी अच्छी लगती है। और अब तो हमें विश्वास है कि जब हम बोलते होंगे ना तो आप भी साथ साथ दोहराते होंगे इस लाइन को। तो मुस्कुराइएगा क्योंकि बेहद खूबसूरत सुबह में आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा रेडियो कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। श्रोताओं, जैसे सूरज की पहली किरण हमारे जीवन में एक नई उम्मीद और नया सवेरा लेकर आती है ना, वैसे ही हमारा ये कार्यक्रम दिन को ताजगी से भरने के लिए तैयार किया जाता है। आज के सफर में हमारे पास आपसे बेहद खास बात करने के लिए कई पड़ाव हैं। एक तरफ हम अपनी धरती को बचाने का संकल्प लेंगे तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सिनेमा के उस जॉनी से मिलेंगे जिसकी आवाज में एक अलग ही रौब था। तो बने रहिएगा हमारे साथ और शुरू करते हैं आज की यह चर्चा पहले विषय के साथ, सिंगल यूज प्लास्टिक को कहें ना। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे हम मना रहे हैं। आज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे है, यानी वो दिन जो हमें याद दिलाता है कि इस खूबसूरत धरती को हमें प्लास्टिक के चंगुल से आजाद करना है। वो सिंगल यूज प्लास्टिक जो हम चंद मिनटों के इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, प्रकृति को सदियों का दर्द दे जाता है। इस पर मैंने आपके साथ सोचा कुछ पंक्तियां साझी की जाए। सजा रखे हैं आज हम जो कल वो मंजर रोएगा, प्लास्टिक के इस जाल में हर जीव जहर को बोएगा। उठाओ कदम कि अब इस जमीन को बचाना है, सिंगल यूज प्लास्टिक को अब मिलकर ना कहना है। तो श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस पर हम ये कर सकते हैं कि प्लास्टिक के खतरों के प्रति जागरूकता हम में तो है, उसको व्यवहार में ले आएं और जागरूकता को और बढ़ाएं। पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने का वैश्विक अभियान है ये और इसमें हम लोग सहयोगी बने। साथ ही आप जानते ही हैं कि एक प्लास्टिक बैग को नष्ट होने में 100 से 500 वर्ष तक का समय लगता है। तो भला बताइए, हम अच्छे लगेंगे क्या अपनी धरती को इस तरह से परेशान करते हुए? बिल्कुल नहीं ना। और फिर हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको भी जब हम खाना पीना देते हैं तो ऐसे बर्तनों में देंगे जो प्लास्टिक से दूर हैं, है ना। एक और बात, ये मिट्टी और भूजल को जहरीला बना देता है, समुद्री और स्थलीय जीवों के लिए भी बड़ा खतरा है। जिस तरह से हमें जीवन का अधिकार है साथियों, उसी तरह से प्रकृति के हर प्राणी को भी जीवन का अधिकार है, है ना। तो फिर हम क्यों ना सफाई रखें, समझ रहे हैं ना बात को भाई, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। और एक और चीज चलते चलते अभी हम कहेंगे कि हमें क्या करना है, हमें एक दिन या पूरे महीने नहीं बल्कि भाई इस प्लास्टिक का तो बहिष्कार हमें करना ही है। जो एक ही बार इस्तेमाल होती है उस कूड़े को क्यों ही रखना, कपड़े का थैला लें, जूट का थैला लें, जैसे पुराने समय के लोग जाते थे। हाँ, आप कह सकते हैं कि भाई उसमें देखने में मजा नहीं आता, तो आप उसे थोड़ा आकर्षक बना लीजिएगा, फिर लेकर चलेगा बाजार जाते समय एक छोटा सा बदलाव कर लिए। और देखिए, दूसरे की नकल क्यों करनी है, हमें तो अपनी नकल करवानी चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए। वो देखो वो जा रहा है थैला लेकर, एक बार हंसेगा, दो बार हंसेगा, अरे आप पूछे निधि तुम लेकर जाती हो? बिल्कुल लेकर जाती हूँ, आइएगा कभी, चेक कीजिएगा हमें। और सुनते हैं संदेश, फिर संदेश के बाद लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
3: 8700001424242।

0: तो देखा ना आपने, अगर हवा हमें ऐसी ताजगी भरी चाहिए और उसके साथ हमें भी उड़ना चलना है, तो भाई प्लास्टिक से तो दूर जाना ही पड़ेगा और अपनी वसुंधरा को बचाना ही पड़ेगा। ही शब्द हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। आइए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि आज की तारीख यानी कि 3 जुलाई हमें क्या बताती है। तो चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। इस अगले पड़ाव में हम देखते हैं कि 3 जुलाई का बहुत ऐतिहासिक महत्व है, जिसमें से कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे कि पुर्तगाल ने भारत के मुंबई शहर को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को सौंप दिया था 3 जुलाई 1661 को। 3 जुलाई 1775 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जॉर्ज वॉशिंगटन ने कॉन्टिनेंटल आर्मी के कमांडर का पद संभाला था। और आज की तिथि में लाइसेनिया करासे फिजी के अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे सन 2000 में। 2004 में आज की तिथि में रूस की मारिया शारापोवा महिला विंबलडन चैंपियन बनी और 2005 में आज की तिथि में महेश भूपति और मैरी पियर्स ने विंबलडन टेनिस का मिश्रित युगल खिताब जीता। 3 जुलाई को मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस के बारे में आज हमने बैग मुक्त दिवस के बारे में आपसे चर्चा की। पर्यावरण को प्लास्टिक के नुकसान से बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को हम मनाते हैं। अगर हम देखें कि 3 जुलाई को प्रसिद्ध व्यक्ति वो कौन थे जिनके जन्म से इस धरती पर कुछ अच्छा हुआ, तो वो है 1883 में प्रसिद्ध लेखक फ्रांस काफा का प्राग में जन्म हुआ 3 जुलाई को। 1962 में अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता टॉम क्रूज का न्यूयॉर्क में जन्म हुआ था। और आज ही की तिथि में 1941 में अदूर गोपाल कृष्णन मलयालम सिनेमा और भारत की चोटी के फिल्म निर्माताओं में से जो एक हैं उनका जन्म हुआ। आज ही की तिथि में 1897 में हंसा मेहता भारत की प्रसिद्ध समाज सेवी स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद का भी जन्म हुआ। और रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे का जन्म भी 1886 को आज की तिथि में हुआ। दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दर्शन के विभाग के अध्यक्ष थे आप। 3 जुलाई की तिथि में भी कुछ हमने ऐसी हस्तियों को खो दिया जिनको हम स्मरण करते हैं, नमन करते हैं। उसमें है 1999 में मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक, उनका निधन आज की तिथि में हुआ, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और 1996 में हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राजकुमार का भी निधन हुआ, जिनके बारे में आज हम आपसे चर्चा भी करेंगे। और सन 2020 में सरोज खान, जिनको सब जानते हैं भारतीय प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी, आपका निधन भी आज ही की तिथि में हुआ। तो ये था कुछ तिथि विशेष क्रम में आपके लिए जानकारी का खजाना। और आइए आप चलते हैं इस संदेश की ओर।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: पुनः स्वागत करती हूँ मैं आपकी सखी निधि भारद्वाज कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। देखिए, जैसे जैसे सूरज की किरणें बढ़ती हैं ना, हम भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। और अगले सेगमेंट में आपके लिए अब हम लेकर आ रहे हैं अखबारों की सुर्खियाँ, क्योंकि चाय तो आपके हाथ में है। कुछ लोग ऐसा है कि गर्मियों में चाय नहीं पीते, ठंडा पीते हैं, तो उनको भी ताजगी भरे इस मौसम में आइए अखबारों की सुर्खियों से रूबरू कराते हैं।

अखबारों की सुर्खियों के साथ आकाशवाणी नजीबाबाद, आइए देखते हैं हिंदुस्तान क्या लिखता है। हिंदुस्तान में राहत क्रम में लिखा है, यूपी में लगातार सातवें साल भी बिजली दरें नहीं बढ़ी और चार्जिंग स्टेशनों को 20% रियायत। इसके साथ ही एक खबर है, एसआईटी ने अधिक दाम में जमीन खरीदने के आरोपों की जांच शुरू की, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल सिंह की लंबी पूछताछ। एक और खबर हिंदुस्तान की है, दिल्ली में

आईएसआई से जुड़े आतंकवादी नेटवर्क का हुआ भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर दिल्ली एनसीआर में बड़ी आतंकी वारदात की साजिश रचने वाले मॉड्यूल का खुलासा किया। एक खबर है पढ़ाई से जुड़े हमारे विद्यार्थियों के लिए, नीट जेई में जुड़ सकते हैं 12वीं के 50% अंक। नीट यूजी और जेई परीक्षाओं को के स्कोर पर आधारित मेडिकल और इंजीनियरिंग दाखिलों की मेरिट में अब 12वीं की बोर्ड परीक्षा में मिले अंक भी शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार की इस उच्च स्तरीय समिति ने बोर्ड परीक्षा के अंकों को 50% तक वेटेज देने का सुझाव दिया है। हालांकि अंतिम प्रस्ताव अभी सरकार को सौंपा जाना बाकी है। एक और खबर है जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, वो है व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर वैकल्पिक। व्हाट्सएप ने यूजर नेम फीचर पर जताई गई चिंताओं के बीच गाइडलाइन की जारी। तो अगला जो अखबार है वो भी हम आपके साथ साझा करते हैं।

अमर उजाला की खबर अब आपके लिए। अमर उजाला लिखता है, भारत जापान साथ बनाएंगे सैन्य उपकरण, 6 समझौते हुए, AI, धातु, ऊर्जा, रक्षा और आर्थिक सुरक्षा में नए अध्याय की हुई शुरुआत। एक खबर है, TET पहले दिन पकड़े गए 15 मुन्ना भाई, 60 जिलों के 955 केंद्रों पर 2 पालियों में हुई परीक्षा में कल 84.76% अभ्यर्थी हुए शामिल। एक खबर है अमर उजाला की ही, 936 ट्रेनिंग पार्टनर 1,00,000 से अधिक युवाओं को देंगे AI का प्रशिक्षण। जी हां, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन AI फॉर ऑल अभियान के तहत 1,00,000 से अधिक युवाओं को AI व अन्य अत्याधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देगा। खबर है कि 11.5 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे, फंसे रहे 8,000 तीर्थयात्री, भारी बारिश के कारण पागल नाला और गुलाब गोटी में टनों मलवा आया। ये भी खबर हमने ली थी अमर उजाला से। और अब दैनिक जागरण पर नजर डालते हैं। हमेशा की तरह कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो सभी की मिली जुली खबरें हैं, जैसे कि यूपी के लगातार 7वें साल में भी बिजली दरें नहीं बढ़ी। अखबारों में, सभी अखबारों में है ये, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, इसके अलावा अन्य सभी यही खबर लिखता है। दैनिक जागरण भी, 7वें वर्ष भी नहीं बढ़ी बिजली दरें। साथ ही खबर है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का खर्च नहीं उठाएंगे उपभोक्ता। और एक और जो खबर है जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है वो है ये कि शिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा 12 जुलाई को होगी। अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे की पाली में ये परीक्षा कराई जाएगी। खेल जगत की खबर है, असंभव को संभव बनाकर जीता बेल्जियम, 85 मिनट बाद जगे बेल्जियम ने। PAR ड्रामा के बीच अंतिम 32 मुकाबले में सेनेकला को 3-2 से हराया। अमर उजाला की खेल की खबर अगर हम देखते हैं तो लिखता है, मौजूदा चैंपियन स्विया टेक की लगातार 9वीं जीत, विंबलडन नंबर 3 में पिल्सकोवा को सीधे सेटों में हराया। एक और खबर है, एशियाई खेलों में नहीं उतर पाएगी भारतीय फुटबॉल टीम। और ये थी कुछ आज की खास खबरें। और अब चलते हैं म्यूजिक की दुनिया में और पूछते हैं दिल की वो बात जिसको हम कई बार कहते हैं कि ये क्यों होता है ऐसा।

देखिए, न जाने ऐसा क्यों बार बार होता है कि हम सोचते कुछ हैं और कभी कभी महसूस कुछ और हो जाता है। लेकिन अब आई वापस गीत की दुनिया से और हम चलते हैं अपने फिल्मी सफर पर। तो चलिए अब रुक करते हैं माया नगरी की तरफ और उस सुनहरे दौर में चलते हैं जहाँ संवाद अदायगी का एक बादशाह था। जी हाँ, हमारी आज की फिल्मी हस्ती है अविस्मरणीय अभिनेता राजकुमार साहब, जिनकी आज हम पुण्यतिथि को मना रहे हैं। जब वो पर्दे पर आते थे तो थिएटर तालियों से गूंजता था। उनकी कड़क आवाज, अनोखा अंदाज और वो मशहूर तकिया गुलाम, भाई पुरुष आवाज तो नहीं है लेकिन बोल गई कोशिश जॉनी, आज भी लोगों के जहन में ताजा है। राजकुमार साहब की इस मखमली और रौबदार शख्सियत के लिए एक शेर अर्थ है, वो जब बोलते थे तो लफ्जों से खुशबू आती थी, उनकी सादगी भी पर्दे पर आग लगाती थी। यूं तो आए अदाकार इस महफिल में कई, यूं तो आए अदाकार इस महफिल में कई, पर उनकी कड़क आवाज सीधे दिल में उतर जाती थी। साथियों, चाहे मदर इंडिया हो, वक्त हो, पाकीजा हो या फिर सौदागर, राजकुमार साहब ने हर किरदार को अमर बना दिया। उनका मशहूर जुमला जिसकी हम बात कर रहे थे, जॉनी, जब पहली बार वक्त में सुना गया तो सफेद जूते पहनने पर उनका जोर, उनका ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व का विस्तार बन गया, जिससे उन्हें बॉलीवुड का राजकुमार नाम भी मिला। उनका वो डायलॉग आपको तो याद होगा ही ना, देखिए अपने अपने स्वर में बोल लीजिए, जॉनी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, डैश डैश डैश, है ना। और लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। क्या बढ़िया डायलॉग था। देखिए, ये डायलॉग मैंने अपने अंदाज में बोला है, वो जब आप सुनेंगे ना तभी तो उस ओर जाएंगे, और यही हम चाहते हैं। राजकुमार जी का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को हुआ था और जैसा कि हम बता रहे हैं कि 3 जुलाई 1996 को उनका इस संसार से विदा लेने का वक्त हो गया। वो एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया, 4 दशकों से अधिक में करियर में उन्होंने 70 फिल्मों से अधिक में अभिनय किया और भारतीय सिनेमा के महानतम अभिनेताओं में अपना एक नाम दर्ज किया। श्रोताओं, उर्दू में असाधारण स्पष्टता, सुरुचिपूर्ण वाक्यांश और नाटकीयता की विशिष्ट समझ से चिन्हित रोमांटिक संवादों, लंबे एकालापों या पीड़ा के क्षणों को सावधानी पूर्वक वो बहुत परिष्कृत उच्चारण के साथ समर्पित भाव से अपने दर्शकों के लिए लेकर आते थे। राजकुमार साहब की इसी याद को ताजा करते हैं और सुनते हैं फिल्म वक्त में उनका बेहद सदाबहार और सुरीला गीत जो उनके होने का एहसास कराता है। आशा भोसले के स्वर में एक गीत है, सुनिएगा।

श्रोताओं, ये तो सच है कि हम आगे और क्या होने वाला है नहीं जानते, लेकिन अपने कर्म को अगर अच्छा रखें तो भविष्य हमेशा ही सुखद होगा। इस प्यारे से गीत के साथ ही कार्यक्रम सूरज के साथ साथ संपन्न करने की अपनी सखी निधि भारद्वाज को दीजिएगा अनुमति। श्रोताओं नमस्कार।

0: के साथ साथ।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है। अब हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट

0: हैदराबाद में श्रीलंका के खिलाफ भारत की दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। तकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: निश्चय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निश्चय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
2: बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरूचा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नाजुक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इगलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। यह श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बाद मौसम के, उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून

0: चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार वर्मा।
1: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे। अदालत ने कहा, फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग। ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ता की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे। दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रैवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। हामिनी की अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 16वीं भारत जापान सालाना सरबराह मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दोनों लीडरों ने पिछले साल 29 जुलाई की अक्वाह मुत्तहदा सलामती कौंसिल की निगरानी टीम की रिपोर्ट का भी नोटिस लिया है, जिसमें रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के ग्रुप का तस्करा किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दोनों वज़ीरे आज़म ने पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली में दहशतगर्दाना हमले की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस काबिल मजम्मत हरकत के लिए जिम्मेदार इसकी साजिश रचने वालों और सरमाया फराहम करने वालों को बिला ताखिर कानून की गिरफ्त में लिया जाए। उन्होंने अलकायदा, दाइश, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और उनकी ज़ेली तंजीमों समेत उन सभी दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया जो अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल हैं। दोनों वज़ीरे आज़म ने दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के खात्मे, दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के नेटवर्क को खत्म करने और दीगर मुल्कों में जराइम के साथ उनकी साजबाज नीज सरहद पार से दहशतगर्दों की नकलो हरकत रोकने के लिए पुख्ता कार्रवाई की जरूरत पर भी जोर दिया। एक मजबूत और खुशहाल भारत बहरुल खित्ते के मुश्तरका मकसद के ताल्लुक से दोनों वज़ीरे आज़म ने हम ख्याल मुल्कों में इश्तराक को बढ़ाने के अपने अहद को दोहराया। उन्होंने क्वाड फ्रेमवर्क के तहत लगातार पेशरफ्त का खैर मकदम किया और अमली तआवुन बढ़ाने के अपने अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई इस्तेहकाम को मजबूत बनाने और अमन खुशहाली को फरोग देने की खातिर आसियान के मेंबर मुल्कों के साथ इश्तराक की अहमियत को भी उजागर किया। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: भारत और जापान ने दो तरफा खसूसी क्लीदी और आलमी साझेदारी के एक बुनियादी सतून के तौर पर इकतसादी सिक्योरिटी की अहमियत के तई अपने मुश्तरका अहद का इरादा किया है। इकतसादी सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक के बारे में भारत जापान मुश्तरका ऐलानिये में कहा गया है कि इकतसादी सिक्योरिटी साझेदारी बाहमी एतमाद, मुश्तरका अवदार और मुतालिका मफादात पर मबनी है और इससे इस बात की इक्कासी होती है कि दोनों मुल्कों की खुशहाली, सलामती और इकतसादी मुस्तकबिल मजबूती के साथ बाहम मुंसलिक है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह ऐलानिया इस बात का भी मजहर है कि जदीद तर्ज पर ढाले गए आजादाना और खुला भारत बहरुल साहिल नीज मुख्तलिफ खत्तों में सिक्योरिटी और तरक्की के लिए बाहमी और जामे इकदामात के दरमियान तालमेल से तरफेन को इकतसादी सिक्योरिटी इश्तराक मजीद बढ़ाने के लिए मतलूबा जहत मिलती है। दोनों मुल्क 5 अहम शोबों में दो तरफा इश्तराक को मुस्तहकम करेंगे, जिनमें सेमी कंडक्टर, अहम मादनियात, इन्फॉर्मेशन और मवासलाती टेक्नोलॉजी, माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और दवासाजी के शोबे शामिल हैं। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज ओहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: इंतखाबी कमीशन ने एक बयान में कहा है कि उसने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी चुनाव और दस्तखत करने के मजाज पार्टी के अहलकारों के बारे में दोनों हरीफ ग्रुपों के दावों और उनके जवाबी दावों के ताल्लुक से ममता बनर्जी और पार्टी की एक और लीडर प्रीता ब्रता बनर्जी को अलग अलग मुरासले भेजे हैं। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि दोनों फरीकों के हिदायत दी गई है कि वो पीर को शाम 5:30 बजे तक अपने अपने जवाब पेश करें। पार्टी के तंजीमी ढांचे और उसके काम करने की अथॉरिटी के मामले पर तृणमूल कांग्रेस का तनाजा इंतखाबी कमीशन के सामने चला गया है। इस तरह के तनाजात में चुनाव निशान अलॉट करने से मुतालिक हुक्म के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके तहत इंतखाबी कमीशन हरीफ ग्रुपों के दावों, मुतालिका दस्तावेजात और दलाइल का जायजा लेने के बाद ही कोई फैसला करता है। दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: ईरान के रहबरे आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी वजूहात के सबब अपने वालिद साबिक रहबरे आला आयतुल्लाह अली खामनाई की आखिरी रसूम में शामिल नहीं होंगे। भारत के मौजूदा लीडर के नुमाइंदे आयतुल्लाह हकीम इलाही के मुताबिक खतरात पर नजर रखे जाने के खदशात के सबब उनका शामिल होना गैर महफूज हो सकता है। इससे कबल बुध के रोज ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराकची ने अमरीका को शदीद वार्निंग जारी की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उन्होंने जोर दिया कि वो अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल से ईरान को धमकाने से गुरेज करने को कहें। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल कास्ट की जानिब से ये कहे जाने के बाद कि ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई की मौत यकीनी है, ईरान के वजीर खारजा ने सख्त रद्द

0: किया। उन्होंने 47 गेंदों पर 75 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 129 रन ही बना सकी। एनसी ब्रंट को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आलमी कप का फाइनल मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इतवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जाएगा। फीफा आलमी कप में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। ये मैच कैलिफोर्निया के इंग्लवुड में लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेला गया। स्पेन की तरफ से 36वें मिनट में माइकल ओयार्ज़बल ने पहला गोल किया, जबकि मैच के 66वें मिनट में पेड्रो ने दूसरा और 79वें मिनट में माइकल ओयार्ज़बल ने एक और गोल करके स्पेन की जीत में अहम रोल अदा किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। ये मैच आइंदा माह की 15 से 27 तारीख तक खेले जाएंगे। इफ्तिताही टेस्ट मैच आइंदा माह की 15 तारीख से गाल बैन अल-अक़वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच आइंदा माह की 23 तारीख से कोलंबो के सिन्हाली स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। ये सीरीज आईसीसी आलमी टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का एक हिस्सा है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया अर्जुन। कौमी राजधानी दिल्ली से शायद होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के भारत जापान मुश्तरका इक्तसादी फोरम से खिताब करने को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि भारत और जापान ने इक्तसादी तहफ़ मसनू जहानत AI दिफा और सेहत से मुतालिक शोबों में दस्तखत किए हैं। भारत अपनी रिफाइनरी की सलाहियत में तेजी के साथ तौसी कर रहा है। अगले साल भारत में रिफाइनरी की सलाहियत 300 मिलियन मैट्रिक टन तक बढ़ने का इम्कान है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के इस बयान को आज के अखबार में नुमाया किया है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने मुल्क भर के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डों पर एबोला वायरस की जांच के लिए AIR सुविधा पोर्टल 2.0 का किया आगाज। इस खबर को आज के सभी अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जापान की उनकी हम मनसब सनाए तकाईची ने हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की सख्त मजम्मत की है। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के तंजीमी इंतखाबात और दस्तखत करने के मजाज अहदेदारों के बारे में पार्टी के हरीफ ग्रुपों के दावों के सिलसिले में दोनों ग्रुपों से जवाब तलब किए हैं। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से शुरू हो गई है। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खामनाई सिक्योरिटी खदशात की वजह से अपने वालिद आयतुल्ला अली खामनाई की आखिरी रसूम में शिरकत नहीं करेंगे। और स्पेन ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनते हैं आशा भोसले और साथियों के स्वर में। फिल्म का नाम है दिल ही तो है।

आशा भोसले और साथियों को आपने सुना दिल ही तो में। संगीत रोशन का था और शब्द रचना थी साहिर लुधियानवी की। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप आनंद ले रहे हैं गोल्डन हिट्स का।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाज में। फिल्म का नाम है रॉकी, संगीत से सजाया है RD वर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने। साथियों, प्यार का एहसास इतना खूबसूरत होता है कि उसमें हर समय डूबने को ही जी जाता है, पर ये एहसास कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें दूसरों से पता करना पड़ता है कि कभी हमें कैसा लगता है, कभी ऐसा लगता है, कभी वैसा लगता है। क्या ये प्यार है

गोल्डन हिट्स कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए हमने लिया है एसडी वर्मन के संगीत निर्देशन में, लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, फिल्म का नाम है बेवकूफ और स्वर है आशा भोसले और मन्ना डे का। देखिए कभी कभी जीवन में कुछ छेड़खानी कुछ चपलता चंचलता भी जरूरी है जिससे कि जीवन नीरस नहीं होता बल्कि और सुंदर होता है।

देख इधर देख, तेरा ध्यान किधर है भाई? कहाँ है ये ध्यान? आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र की ओर। और ये गीत तो देखो, बात अलग बात थी, लेकिन इतना अच्छा संदेश भी है कि बुढ़ापा अगर सर पे भी आ जाए तब भी इसमें क्या चिंता की बात है, उम्र का काम ही बढ़ना है। बल्कि हमें तो भैया जिंदा दिल रहना है ना, और फिर ही हम अपने सारे कामों को कर सकेंगे। बच्चे, फिर जवान, फिर बुढ़ापा, ये तो नियति का क्रम है, लेकिन इस क्रम का आनंद लेना ही हमारे लिए जरूरी है। तभी तो हम हर पल को न केवल जिएंगे बल्कि अपने सारे कामों को गाते हुए जिंदगी को महबूबा महबूबा कहकर गुनगुनाएंगे भी। आइए सुनते हैं फिल्म संगम में मुकेश के स्वर में ये गीत। शंकर जयकिशन का है संगीत और हसरत जयपुरी की है ये रचना, जो आपके लिए पेश है।

मुकेश के स्वर में आपने फिल्म संगम का ये प्यारा सा गीत सुना और इस गीत से आपने न केवल पुराने समय को जिया बल्कि इस समय में भी इसका भरपूर आनंद लेते हुए इसको ये सोचा कि हम इस तरह से भी अपने मन की बातों को कह सकते हैं, है ना यही बात। देखिए जितने भी लोग संगीत के शौकीन होते हैं वो सरस सहृदय होते हैं, जी हाँ, उनकी भावनाएं कोमल होती हैं और वो एक दूसरे के साथ अपने भाव को प्रेम पूर्वक बहुत ही शालीनता से शेयर करते हैं या कहते हैं एक दूसरे को बताते हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। आरडी वर्मन के संगीत निर्देशन में गीत लिखा है नीरज ने, फिल्म का नाम है गैम्बलर और आवाज़ तो आप पहचान ही लेंगे। जी हाँ, हम आपको सुनवा रखे हैं प्यारा सा गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ में। ये गीत ऐसा है जिसको हम अपने आसपास देखते हैं, यानी महिलाओं के हाथों में खनकती हुई चूड़िया। चूड़िया केवल एक आवाज़ नहीं बल्कि मधुर संगीत है और हमारी महिलाओं की सुंदरता को बढ़ाती हुई उनकी कलाइयों को सजाती हुई प्रेम का प्रदर्शन भी कराती हैं। आइए सुनते हैं किशोर कुमार लता मंगेशकर के युगल स्वर में फिल्म गैम्बलर का ये गीत।

श्रोताओं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने को है। जिले की हलचल अब हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सहारनपुर और संत कबीर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सहारनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विजयंत सैनी का।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जुलाई को सहारनपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 613 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
2: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
1: पिछले 9 वर्षों में प्रदेश के बेसिक विद्यालयों का व्यापक कायाकल्प हुआ है और सरकार प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिक से अधिक बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने का आह्वान किया।

0: पर अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया। वहीं फर्जी हाई स्कूल मार्कशीट के आधार पर डाक विभाग में सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला भी सामने आया। विभागीय जांच में दस्तावेज फर्जी मिलने पर आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने सड़क सुरक्षा, साइबर सेवाओं और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठकों में अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान का शुभारम्भ किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने पुलिस लाइन में पोलियो बूथ पर एक छोटे बच्चे को ड्रॉप्स पिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिले में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 5,09,306 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर लगातार शक्ति दिखाई है। कार्य में लापरवाही मिलने पर नकुड़ थाने की अम्बेटा चौकी प्रभारी उप निरीक्षक को लाइन हाजिर किया गया। इसके अलावा साइबर अपराध, वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी और नियमित चेकिंग अभियान को तेज किया गया। पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाए। मंडलायुक्त डॉक्टर उपेश कुमार ने मंडल स्तरीय बैठकों में विकास कार्यों, राजस्व मामलों, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसून पूर्व की तैयारियों की समीक्षा की।
1: अभी मंडली समीक्षा में हमने विकास कार्यों की जो कुछ कार्य है पर्यटन विभाग के वो इनकम्प्लीट है और UPCNDS इसमें कार्यदायी संस्था है तो उनको हमने पुलअप किया कि इसको समय पे पूर्ण किया जाए। और इसके अलावा अभी आने वाला जो मानसून सीजन है इसमें बाढ़ की संभावना को देखते हुए बाढ़ की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं सभी संबंधित अधिकारियों को।
0: उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के दौरान जल भराव, बाढ़ जैसी संभावित स्थितियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी सुनिश्चित की जाए और जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। बाइट मंडलायुक्त रूपेश कुमार। कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में दानवीर भामाशाह की जयंती व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिले के सर्वाधिक कर देने वाले 10 व्यापारियों और उद्यमियों को DM अरविंद चौहान व नगर विधायक राजीव गुम्बर ने शील्ड, प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। जून में लगभग पूरे महीना भीषण गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया। कई बार अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। हालांकि इन दिनों मौसम विभाग ने सहारनपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं, गरज चमक और मानसून की आगमन की संभावना जताई। सामाजिक और खेल गतिविधियों में भी जिला सक्रिय रहा। जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता अंडर 12 समर क्रिकेट लीग का फाइनल जिला साइकिलिंग संघ की कार्यकारिणी का विस्तार तथा CIS द्वारा अध्यक्ष रविन्द्र मिगलानी की अध्यक्ष में अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस पर आयोजित सौहार्द कार्यक्रम प्रमुख आकर्षण रहे। हरविंदर सिंह लार्ड की अध्यक्षता में UP सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई जिसमें गुरुप्रीत सिंह बग्गा को नवाब कपूर सिंह सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें सिख समाज की एकजुटता, धार्मिक मर्यादा और युवाओं के लिए मुफ्त UPSC कोचिंग की घोषणा की गई। सहारनपुर में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ करते हुए शातिर आरोपी गणेशपुर निवासी रोहित और बाबा को गिरफ्तार किया। थाना फतेहपुर पुलिस ने एक नदी के डूब क्षेत्र में कमरे में छापा मारकर मौके से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए।
2: सहारनपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं संत कबीर नगर जिले की हलचल। आलेख है अजय श्रीवास्तव का।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर के धनघटा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संत कबीर नगर को 475 करोड़ रुपए की 139 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और बाबा तामेश्वरनाथ धाम कॉरिडोर, मघर के सुंदरीकरण और बखीरा झील को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र तथा युवा उद्यमियों को आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर भी राजनीतिक टिप्पणी की। संत कबीर नगर के कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव, विधायक अंकुर राज तिवारी, विधायक गणेश चंद्र चौहान, जिलाधिकारी आलोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और लाभार्थियों से सीधे फीडबैक लेने पर विशेष जोर दिया। जनप्रतिनिधियों ने मेहंदावल धनघटा मार्ग को 4 लेन बनाने, जर्जर बिजली तारों को बदलने, नगरीय आवासों के निष्पक्ष आवंटन तथा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मांग उठाई। अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि कार्यों में लापरवाही मिलने

0: पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने सभी निर्देशों का शत प्रतिशत पालन कराने का भरोसा दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संत कबीर नगर में कांशीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष बेचन राम, जिला पंचायत अध्यक्ष बलिराम यादव, मंडलायुक्त अखिलेश सिंह और जिलाधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने योग को स्वस्थ जीवन की आधारशिला बताते हुए इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। योग प्रशिक्षक विवेक मिश्रा के निर्देशन में प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं और बड़ी संख्या में नागरिकों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। संत कबीर नगर जिला कारागार का जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह, जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बैरकों, अस्पताल, भोजनालय और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन को निर्देश दिया गया कि कारागार में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री का प्रवेश न हो, साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर कारागार परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। संत कबीर नगर की महुली थाना पुलिस ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने अशोक चौहान, शिव कुमार उर्फ नकुल चौहान और राजन कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल अनिल कुमार और पुलिस टीम पर हमला किया था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की गई। संत कबीर नगर के नाथनगर विकास क्षेत्र में पुत्सर में बिना मान्यता के संचालित स्कूल पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए विद्यालय को सील कर दिया। ये कार्रवाई IGRS पर प्राप्त शिकायत और पूर्व में जारी नोटिस के बाद की गई। अधिकारियों ने बताया कि विद्यालय बिना वैध मान्यता के संचालित हो रहा था, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वहां अध्ययनरत बच्चों का प्रवेश निकटवर्ती सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराया जाएगा। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद से पल्स पोलियो जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि 5 वर्ष तक का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामानुज कनौजिया ने बताया कि जिले में 311,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 858 बूथ स्थापित किए गए हैं। साथ ही घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाने के लिए विशेष टीमें भी गठित की गई हैं, जो अभियान के दौरान छूटे हुए बच्चों को कवर करेंगी।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। प्रातः के 9:25 और 25 सेकंड हो रखे हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। धरती गाती है लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उषा पंत के स्वर में रुहेल खंडी लोकगीत।

धरती गाती है लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं उषा पंत के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत।

धरती गाती है लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं उषा पंत के स्वर में रुखेलखंडी लोकगीत।

0: धरती गाती है लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज आपने उषा पंत के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत सुने। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजने को है। प्रस्तुत है पत्र और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम गीत तुम्हारे को लेकर आ गई हूँ मैं आज आपके साथ आपकी सखी, और इसी कार्यक्रम गीत तुम्हारे में हमारे साथ हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, आपके साथ आज कार्यक्रम में मैं हूँ रेणु कोटनाला। नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को।
0: तो श्रोताओं को हमारा भी नमस्कार। और रेणु जी कभी सुहाना सफर में साथ साथ बैठते थे और अब हम कार्यक्रम गीत तुम्हारे में भी एक साथ बैठते हैं।
1: नीति, ये श्रोताओं का प्यार ही है कि जो हमें 11 बजे स्टूडियो में आना था, हम 10 बजे ही अपने श्रोताओं से मिलने आ जाते हैं,
0: क्योंकि सुरों की लहरी पर अब हम चलने वाले हैं। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि आप अपनी फरमाइश का गीत सुनने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं 9457078288 इस नंबर पर, जिसमें आप सुनेंगे अपनी पसंद का गीत कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और कार्यक्रम का पहला गीत कुछ श्रोताओं ने अपनी पसंद हमें भेज दी है पत्रों और व्हाट्सएप के माध्यम से, तो हम बता देते हैं हम आपको सुनवा रखे हैं फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। स्वर है अनुराधा पौडवाल का, संगीत नदीम श्रवण का और शब्द रचना है समीर की। और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है।
1: जी हाँ, गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है हमारे आप सभी श्रोता। मोताला महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती चिड़िया और ओम भैया। इसी गीत को सुनना चाहा है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से हमारे श्रोता हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी।
0: ग्राम चुजैला थाना शिवाला कला से बिजनौर से लिखते हैं राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशाद, आयसा, साइना, महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर। और इसी गीत के लिए आपने हमें भेजी है फरमाइश।
1: ये हमारी श्रोता है मलोट कैंप पंजाब से, सतीश मिगलानी, अनमोल मिगलानी, विवान मिगलानी, महावीर संधु और इनके सभी साथी।
0: पत्र के माध्यम से अपनी फरमाइश हमें लिख रहे हैं हमारे साथी छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा। एक और पत्र शामिल करते हैं आप है हमारे साथी शाही मार्केट सिहारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, आराफा चौधरी, आदिब चौधरी और कादिर चौधरी। हाँ श्रोताओं

0: सही समझ रहे हैं आप। हमें व्हाट्सएप पर भी अपनी पसंद भेजते हैं और पत्रों पर भी। और
1: और निधि देखिए, ये अगला मैसेज हमें मिला है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय का, और इनके साथ ही दुबिहा निवाड़ा जिला गाजीपुर से हमारे श्रोता हैं प्रतीक प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय।
0: ये फरमाइश हमें मिली है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाणकर राही, श्रीमती सरिता ग्वाणकर, प्रिंस एकांश ग्वाणकर की। बदलापुर मुंबई से अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं प्रणीता ग्वाणकर, सिद्धांत ग्वाणकर, अर्जुन ग्वाणकर और टुक टुक। आकार हाइट्स बहादुरपुरा नागपुर से भी हमें पत्र मिला है, वो है मैसेज करते हैं वैशाली शैलेश ग्वाणकर, सुमित ग्वाणकर, कुमारी ध्वनि ग्वाणकर और परी।
1: जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से ये संदेश आया है मास्टर अशोक वर्मा का, अर्चना वर्मा, अंजू वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप का।
0: तो आइए आप सब के साथ सुनते हैं हम भी आपकी पसंद का ये गीत अनुराधा पौडवाल के स्वर में। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: तो निधि जी, फिर से शुरू करते हैं गीतों का सिलसिला और संदेशों का सिलसिला, है ना?
2: हाँ बिल्कुल। और रेणु जी, देखिएगा हमारे जो श्रोता है, बहुत सारे मैसेज हमें भेजते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि घर के जितने नंबर होते हैं उन सबसे भेजते
1: सबसे भेजते हैं, और कई बार फ्लो फ्लो में हम भी पढ़ जाते हैं, क्योंकि नया
2: जब पढ़ते पढ़ते ध्यान आता है, अरे अभी तो हमने पढ़ा था। और हमसे ज्यादा तो श्रोताओं को ज्यादा पता रहता है कि अभी मेरा नंबर आया नहीं था, इनका दूसरी बार आ गया।
1: तो निधि जी का सीधा सीधा संकेत है श्रोताओं आपके लिए कि प्लीज आप एक श्रोता एक ही बार आज के कार्यक्रम में अपना मैसेज भेजें, जिससे कि दूसरे श्रोताओं के मैसेज बीच में स्क्रीन पर ना छिप जाएं और उनको भी हम शामिल कर सकें।
2: और देखिए लगभग अनरीड मैसेजेस 410 दिखा रहा है
1: जी, बिल्कुल,
2: क्योंकि लगातार आ रहे हैं मैसेजेस। तो झज्जर हरियाणा से आप हमसे जुड़े हैं, बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया जी।
1: ये श्रोता है हमारे दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू। मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, भाईजान राजकुमार बोडाना और इनके साथी हैं जिला खरगोन सनावाद मध्य प्रदेश से, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी। और ये मैसेज
2: अभी, हाँ यही मैं देख रही हूँ कि बार बार पढ़ने से लग रहा है कि ये तो अभी पढ़ा ही था। दादी गेट भिवानी से कृष्ण मेरा, कोमल मेरा, किरण मेरा, कपिल मेरा और कुणाल मेहरा जी हमसे जुड़े। और देखो फिर पुनः अनुरोध है, देखिए आपका पत्र या मैसेज शामिल हो गया, तो फिर आप इस तरह से और लोगों के रास्ते को भी खुला रखेगा, आने दीजिएगा। और ये एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक,
1: राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती

0: शीतल राजेश फरमाइश करते हैं छत्रपति संभाजी नगर नगर से।
1: इनका हमने अभी पत्र पढ़ा है शाही मार्केट सुहारा से। अभी आपका व्हाट्सएप मैसेज भी शामिल हो गया है, आप समझ गए होंगे, सीन हो गया आपके पास। और सदर बाजार कुरावली से हमें अनुरोध भेज रहे हैं अपनी पसंद के गीत के लिए अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार वर्मा, विनीत वर्मा और सोनम वर्मा। और ये आप हमारे साथी हैं
0: मुंदी चक भागलपुर बिहार से श्रोता है दिलीप कुमार सोनी।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन जाटव, फातिमा जाटव, डब्बू वाली जाटव, सोनम वाली जाटव की। और आप भी हमें फरमाइश भेज रहे हैं
0: कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना और इनके सभी साथी।
1: ग्राम गधरोना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से हमें भेजी है फरमाइश मदन गिरी, विमला गिरी, भारत गिरी, सोनिया गिरी, बलराम गिरी, मधुगिरी, सिमरन गिरी, गोविंद गिरी, वंशिका गिरी और रमन गिरी के साथ दिव्य गिरी ने।
0: और निधि हमारे इन श्रोता की शिकायत भी थी कि कार्यक्रम में इनका मैसेज शामिल नहीं होता, तो उम्मीद है कि इनकी ये शिकायत आज दूर हो गई होगी।
1: बिल्कुल, बशर्ते आप हमसे जुड़े होंगे इस समय, है ना
0: जी।
1: और जोएल रोड जालंधर से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, अस्मा कौर, धर्मजीत, फातिमा कौर ने भी फरमाइश भेजी है अपनी पसंद के गीत के लिए। और आप हैं हमारे साथ लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से
0: बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार और इनके सभी साथी।
1: और ये हैं धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बीबी आलिया, अयान बाबू।
0: मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शाकिर अली, मेराज अंसारी और बाबू अंसारी।
1: जसपुर उत्तराखंड से हमारे साथी जुड़ चुके हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन, परवीन और माहिरा नूर भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। और ये पहला गीत तो आप सुन चुके हैं और अगला गीत जो हम आपको सुनवा रखे हैं वो है आशा भोसले अमित कुमार की युगल आवाज में, फिल्म का नाम है इल्जाम।

0: कार्यक्रम गीत तुम्हारे आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और जो हमारे नए श्रोता जुड़े हैं आपको हम बता दें, व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने फिल्मी गीतों की फरमाइशों को पूरा करवा रखे हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। और इसी बीच में रेनू जी, क्यों ना हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज दिन में 11:30 पर प्रातःकाल
1: 10:30 पर,
0: हाँ सॉरी क्षमा कीजिएगा, 10:30 पर आप सुनेंगे अपना फोन इन कार्यक्रम, क्योंकि 11:30 पर तो हम दूसरे कार्यक्रम को लेकर आपके लिए आएंगे जिसमें आप सुनेंगे तो फिल्म संगीत, लेकिन ऐसे प्रायोजित कार्यक्रमों के साथ साथ आप अपनी पसंद को पूरा नहीं कर सकेंगे। तो कार्यक्रम जागरूक श्रोता के बारे में बताइए जरा।
1: जी हाँ श्रोताओं, आज 10:30 पर होगा फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता, और निधि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आज कार्यक्रम में हम आ रहे हैं अपने श्रोताओं के लिए।
0: सप्ताह के ऊपर रहेगा वन और भोजन, और आप इस पर कर लीजिएगा तैयारी। हम आपसे पूछेंगे कि किस तरह से वन से आप भोजन प्राप्त करते हैं, वनों को लेकर आपका अनुभव क्या है, वन लगाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के ठीक 10 मिनट बाद यानी 10:30 पर हम आपसे जुड़ जाएंगे,
1: और फोन इन नंबर हमारा वही रहेगा 9457078288। इस नंबर पर आप हमें फोन कीजिएगा, और
0: दूसरा नंबर रहेगा हमारा 01341 और 2301 05।
1: इस नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं और अपने विचार हम तक और श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं। तो निधि एक बार फिर से शुरू करते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस का सिलसिला,
0: और ये देखते हैं कि ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से कौन साथी हमें फरमाइश कर रहे हैं। आप हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्ट्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी।
1: और ये हमारे श्रोता हैं मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत, रोजस, और चंडीगढ़ सिटी से हैं शेफाली, शेफी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू।
0: ये पत्र हमारे पास भेज रहे हैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। और आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर चुके हैं इस समय, क्योंकि पत्र शामिल हो गया है। तो अभी आगे और देखते हैं साथी कौन से हैं हमारे।
1: ये हमारे श्रोता हैं, इन्होंने मैसेज किया है हमें आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहाँ।
0: अपनी पसंद के गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम नगला उबन नजीबाबाद जनपद बिजनौर से ठाकुर विजयपाल सिंह, जब्बर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, छोटी शिवी, क्रीथा, ओम प्रकाश, बलवंत, पूनम और इनके परिवार के सभी सदस्य। और फरमाइश करी है आपने भी ग्राम धनसिनी नजीबाबाद जनपद बिजनौर से मुनेश कुमार प्रजापति, दिनेश कुमार प्रजापति, महेंद्र प्रजापति, मुकेश राजू, राजकुमार और राधे श्याम जी।
1: चकला बाजार समाना शहर पंजाब से ये फरमाइश मिली है हमें पप्पू राजा, खुशदिल की रानी, संगीता रानी, जिंदल, पप्पू महक, सुनीता रानी, आरजू, पप्पू हसमुखलाल, बुलबुल शक्ति, संजीव बंटी जिंदल और इनके परिवार के सभी सदस्यों की।
0: आप हैं हमारे साथी वारसी क्लब सिंधौली बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और करूला मुरादाबाद से हैं अयूब खान जी, जो कि सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के गीत को। और इसी फरमाइश में एक बार फिर से कृष्णा पार्क दिल्ली से रिपीट मैसेज कर रहे हैं हमारे साथी, अनुरोध एक बार पुनः, देखिए पसंद का गीत जरूर हम आपको सुनवाना चाहते हैं, लेकिन और भी साथियों को शामिल होना होगा। गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर भी सुनना चाहते हैं गीत।
1: अड़ार नांदघाट छत्तीसगढ़ से ये मैसेज हमें मिला है माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा का।

0: हिसाब से
1: जी
0: मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा भी सुनना चाहते हैं ये गीत, और ये हैं हमारे साथी
1: नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर और विशाल नवाकर, मलकापुर से हैं नारायण इंग्लिश, सोपान ताइड़े, आशीष मुरेकर और उनके साथी,
0: कवर कॉलोनी बढ़रा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली भी अनुरोध भेज रहे हैं, और आप हैं फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा, प्रवीण, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से। ये फरमाइश मिली है दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शनो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी की।
1: पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, अर्जू जाजोरिया और गुड्डू।
0: और ये गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नादिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अदिब की फरमाइश। और आइए सुन लेते हैं अब कार्यक्रम का अंतिम गीत, और इस गीत के बाद सजीव फोन इन कार्यक्रम के लिए रहिएगा तैयार। फिल्म गदर 2 का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं नीति मोहन, विशाल मिश्रा, शहनाज अख्तर और साथियों के स्वर में।

0: श्रोताओं, फिल्म गदर 2 के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत तुम्हारे संपन्न करने की अपने सखी निधि भारद्वाज
1: और रेणु कोटनाला को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
0: आप सुन रहे थे पत्र और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है साप्ताहिक सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। जागरूक श्रोता के इस कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है वन और भोजन। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता और आज मैं आपके साथ हूं आपकी सखी निधि भारद्वाज।
1: और श्रोताओं, आज कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं रेणु कोटनाला। बहुत स्वागत आप सभी श्रोताओं का। श्रोताओं, बारिश की पहली बूंद जब सूखी धरती को छूती है तो सिर्फ मिट्टी ही नहीं बहकती बल्कि मन भी खिल उठता है, है ना निधि?
0: बिल्कुल, और यही मौसम हमें याद दिलाता है कि अगर पेड़ हैं तो बारिश है, अगर बारिश है तो खेत हैं, और अगर खेत हैं तो भाई भोजन है हमारी धरती में। यानी सोचिए, हमारे रोज की रोटी, दाल, सब्जी और फल, इन सब का रिश्ता कहीं ना कहीं जंगलों से जुड़ा हुआ है।
1: जी हाँ श्रोताओं, अक्सर हम सोचते हैं कि जंगल सिर्फ लकड़ी या ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जंगल हमें फल भी देते हैं, शहद भी देते हैं, जड़ी बूटियां भी देते हैं, और खेती के लिए जरूरी मौसम और पानी का संतुलन भी तो बनाए रखते हैं निधि।
0: और इसीलिए इस बार वन महोत्सव सप्ताह का विषय हमने चुन लिया है बातचीत करने के लिए आपसे सजीव फोनिन में, वन और भोजन।
1: यानी जंगल सिर्फ प्रकृति की नहीं, हमारी रसोई की भी पहचान है। तो आज का कार्यक्रम भी श्रोताओं इसी विषय पर है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपने कभी जंगल से मिलने वाला कोई फल खाया है? क्या आपके गांव या शहर में ऐसे पेड़ हैं जिनके फल आप बड़े चाव से खाते हैं?
0: क्या आपने इस महोत्सव में भी कभी कोई पौधा लगाया है? बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन इन प्रश्नों का जवाब आप हमें दे सकते हैं हमारे इन नंबर पर कॉल करके। हमारा फोन नंबर रहेगा 9457078288, और इसके अतिरिक्त आप दूसरा नंबर भी ट्राई कर सकते हैं, वो है 01341230105।
1: तो श्रोताओं, देर बिल्कुल मत कीजिए, उठाइए अपना फोन और जुड़िए लाइव कार्यक्रम में हमसे।
0: देखिए देखिए, आपने कह दिया और श्रोता आपके कहना ना माने कैसे हो सकता है, ये घंटी बज गई हमारे।
1: हेलो जागरूक श्रोता।
2: हेलो जागरूक श्रोता
1: जी। हेलो, नमस्कार।
2: नमस्कार जी, नारी दोनों नारी शक्तियों को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार भैया, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ जी, और आप सुनाइए आप कैसे हैं? और आपने जब मेरा मैसेज पढ़ा तो आप ये कह रही थी इनकी इनकी शिकायत है।
0: अच्छा अच्छा, लेकिन हमारे श्रोताओं को बता दीजिए आप कौन है।
2: मैं ग्राम दौड़ा जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ
1: जी। मदन जी, बहुत स्वागत है। और देखिए, आपके जो मन में छिपी हुई शिकायत थी वो हम महसूस कर गए थे, हमें लग रहा था, तो इसीलिए हमने बोल दिया कि हमारे श्रोता नाराज हैं शायद कि कार्यक्रम में शामिल। और आज तो आपकी खुशी दुगनी बढ़ जाती है ना, क्योंकि आप मैसेज में भी आ गए और पहले कॉलर भी हमारे आज के हैं आप।
2: मैं बन गया हूं आज यहां।
1: तो बताएं क्या कहना चाहेंगे आप वन महोत्सव पर?
2: मुद्दा बहुत अच्छा है, वन और भोजन
0: जी।
2: देखिए, वन और भोजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं
1: जी।
2: अगर बारिश नहीं होगी तो हमारे खेत में पैदावार नहीं होगी, जो है पेट पर फल नहीं लगेंगे
1: जी।
2: तो हम कहाँ से भोजन करेंगे? तो ये मुद्दा बहुत अच्छा है, और हमारे

0: जो है पर्यावरण बहुत खराब हो रहा है, वनों की अवैध कटाई हो रही है और हम अंधाधुंध पेड़ वो काट रहे हैं। तो मेरी तो ये प्रार्थना है सभी से कि वो पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जिससे पर्यावरण जो है सुरक्षित हो। और जो अधिक गर्मी हो रही है, कहीं अधिक बारिश हो रही है और कहीं अधिक ठंड पड़ रही है, इससे हमारा छुटकारा मिले।
1: हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से आवश्यकताओं के कारण लगातार पेड़ों के कटान हो रहे हैं, लेकिन गिरी जी ऐसा लगता है कि जिस तरह से कटान हो रहे हैं उस तरह से पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, है ना?
0: जी, सही बात है।
1: हाँ अच्छा, आपसे ये और जानना चाहेंगे कि जंगल का हमारे खाने पीने से क्या रिश्ता है?
0: खाने पीने से जंगल का हमारा रिश्ता है, हमें फल मिलते हैं और अगर जंगल होंगे तो वर्षा होगी।
1: जी जी।
0: और वर्षा होगी तो खेत में जो है फसल होगी, तो जो हमें हमारे हमारा पेट भरेगी।
2: सही कहा,
0: भोजन का बहुत बड़ा रिश्ता है।
2: सही कहा आपने, क्योंकि वन वर्षा को लेकर आते हैं तो खेतों में अच्छी बारिश होगी तो उपजाऊ मिट्टी भी होगी और सारी चीजें हमें मिलेंगी, शुद्ध हवा भी मिलेगी। एक चीज और अपने श्रोताओं से हम कहना चाहते हैं कि वन महोत्सव हम 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मना रखे हैं और इसी वन महोत्सव में हम बरसात में पेड़ लगाने का आह्वान भी करते हैं, तो इस पर हमारे और भी साथी कोई जुड़ेंगे तो हम उनसे भी प्रश्न करना चाहेंगे। तो आप बताइए कि वन महोत्सव में हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना तो चाहिए ना?
0: जी जी, मैं तो ये है कि हमारे जो घेर है जहाँ पशु बनते हैं हमारे गांव में
1: जी,
0: तो हमने काफी पेड़ लगा रखे हैं।
1: अच्छा।
0: और हर साल बढ़ाते हैं और मैं जो है एक पेड़ तो अपने हाथ से लगा हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। गिरी जी, आप हमारे वो श्रोता जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आप श्रोताओं को?
0: मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सभी को, तो वो इसकी वनों की पेड़ों की अवैध कटाई से पर रोक लगाएं और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें और हमें जो है हमारे पशु पक्षी सुरक्षित रहें और हमें फल मिले और भोजन मिले, हमारी जो फसल है वो ठीक ठाक हो।
1: बहुत अच्छी जानकारी गिरी जी आपने हमारे श्रोताओं तक दी और उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं उस पर अमल करेंगे। निधि, एक कॉलर हमारे साथ और कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं।
2: हाँ, क्योंकि घंटे की आवाज सुनाई दे रही है और वो मदन गिरी जी जुड़े थे, उनके लिए धन्यवाद।
1: हेलो जागरूक श्रोता।
2: हेलो
0: हेलो, फिर मैं आपसे जुड़ रहा हूँ जी।
2: अरे वाह, आज तो मदन गिरी जी धन्यवाद करते हैं, आप अपना फोन काटेगा जिससे कि हमारे और साथी जुड़ पाए।
0: जी जी जी, धन्यवाद।
1: हेलो
3: हेलो
1: हेलो जागरूक श्रोता, निधि लगातार कॉल आ रही है लेकिन डिस्कनेक्ट हो जा रही है। एक और कॉल,
2: चलिए जब तक हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं कि वन महोत्सव का ये सप्ताह जब हम मना ही रहे हैं तो इसमें हम सबको केवल बातें ही नहीं करनी है, क्योंकि हमने इसका जुलाई का समय इसलिए चुना है क्योंकि जुलाई के महीने में मानसून आता है जैसे भी हमने कहा, और इसमें लगाए गए नए नए पौधों को पर्याप्त जो है पानी मिल जाता है और उनके जीवन की उम्मीद बनने लगती
1: बिल्कुल
2: है।
1: बिल्कुल,
2: तो ऐसे में हमारे साथियों का ये जानना बहुत जरूरी है कि हम महोत्सव के साथ साथ इसको भाई जीवंत रूप दें और पौधों को लगाएं और देखें कि क्या होता है।
1: हेलो जागरूक श्रोता।
4: नमस्कार
1: जी। नमस्कार
4: दोनों दीदियों को, गुजरात से धीरज जब्बारी का सादर नमस्कार।
2: नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप?
4: हम अच्छे हैं। और
2: देखिए दोनों दीदियों को नमस्ते कर दी तो हमें तो भाई साहब बोलना ही था। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
4: गुजरात से धीरज जब्बारी बात कर रहा हूँ।
2: गुजरात से
4: जी। और नजीब बाबा का मैं एक नियमित श्रोता हूँ, व्हाट्सएप के जरिए, फोन इन के जरिए, युवाणी के जरिए आपसे जुड़ता हूँ।
2: बहुत ही बढ़िया बात। आप गुजरात में तो भयंकर गर्मी होती है, बोला भी नहीं जा रहा भाई हमसे तो गर्मी के बारे में इतनी बुरी तरह।
4: भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ गर्मी का प्रकोप ज्यादा रहता है और कई जगह पर बारिश का प्रकोप बारिश ज्यादा रहती है और कई जगह पर ठंडक रहती है, तो ये मिला जुला भारत है।
2: जी जी, तो ऐसे में जब वहाँ इतनी गर्मी है गुजरात में, वन महोत्सव आप कैसे मना रहे हैं, किस तरह के पौधे आप लगाते हैं, या वनों से संबंधित कोई आपकी ऐसी याद है कि कभी आप वन में गए, वहाँ पर आपने कुछ अच्छी सी चीज खाई, या ठंडी सी छांव में आप बैठे, या किसी विशेष पेड़ से आपका जुड़ाव हो गया?
4: जब बचपन में थे तो हम जंगल में चले जाते थे, और जहाँ बेर बोलते हैं, जो हम गुजराती में बोर बोलते हैं, तो बोर लेके सब हम वही टाइम पर बच्चे थे, इकट्ठे होके बोर यानी हमारे जो यानी बर्तन थे, उस बर्तन में डाल के उसमें मसाला डाल के यानी नमक है मिर्च है वो खाते थे, वो आनंद हम फाइव स्टार होटल में भी नहीं ले सकते।
2: सही कहा आपने। और आपके पीछे कुछ मोर जैसी आवाज आ रही थी।
4: जी जी जी जी,
2: देखा मन की आंखों से और इन कानों से पकड़ लिया।
1: अब निधि, कार्यक्रम वन महोत्सव पर आधारित है, तो मोर की आवाज आना
2: पीहू,
1: भी
2: पीहू।
1: है ना, सोने पर सुहागा आज हो गया,
4: सार्थक हो गया। और जो आपने श्रोताओं से फोनी जो बात कर रहे उसमें मोर की आवाज से हमारा कार्यक्रम है वो पूरा।
2: तो इसका मतलब आपके आस पास हरियाली है?
4: बिल्कुल हरियाली है, पेड़ ज्यादा है।
2: किस चीज के पेड़ लगे हैं?
4: ज्यादातर जो वो फॉरेनर मोर पेड़ है, और हमारे जो लिमड़ा है वो लिमड़ा बोलते लिम है, फिर वर्ड है, पिंपल है, वो भी है, लेकिन जो फॉरेनर के जो वृक्ष वो ज्यादा होते हैं।
2: अच्छा अच्छा,
1: यानी आपके आसपास तो बहुत अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हुए हैं,
2: और इन्हें पूरा प्रकृति का सानिध्य। देखो ये सुंदर मधुर आवाज बार बार कानों को उधर खींच रही है, लगता है हम गुजरात में वहीं बैठकर मोर को देख रहे हैं।
1: और निधि, मुझे लगता है कि
4: बारिश को पुकार रहे।
2: अच्छा,
1: मुझे लगता है कि मोर की आवाज अगर पीछे से मैं सुननी है तो इनसे थोड़ी सी बातें और अभी कर ली जाए, है ना। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर जंगल कम हो जाए तो क्या इसका असर हमारे खाने पीने पर भी पड़ेगा, आपको क्या लगता है?
4: बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हमें मेरे ख्याल से जो जंगल में जो खाने पीने की चीज कई बार मुफ्त में मिलती है, अगर वो जंगल कम हो जाए तो उसमें हमारे जीवन पर असर पड़ता है, और जो खाने की जो स्वादिष्टता जो जंगलों की जो यानी जो बिना दवा बिना खातर यानी उर्वरक वो स्थान हमें जो ये उर्वरक वाले खाने में नहीं मिलेगी।
1: हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, और इन सब के लिए हमें जंगलों को बचाना होगा, और जंगलों को बचाना सिर्फ श्रोताओं पर्यावरण को बचाना ही नहीं है, बल्कि आने वाले समय में अपने बच्चों की थाली को भी सुरक्षित रखना है ना निधि?
2: बिल्कुल, और उसमें सारे पौष्टिक तत्व होंगे तभी जब हमारे पास वन सुरक्षित होंगे और हमारी थाली अच्छी बन पाएगी। और देखते हैं हमारे ये साथी और कुछ संदेश देना चाहते हैं क्या, या फिर हमारे अन्य साथी की ओर चले। आप कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हेलो
3: सर
1: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: जी बढ़ापुर से एम ताहिर बोल रहा हूँ।
1: जी ताहिर साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
3: धन्यवाद मैम, बस बढ़िया है मैम, आप सुनाइए आप कैसे हो?
1: जी हम बिल्कुल ठीक हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि वन महोत्सव पर आप क्या कहना चाहते हैं, हम सब मिलकर अगर जंगलों की रक्षा करें तो कैसे कर सकते हैं, आप बताएंगे कुछ?
3: जी वनों का ज्यादा से ज्यादा लगाने से ही हमारी ये जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे उससे हमारा ये पर्यावरण बेहतर बनेगा। वन और भोजन के जो आप एक बात पे टॉपिक छेड़ रखा वो एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए, अगर वन नष्ट हो गए तो जलवायु ही बिगड़ेगी।
1: बिल्कुल जी,
2: बिल्कुल सही बात आपकी,
3: और खेती भी तबाह हो जाएगी।
1: ताहिर जी, आपके आपसे जानना चाहेंगे कि आपके शहर में या आप कहाँ रहते हैं, आपके क्षेत्र में कौन से ऐसे पेड़ हैं जिनमें फल फूल?
3: मैं यहाँ पे रहता हूँ जी मैम, कोटद्वार और बहादुर के बीच की जो ये आपके निजी वार्ड के पिछला हिस्सा समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए,
1: ये तो ग्रामीण क्षेत्र में आता है ना?
3: जी जी।
1: तो आपके गांव में कौन कौन से पेड़ हैं जिनमें फल फूल या फिर पत्ते लगते हैं जो लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, भोजन में इस्तेमाल करते हैं?
3: मैडम मेरे यहाँ पे हर चीज के फल और पेड़ है, यहाँ पे जलवायु यहाँ से बहुत अच्छा एक दूसरे का साथ है बनाने में जी, यहाँ पे हर चीज का पेड़ आप मालूम कर सकते हो किस चीज का नहीं है।
1: हम आपसे यही तो मालूम कर रहे हैं कि कौन से पेड़ है।
2: अच्छा ये बताइए, कोई फलों का पेड़ है?
3: नींद ले लीजिए मैम, आम ले लीजिए।
1: हाँ जी,
3: और जामुन ले लीजिए, जिस चीज को आप पालन करोगे वही मिलेगा हमारे यहाँ।
2: मजा आ गया, मजा आ गया। आपने स्वास्थ्य से शुरू करा, नीम से स्वस्थ रहना सिखा दिया, और आम और जामुन के स्वाद के

0: तो क्या ही
1: ओके,
0: कहने,
1: चलो सिंपल
0: गर्मियों में
1: है,
0: खूब।
1: बकियान
0: यानी सभी जो स्वास्थ्य के लिए तो बहुत फायदेमंद है ही, है ना,
2: और
0: साथ
2: स्वाद
0: में
2: भी
0: जो
2: है
0: है स्वाद के लिए भी बड़े फायदेमंद है ये
2: वही
0: पेड़।
2: पीपल है, ऑक्सीजन देते हैं, नीम है, स्वस्थ रखता है, सारी पेड़ हमें खूब छाया ऑक्सीजन देते हैं और फल भी दे रहे हैं। ऐसे भी पेड़ आपके पास हैं। आपके बच्चों को क्या शौक है पौधे लगाने का, उनका संरक्षण
1: यहाँ
2: करने का?
1: छत पर मेरे काफी पौधे लगे हुए हैं, जिसमें अंगूर भी है, अनार भी है, अमरूद भी है, गमलों में ही है।
2: अच्छा, उनकी देखभाल कौन करता है?
1: जी बच्चे करते हैं, हम करते हैं। तो
2: चलिए बहुत अच्छी बात है।
1: मैंने की जिम्मेदारियां मेरी होती है उनको, बच्चों की उनको पानी की जिम्मेदारियां होती है, खाद की जिम्मेदारी होती है, हर चीज सब
0: ताहिर
1: मिलकर ही चलता है काम। जैसे
0: जी, ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपको तो पेड़ पौधे लगाने का शौक है ही, आपने
1: बहुत
0: अपने
1: ज्यादा है
0: बच्चों को भी इसमें शामिल किया हुआ है, क्योंकि अगर उनको आज ही आदत रही तो निश्चित रूप से उनका पेड़ों के प्रति, वनों के प्रति लगाव बना
2: और
0: रहेगा।
2: रेणु जी, उनकी
1: इस
2: बात से
1: टाइम
2: हमने ये
1: पे
2: जाना
1: आप,
2: कि ग्रुप में काम होता है तो
1: हाँ
2: सही
1: जी,
2: होता है।
1: मैंने आपकी बात काट रहा हूँ। ड्रैगन का एक फल होता है जो मार्केट में अक्सर कम मिलता है, लेकिन मेरी छत पे आज भी आ रहे हैं ड्रैगन
0: ड्रैगन फ्रूट,
1: फूड।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: जी अमरूद भी है, अनार भी है, और चीकू भी है,
0: निधि चलना पड़ेगा
1: और
0: इनके गांव में।
1: जी आपके पास भी है, कोई दूर नहीं है, मैं बहापुर से हूँ, ये नियर ऑफ नहीं ना।
2: नजोबाद बिल्कुल पास है आकाशवाणी। ठीक है, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने बताया श्रोताओं को कि हम अपने शौक को पूरा करते हुए फल और सब्जी ये घर पे भी लगा सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत
0: बहुत बहुत
2: बहुत
0: शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
0: हेलो जागरूक श्रोता, हेलो, हेलो
1: हेलो,
0: हेलो
1: हाँ
0: जागरूक
1: मैम,
0: श्रोता,
1: हेलो
0: लगता है दोबारा इनका नंबर लग गया है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए उनका फोन लेते हैं। हेलो जागरूक श्रोता
3: हेलो जागरूक श्रोता, नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: जी। मैम मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संबल, ग्राम सिरसा से।
0: सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और निधि भारद्वाज मैम को कि आप दोनों बनी हुई हैं स्टूडियो में।
2: नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: मैम हम अच्छे हैं, आप सुनाइए कि आप कैसी हैं।
2: सचिन जी, हम बिल्कुल बढ़िया हैं। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि वहाँ आपका सिरसा में मौसम कैसा है?
3: मैम हमारे यहाँ तो
0: संभल
3: 2 दिन से बारिश हुई है और
2: संभल
3: आज भी
2: सिरसा से।
3: मौसम सुहावना बना हुआ है।
2: हाँ, और वहाँ की सुहावनी छटा के बीच बारिश हुई है कि नहीं अभी?
3: बारिश हो गई 2 दिन और आज भी थोड़ा हल्की धूप है आज।
2: अच्छा, बस यही तो मैं कहना था। देखिए, वन महोत्सव मना रहे हैं, बारिश की बातें करनी है आपसे, धीरे धीरे आपसे ये भी पूछना है, कोई पौधा लगाने की तैयारी कर दी आपने सचिन जी, या अभी सोच ही रहे हैं?
3: हमने पहले ही लगा दिए हैं।
2: कौन से वाले पौधे?

0: आज भी थोड़ा हल्की धूप है आज।
1: अच्छा, बस यही तो मैं कहना था। देखिए, वन महोत्सव मना रहे हैं, बारिश की बातें करनी है आपसे, धीरे धीरे आपसे ये भी पूछना है, कोई पौधा लगाने की तैयारी कर दी आपने सचिन जी, या अभी सोच ही रहे हैं?
0: हमने पहले ही लगा दिए हैं।
1: कौन से वाले पौधे?

0: ठीक और धान गेहूं बाजरा ऐसे ही होता है।
1: अच्छा
0: हाँ तो ऐसे में तो देखिए जामुन भी लगा सकते हैं और जो भी अपना पौधा उपलब्ध हो वो हो ही जाता है।
1: सचिन जी, कई बार हम उत्साह में पौधे तो लगा देते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी देखभाल नहीं कर पाते। अगर हर व्यक्ति केवल एक पौधे को भी पेड़ बनने तक संभाल ले तो हमारे आसपास की जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदल जाएगी, है ना।
0: हाँ
1: लेकिन
0: देखिए
1: जी
0: मैंने अपने घर में ना एक बगान का पौधा लगाया था। वह आज लगभग 25 फीट की इसकी ऊंचाई होगी और वह बकांत का पौधा है और बहुत अच्छा है।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर। और निश्चित रूप से आप उसकी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे होंगे तभी वो इतनी ऊंचाई ले चुका है, इतना बड़ा हो गया। श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मैम जब पौधों को काटे नहीं, यदि काटें तो वहां पर पौधे अवश्य लगाएं और पेड़ वो उनका ख्याल रखें।
1: चलिए, बहुत धन्यवाद कि आप फोन के माध्यम से आज के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे बात की, आपका बहुत शुक्रिया।
0: क्रिया
1: हेलो जागरूक श्रोता, हेलो,
2: एक अन्य कॉल को देखते हैं अभी।
1: हेलो हेलो,
2: लगता है फोन अभी जुड़ा नहीं है, लेकिन एक और श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं।
3: हेलो
1: हेलो
3: हेलो नमस्कार,
1: जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
1: राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका शिमला से कार्यक्रम में।
3: जी धन्यवाद आपका।
1: क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम में?
3: जी, जो आज के कार्यक्रम में मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि जब हमारे जो पहले जो बारिश होती है, तो बारिश होती है जब पहली बूंदे जब पड़ती हैं हमारे ऊपर, तो बहुत जो है मन जो शांत होता है, खासकर जो हमारे पहाड़ी इलाकों में।
2: अच्छा, पहाड़ी इलाकों में।
3: जी हमारे यहाँ जब बारिश होती है तो
2: हाँ,
3: बहुत अच्छा लगता है और बहुत ये जो जो बारिश में जो है बिल्कुल आनंद आता है, तो एकदम जो है बिल्कुल मन जो है बिल्कुल खुश हो जाता है और बहुत अच्छा ये जो बारिश का जो है पर्व होता है वो होता है। लेकिन इसमें एक बात भी जोड़ना चाहता हूँ मैं, कि जैसे कि बारिश तो अच्छी होती है लेकिन कई बार ज्यादा बारिश आती तो फिर खतरा रहता है, लेकिन बारिश अगर सामान्य आए ना तो बहुत अच्छा लगता है। जब बारिश में जो है जब बूंदे पड़ती हैं या ऐसे मौसम में जब बारिश के मौसम में जब चाय पकौड़े का खाने का जो आनंद भी आता है, लेकिन जब वो नुकसान करता है बारिश तो बहुत दुख होता है कि किस तरह से जो
2: देखिए,
3: है।
2: चाय के साथ आपने खाने की बात कर दी, कोल्ड ड्रिंक छोड़िए, पकौड़ों की और चाय की बात करते
1: और
2: हैं
1: निधि, हमारा
2: और
1: आज
2: जुड़ते
1: का जो
2: हैं।
1: विषय भी
2: हाँ
1: वन
2: वन
1: और भोजन ही है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे हम कि आपके घर में जो खाने में चीजें इस्तेमाल होती हैं उनमें कौन सी चीज ऐसी है जो सीधा वन से आती है, पेड़ों से आती है? कोई डिश ऐसी आपकी स्पेशल है आपके घर में? हालांकि अभी आपने जिक्र किया, आप सोचिए क्या आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे। कोई डिश है जो वनों से जुड़ी हुई हो, पौधों से जुड़ी हुई हो?
3: जी, बिल्कुल बिल्कुल, वनों से जुड़ी हुए हैं हमारी हैं वो डिश है। हाँ
1: हेलो,
2: किसी तरह का कोई साग
3: जी हाँ जी
2: सब्जी
3: हाँ
2: आप
3: जी,
2: बनाते हो?
3: तो जैसे कि हम क्या कहते हैं अखरोट होता है, अखरोट की हम चटनी बनाते हैं।
1: अच्छा,
3: जो हमारे वन होते जाते हैं हमारे पास जो है अखरोट का पेड़ होता है, तो उससे जो है जब हरे हरे जो है जो अखरोट होते हैं, जब अखरोट की जब चटनी बनाते हैं उसके साथ कई बार हम तो इसका जो है सिद्धू भी बना देते हैं उसमें मिक्स करके। सिद्धू
1: और हिमाचल की प्रसिद्ध जो है डिश है सिद्धू
3: जी,
1: जी। तो देखिए, आपने कार्यक्रम में खाने की बात कर दी
2: स्वाद ला
1: और स्वाद ला
2: दिया और
1: दिया
2: सेहत भी
1: अखरोट की चटनी है
2: हाँ
1: तो
2: स्वाद सेहत वन
1: बिल्कुल
2: और भोजन इस जागरूकता कार्यक्रम में इस विषय पर आज आपसे हमें मिल गया।
1: अच्छा, आपसे एक प्रश्न और करना चाहेंगे कि जंगलों को बचाने के लिए हम अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो अपना सकते हैं, हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे आप?
3: जी, तो जंगलों को बचाने के हमें छोटी छोटी बात तो ये है कि हमें जंगल को काटना नहीं चाहिए, और अगर काट भी

0: हैं तो हमें पेड़ लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कई बार जंगलों में आग आग आग की समस्या होती है, जंगल आग की समस्या होती है, बिना हमें आग को बचाने के लिए हमें खुद सहयोग करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो स्मोकिंग करने वाले हैं वो क्या करते हैं, कई बार स्मोकिंग कर लेते, कई बार जो है स्मोकिंग जो है जलती जो है माचिस के लिए आग कहीं फेंक देते।
1: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण,
2: कितनी अच्छी बात आपने कही है। जो श्रोता हमारे सुन रहे हैं इस बात को पूरी ऐसे ही फैला देंगे जैसे हवा से खुशबू फैल जाती है, कि कहीं पर भी जब हम इस समय छुट्टियों में घूम रहे हैं या पहाड़ों पर जाते हैं, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जलता हुआ न छोड़े।
1: और श्रोता, बिना वजह पेड़ों की टहनियां भी ना तोड़े जंगल में। निधि, अक्सर लोग जाते हैं और पैकेट्स वगैरह वहां छोड़ देते हैं, तो भाई इस तरह की जंगलों में आप गंदगी भी ना फैलाएं, और जहां भी मौका मिले श्रोताओं पौधे जरूर लगाएं, सफाई जरूर रखें।
2: इस तरह सफाई रखनी जैसे हम अपने घर की रखते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो वहां पर कूड़ा ना डालें, अनुरोध हमारा भी है। और देखते हैं अब हमारे कौन से साथी
1: आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत शुक्रिया
0: जी, धन्यवाद
2: धन्यवाद।
1: हेलो हेलो जागरूक श्रोता, हेलो हेलो हेलो जागरूक श्रोता,
2: देखिए जब तक साथी जुड़ने का प्रयास करते हैं, हम अपने साथियों से कहना ये चाहते हैं कि आज हमने वन और भोजन पर बहुत सारी बातें की, और ये भी जाना कि जो हमारी थाली में हम व्यंजन खाते हैं, मेहमानदारी में लोगों को परोसते हैं, वो कितनी मेहनत से वनों में खेतों में तैयार होकर आते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो इसके लिए हमें ये करना है, जो हर कोई तो किसान नहीं बन सकता, लेकिन हर व्यक्ति पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रहरी बन सकता है। आप अपने चारों ओर हरियाली रखिएगा, बहुत सफाई कीजिएगा, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, आज हमने सुबह भी कहा था, और जो खाने में भोजन में हमारे पौष्टिक चीज़ें हैं वही बच्चों को खिलाएं, और बच्चों को बताएं कि ये अपने हाथ से बने हुए भोजन ही हमारे लिए सेहतमंद होते हैं।
1: एक कॉल और हमारे स्क्रीन पर इस समय पर आ रही है, आइए उसे ले लेते हैं। हेलो हेलो जागरूक श्रोता,
2: बोलिएगा भाई कौन हमारे साथी हमसे जुड़े हैं। हेलो,
1: लगता है वो सिर्फ हमें सुनना चाहते हैं।
2: हेलो, चलिए ये साथी जब तक जुड़ते हैं हम इनको फिर बताते हैं कि आप हमसे जुड़ सकते हैं 9457078288 इस नंबर पर, और हमारा दूसरा नंबर रहेगा आपसे बातचीत करने के लिए 01341230105।
1: 3 मिनट अभी हमारे पास और हैं, तो आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हेलो हेलो जागरूक श्रोता, हेलो
3: हेलो बहन जी, नमस्कार
1: जी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जागरूक श्रोता में।
3: बहन जी आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका। कौन बोल रहे हैं
3: बहन जी? मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
1: जगदीश जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद बहन जी।
1: आज का विषय हमारा क्या है आप जानते
3: हैं? आप बता दो बहन जी।
1: निधि जी,
2: हाँ तो मैं बताती हूँ। जगदीश जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत हमसे जुड़ने के लिए, आपको नमस्कार करते हुए हम बताते हैं कि वन और भोजन ये विषय आज हमने चुना है, क्योंकि वन महोत्सव सप्ताह भी हम मना रहे हैं, और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या वनों का हमारे भोजन की थाली तक कोई जुड़ाव है, या वनों में कभी आप घूमने गए हैं, आपको वहाँ की कोई याद अच्छी लगती है, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि कहीं सफर के दौरान किसी वन में आप रुके, कहीं किसी पौधे के अपने फल खाए हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं।
3: बहन जी ऐसे है, मेरा बेटा उधर हिमाचल प्रदेश में रहता है, तो मैं इधर पंजाब में रहता हूँ, मेरा उधर जाना आना बना ही रहता है।
2: अच्छा,
3: तो उधर बहुत घूमने लायक जगहें हैं। तो

0: हम घूमने जाते हैं इधर उधर, बहुत हिमाचल प्रदेश में हम जाते रहते हैं,
1: वहां की खूबसूरती आपको लुभाती होगी,
0: सचमुच ही बहुत खूबसूरत है।
1: ऊपर से बच्चा भी वही है।
0: कहीं चले जाएं, किधर भी चले जाएं, खूबसूरती खूबसूरती
2: ये तो
0: है।
2: आपने बताया कि आप हिमाचल जाते हैं, लेकिन अभी आप पंजाब में जहाँ रहते हैं वहाँ के विषय में बताएं कि वहाँ कौन-कौन से पेड़ आपके आसपास हैं, या आपने आजकल में कोई पेड़ पौधे लगाए हैं तो उनके विषय में बताएं।
0: बहन जी, अभी बरसात का मौसम शुरू होने वाला ही है, सावन का महीना आने वाला है, तो फिर ऐसे में वृक्ष लगाना बड़ा आसान होता है और उनका पनपना भी बड़ा आसान होता है।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने,
0: तो हम
1: आपको पौधे
0: आने वाले
1: लगाने का
0: महीने
1: शौक
0: में,
1: है
0: हाँ बिल्कुल बहन जी, बहुत पौधे हमने लगाए हैं।
1: तो कार्यक्रम का समय समाप्त होने को आप बताइए आपके बगिया में कौन-कौन से फूल पौधे हैं।
2: इनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है और निधि कार्यक्रम का समय भी लगभग अब समापन की ओर है।
1: हाँ तो ठीक है श्रोताओं, फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक पर अगले जागरूक श्रोता कार्यक्रम में। तब तक के लिए जागरूक श्रोता कार्यक्रम संपन्न करने की अपनी सखी निधि भारद्वाज,
2: और रेणु कोटनाला को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार। आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता।
2: मीडियम वेव 314.64 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजे हैं, आप पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में।

0: ये रास्ते हैं पार के। श्रोताओं, भी आपने सुना इस फिल्म का गीत, आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की थी। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था अदनान सामी ने।
1: सुनो ना।
0: हाँ।
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में आपने सुना फिल्म बरसात का गीत। शब्द रचना थी समीर की और संगीत था नदीम शमन का। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

बप्पी लहरी का संगीतबद्ध किया हुआ इंदिवर का लिखा गीत आप श्रोताओं ने सुना नितिन मुकेश और आशा भोसले की आवाज में। फिल्म थी कसम। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत अरमान मलिक का गाया हुआ फिल्म हेट स्टोरी 3 से। गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतजर ने और संगीत बामन का है।

अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक

0: एक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
1: श्रोताओ, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
0: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्स क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
1: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते।
0: जी
1: धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
0: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है,
0: जी
1: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
0: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की, लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
0: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी, जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ?
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना नानी माँ।
7: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी

0: नाना नानी की शादी के कपड़े, भाई वाह। नानी, पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
1: हाँ हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
2: नानी, एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
1: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
0: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
1: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है, है ना?
0: मामा जी, मामा जी।
3: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
2: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
3: ये तो बहुत अच्छी बात है
0: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
3: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ, यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
2: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
3: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भूर्ज वृक्ष कहा जाता है।
0: अच्छा, भूर्ज वृक्ष।
3: हाँ, भूर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
3: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
2: अच्छा।
3: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी

0: आम लोग करते थे।
1: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ हाँ बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
3: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
2: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे, जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
3: जी।
2: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रहीं
3: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
2: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं, कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
4: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से

एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। सहे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूं, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूं, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की इस हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने

0: पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
1: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
2: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
1: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
2: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
0: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवती गढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
3: अलख निरंजन।
4: साधु बाबा।
3: अब अच्छा,
4: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
3: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
4: क्या?
3: हाँ, पाप रे पाप, क्या लश्कर है बच्चा
4: है?
3: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
4: अच्छा?
3: हाँ,
4: बहुत बड़ी फौज है।
3: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
4: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
3: अच्छा,
4: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
3: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
4: बिल्कुल है।
3: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
4: उसका भी इंतजाम है।
3: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
4: देखो, तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं,

0: पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
0: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
0: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूं। बदन सिंह रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में सीर लगा है माँ।

0: रह रहा है।
1: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है कनु।
2: रानीबा, देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
1: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
2: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
1: अच्छा तो गनु बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
2: रानी माँ,
3: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: और श्रोताओ, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, भी आपने सुना एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए एक और प्रायोजित कार्यक्रम, हमारी पेड़ियां।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। श्रोताओं, आज के युग में बहुत से परिवर्तन आ रहे हैं। लोगों के रहन सहन, खाना पीना और पहनावे में बहुत परिवर्तन आ गया है, परंतु आज भी कुछ लोग पुरानी सोच वाले हैं। श्रोताओं, अक्सर आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि हमारे समय में ये नहीं होता था, वो नहीं होता था, महिलाओं को घर में रहना चाहिए, अधिक शिक्षा की आड़ लेकर लड़कियां बिगड़ रही हैं। और ये तो जरूर ही सुना होगा कि ज्यादा पढ़ी लिखी बहू में संस्कार की कमी होती है, परंतु ऐसा नहीं है। आज शिक्षा ने नारी को इतना सशक्त बना दिया है कि वह बड़े से बड़े काम को बहुत ही सहजता से संपन्न करती है, घर की जिम्मेदारियों का पालन बहुत ही सही ढंग से करती है। परंतु कुछ ही पुरानी सोच रखने वाले लोग आज भी उन्हीं नियमों का पालन करते हैं और अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते। उनके अनुसार बहू और बेटी में बहुत बड़ा अंतर है। बहू को तो घर में रहकर सिर्फ घर के ही काम करने चाहिए। अगर घर की बहू बाहर जाकर नौकरी करती है तो उनके मान सम्मान को ठेस पहुंच जाती है, जबकि बेटी को नौकरी करने और ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने पर बल दिया जाता है। उनके अनुसार बहू और बेटी दोनों के लिए अलग अलग नियम है, परंतु आज उन पुरानी सोच रखने वाले लोगों को समझना होगा कि बहू और बेटी दोनों को शिक्षा और नौकरी करने का अधिकार है, परंतु पुरानी सोच रखने वालों के कारण ही नारी को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है। रीति रिवाज के नाम पर घर की चार दीवारी में बंद रखा जाता है, जिससे नारी के गुणों को उजागर नहीं किया जाता, परंतु शिक्षा

0: पाकर महिलाओं को उनके अधिकारों का ज्ञान होता है। शिक्षा पाकर ही वे घर गृहस्थी में सहयोग दे पाती हैं। इस विषय पर हम आपसे कुछ बात करेंगे और कुछ सुनाएंगे, एक नाटक। पूनम एक पढ़ी लिखी और बहुत ही संस्कारी बहू है। वह सुलोचना जी मतलब अपनी सांस का बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखती है। वह अपने घर का काम बहुत ही सलीके से करती है और पूरी कोशिश करती है कि उसकी सास को उसे किसी प्रकार की शिकायत ना हो। परंतु सुलोचना जी जो पूनम की सास बहुत ही पुराने विचार की है, वह पूनम के हर काम पर कड़ी नजर रखती है। वह चाहती है जिस प्रकार उन्होंने अपनी सास के समय उनकी किसी भी बात का विरोध नहीं किया, उसी तरह पूनम भी उनके हर एक फैसले को माने और हर काम को पूछ कर करे। वहीं समीर जो पूनम का पति है, वह एक कंपनी में काम करता है। समीर पूनम और अपनी माँ का पूरा ध्यान रखता है, परंतु वह कभी भी अपनी माँ और पत्नी के बीच होने वाली बातों में नहीं बोलता। वह पूनम को ही समझाता है कि माँ की किसी बात का बुरा ना मानना। और पूनम भी सुलोचना जी का पूरा सम्मान करती है। सुलोचना जी की बड़ी बेटी श्रद्धा एक विवाहित महिला है। वह अपनी माँ के घर पर कुछ दिन रहने के लिए आई है। उसका एक 2 साल का बेटा है। वह एक ऑफिस में काम करती है। वह बहुत ही समझदार महिला है। वह अपनी माँ को भी समझाती है कि आजकल लड़कियां बहुत काम कर रही हैं, घर के साथ साथ ऑफिस में भी काम करती हैं। परंतु पुराने विचारों होने के कारण वह श्रद्धा की बात को अनसुना कर देती है और अपने विचारों को अहमियत देती है। वही पूनम अपनी सास और ननद का पूरा ध्यान रखती है और अपने काम में व्यस्त रहती है। वहीं सुलोचना जी के पति रामचंद्र जी बहुत ही शांत व्यक्ति हैं। वह सुलोचना जी को समझाते हैं, परंतु सुलोचना जी को समझाने के लिए तथा इस युग में बहू बेटी एक समान है ये बताने के लिए आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक।
1: अरे सुनती हो, अभी तक सुबह की चाय नहीं आई।
2: अरे क्या, अब तक चाय नहीं दी आपको? तभी बोलती थी ज्यादा पढ़ी लिखी बहू लाओगे तो यही होगा।
1: अरे इसमें पढ़ाई लिखाई कहाँ से आ गई? क्या पता बहू किसी काम में बिजी हो, तुम क्यों नहीं चाय बना लेती?
2: हाँ, घर में बहू के होते हुए अब मैं काम करूँ।
1: तो क्या हुआ, घर के छोटे छोटे काम करने से तुम थोड़ी छोटी हो जाओगी? अरे काम करने से तो शरीर फिट रहता है।
2: हाँ, मुझे तो घर की नौकरानी बना दो। पहले आपकी माँ की जी हजूरी की, अब आपकी बहू की जी हजूरी करूँ। तो सुन लो, ये सब मुझसे नहीं होगा।
1: तुम भी ना छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना देती हो।
3: सॉरी पापा जी, वो थोड़ी देर हो गई चाय देने में।
1: कोई बात नहीं बेटा।
3: माँ जी, क्या आपको कुछ चाहिए?
2: नहीं बहू, तुम जाकर समीर को नाश्ता देकर जल्दी से उसके ऑफिस का टिफिन पैक कर दो। और हाँ, सभी काम सफाई से और ध्यान से करना।
3: जी माँ जी, ठीक है।
0: परंतु पूनम को घर के सारे काम साड़ी पहनकर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए वह समीर से बात करना चाहती है, तो वह समीर के लिए नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में समीर ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। पूनम कुछ समय चुपचाप वहीं खड़ी रही और सोचती है कि किस प्रकार वह समीर से बात करे। तभी पूनम समीर से बोलती है।
3: समीर, समीर सुनो ना, कुछ बात करनी है मुझे आपसे।
4: हाँ बोलो, क्या बात है?
3: समीर, घर के काम करते समय क्या मैं साड़ी की जगह सूट पहन सकती हूँ?
4: अरे यार पूनम, तुमको तो पता है ना, माँ को तुम्हारा सूट पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं।
3: पर समीर, मैं घर के बहुत से काम को साड़ी पहनकर नहीं कर सकती। प्लीज समीर, समझने की कोशिश करो। समीर, एक बार तुम माँ से बात करो ना।
4: देखो पूनम, मैं इस बारे में माँ से कुछ नहीं कहने वाला, और तुम भी जानती हो माँ नहीं मानेगी।
3: तो क्या मैं एक बार माँ से बात कर लूँ?
4: तुमको जो ठीक लगे वो करो, पर मैं तो माँ को कुछ नहीं बोलने वाला। हाँ, पर मुझे तुम्हारे सूट पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब मैं ऑफिस चलता हूँ।
0: इतना कहकर समीर गाड़ी लेकर जॉब पर चला जाता है और पूनम घर के काम में लग जाती है। वो किचन के काम कर ही रही होती है और अपनी सास से बात करने के बारे में सोच रही होती है कि किस तरह से वह अपनी सास से साड़ी की जगह सूट पहनने वाली बात कहे। उसकी काम वाली शांता उसको देखकर पूछ लेती है, बीबी जी क्या सोच रही हो? तो पूनम बोलती है, कुछ नहीं।

0: बस वैसे ही। और तभी पूनम की सास सुलोचना जी वहां आ जाती है। अभी सुलोचना जी रसोई का जायजा ले रही थी, तभी पूनम हिम्मत करके उनसे पूछ लेती है।
1: हाँ, क्या बात है, बोलो।
2: माँ जी, आप कहे तो मैं भी आपकी तरह घर में सूट पहनना शुरू कर दूं क्या? वो साड़ी में काम नहीं हो पाता है मुझसे।
1: खबरदार बहू, जो मेरे सामने तुमने दोबारा ऐसी बात कही तो इस घर में तुम मेरी बराबरी करने चली हो।
2: नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस,
1: मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था, लेकिन एक बात याद रखना बहू, जब तक मेरी सास जिंदा थी मैंने हमेशा ही साड़ी पहनी थी और साड़ी का पल्लू हमेशा सर से उतरने नहीं दिया। उनके गुजर जाने के बाद ही मैंने अपनी मर्जी से सूट पहनना शुरू किया था, उससे पहले नहीं। और तुम्हारी सास यानी कि मैं

0: लोचना जी रसोई का जायजा ले रही थी, तभी पूनम हिम्मत करके उनसे पूछ लेती है।
1: हाँ, क्या बात है, बोलो।
2: माँ जी, आप कहें तो मैं भी आपकी तरह घर में सूट पहनना शुरू कर दूं क्या? वो साड़ी में काम नहीं हो पाता है मुझसे।
1: खबरदार बहू, जो मेरे सामने तुमने दोबारा ऐसी बात कही तो इस घर में तुम मेरी बराबरी करने चली हो।
2: नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस,
1: मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा क्या मतलब था, लेकिन एक बात याद रखना बहू, जब तक मेरी सास जिंदा थी मैंने हमेशा ही साड़ी पहनी थी और साड़ी का पल्लू हमेशा सर से उतरने नहीं दिया। उनके गुजर जाने के बाद ही मैंने अपनी मर्जी से सूट पहनना शुरू किया था, उससे पहले नहीं। और तुम्हारी सास यानी कि मैं, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ।
2: पर माँ,
0: तभी एक चीख सुनाई देती है। ये चीख रोहित यानी श्रद्धा के बेटे की थी, जो अपनी माँ श्रद्धा के पीछे पीछे आने की कोशिश में सीढ़ियों से गिर गया था और बहुत ही चीख चीख कर रो रहा था। उसके सिर पर चोट आई थी, बहुत खून निकल रहा था। तभी पूनम और काम वाली शांता भी वहाँ आ गई। सुलोचना जी घबरा कर रोने लगी और कहती है,
1: अरे अरे ये क्या हुआ, रोहित कैसे गिर गया? हे भगवान, कितनी चोट आई है इसे। शांता जरा देख तो सही, पड़ोस वाले शर्मा जी घर पर ही है ना, जल्दी जा उन्हें बुला कर लेकर आ, रोहित को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, जल्दी जा।
0: पर माँ जी, अभी तो उनको मैंने ऑफिस जाते हुए देखा है, वो तो चले गए अपने ऑफिस।
1: अरे अब क्या होगा, अब मैं क्या करूँ, घर में कोई आदमी भी नहीं है जो रोहित को हॉस्पिटल ले जाए, हे भगवान।
2: माँ जी, समीर भी ऑफिस चले गए, घर पर नहीं है, आप कहो तो मैं उनको फोन करके बुला लूँ क्या घर?
3: अरे तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। अरे भाभी, आपको तो स्कूटी चलानी आती है ना, आप तो स्कूटी से कॉलेज जाती थी ना। भाभी जल्दी से स्कूटी की चाबी ले आओ और रोहित को हॉस्पिटल ले चलो, भाभी प्लीज जल्दी करो।
1: पर दीदी, पर वर क्या, जल्दी कर बहू, ये ले स्कूटी की चाबी और रोहित को हॉस्पिटल ले जाओ।
2: जी माँ जी, ठीक है।
0: साड़ी का पल्लू संभालते हुए स्कूटी चलाने के लिए बाहर की ओर चलती है, तभी उसकी सास सलोचना जी आवाज लगाती है,
1: अरे बहू रुक, पहले सूट पहन ले, साड़ी पहनकर स्कूटी कैसे चलाएगी, कहीं गिर गई तो।
2: पर माँ जी,
1: पर वर कुछ नहीं, जल्दी कर जाके सूट पहन और रोहित को जल्दी ले जा हॉस्पिटल।
2: ठीक है माँ जी।
0: पूनम बहुत ही हैरान थी सास के ऐसे व्यवहार से। वो सास जो अभी कुछ देर पहले बोल रही थी कि मेरे मरने तक का इंतजार करो, तब करना अपने मन की, और अब वो खुद ही बोल रही है कि सूट पहनकर और घर से बाहर जाने के लिए स्कूटी की चाबी दे रही है। स्कूटी की चाबी मिलते ही मानो पूनम की खुशी की कोई सीमा नहीं थी, अब वह खुद को बहुत खुश और आजाद महसूस कर रही थी। पूनम ने जल्दी से सूट पहना और स्कूटी की चाबी ली और रोहित और श्रद्धा के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई, जिससे रोहित का इलाज समय पर हो सका और सुलोचना जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब सुलोचना जी अपनी बहू को हर वो काम करने को कहती जो उनकी बेटी करती है, फिर वो पढ़ाई हो या जॉब। अब तो सुलोचना जी खुद पूनम को मार्केट ले जाती और उसकी पसंद की ड्रेस दिलवाती है, और पूनम भी सुलोचना जी की बहुत सेवा करती है, अपनी माँ से भी ज्यादा ध्यान रखती है। सारा दिन उनके घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहता है।

तो श्रोताओं, आपने इस कहानी के माध्यम से सुना कि किस प्रकार एक छोटी सी घटना ने सुलोचना जी की पुरानी सोच और रूढ़वादी सोच को बदल कर रख दिया और किस तरह उनकी सोच बदल गई। इस कहानी को सुनकर आपके मन में क्या विचार आए हैं, जरूर हमें बताएं।

इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर

नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी पीढ़ियाँ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत श्रोताओं, लीजिए सुनिए लियाकत अली का सारंगी पर बजाया राग प्रदीप की। तबले पर संगत दी है जमीर अहमद ने।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत श्रोताओं भी आप सुन रहे थे लियाकत अली का सारंगी पर बजाया राग प्रदीप की। तबले पर संगत दी थी जमीर अहमद ने। हम आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को, मिड डे मेलोडी के इस संगीतमय सफर में स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। और श्रोताओं कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूँ रेणु कोडनाला। श्रोताओं कहते हैं कुछ गीत सिर्फ कानों से नहीं दिल से सुने जाते हैं। उनकी धुनें बीते दिनों की खुशबू लेकर आती हैं और बोल उन रिश्तों की याद दिलाते हैं जो समय के साथ और भी अनमोल हो जाते हैं। तो आइए प्यार मुस्कुराहट यादों और वादों से सजे इस संगीतमय सफर को आज एक बार फिर से संगीतमय बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को फिल्म हिमालय की गोद में से। आवाज मुकेश की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। श्रोताओं जब किसी की खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक सीमित ना रह जाए बल्कि उसकी सादगी उसका अपनापन भी दिल को छू ले तब शब्द अपने आप गीत बन जाते हैं। ऐसा ही एक मधुर गीत जिसमें प्रेम की सबसे सुंदर कल्पना दिखाई देती है आपके लिए प्ले कर रहे हैं।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से। श्रोताओं, कहते हैं सच्चे प्यार में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, कभी कभी सिर्फ एक नज़र, एक मुस्कान या किसी की खामोश मौजूदगी ही पूरी दुनिया जैसी लगती है, है ना? कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से जिए जाते हैं और वहीं सबसे लंबे समय तक याद भी रहते हैं। ऐसे ही गहरे एहसासों से सजा ये मधुर गीत अब हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। फिल्म प्रेम पर्वत से आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना जानिसार की और संगीत जयदेव का।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRVP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र और कार्यक्रम है मिड डे मेलोडी। श्रोताओं, हर रिश्ता भरोसे और वादों की नींव पर खड़ा होता है, लेकिन जब कोई वादा अधूरा रह जाता है तो उसकी टीस बरसों तक दिल के किसी कोने में बनी रहती है। शायद यही वजह है कि ये गीत आज भी हर सुनने वाले के दिल को छू जाता है। आप भी सुनिए भावनाओं से भरा ये अमर गीत फिल्म हम किसी से कम नहीं से, स्वर मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठ का है, संगीत आर डी बर्मन का और शब्द रचना है मजरू सुल्तानपुरी की।

मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठ को आपने सुना, फिल्म थी हम किसी से कम नहीं। मिड डे मेलोडी का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। जी हाँ श्रोताओं, खूबसूरती के पल चेहरे में नहीं होते। जी हाँ, खूबसूरती केवल चेहरे में नहीं होती बल्कि इंसान की सादगी, व्यवहार और उसके दिल की अच्छाई में बसती है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से दिल जीत ले तो उसकी हर अदा और भी हसीन लगने लगती है। यही एहसास इस गीत में बड़ी नज़ाकत से पिरोया गया है, जिसे लिखा है कैफी आज़मी ने, संगीत बप्पी लहरी का है, आवाज़ यशोदास की और फिल्म का नाम है टूटे खिलौने। और ये है आज के कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

0: तो श्रोताओं, आप संगीत का ये सफर यहीं तक चलते चलते आपसे इतना जरूर कहेंगे कि जीवन की भागदौड़ में अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें, क्योंकि श्रोताओं, यादें, रिश्ते और संगीत, ये तीनों ही उम्र भर हमारा साथ निभाते हैं। और अब इस उम्मीद के साथ की होगी आपसे फिर मुलाकात, इजाजत दीजिए रेणु कोटनाला को, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिट्टी मेलोडी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजा है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस यानी के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं।

0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिसाद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमेरिकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th Indo-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam in Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report mentioning the resistance

कार्यक्रम घर संसार सुनने वाली हमारी सारी बहनों को आपकी बहन बरसा की राम राम। अब बहनों कैसी हो? घर परिवार में सब ठीक ठाक? और ढोर डंगर सब अच्छे था रे? हाँ बहन ना, सब राजी खुशी रहे, सब बढ़िया से रहे, हम तो यूं ही चाह हैं। और एक बात तो है बहन ना, थारा हमारा रिश्ता भी बड़ा ही गहरा, एक दूसरे की राजी खुशी पूछना तो जी हल्का सा ही हो जा है। और तभी तो हम बार बार तुमसे मिलने आ जा, और कुछ ना कुछ तो है ही तब में, जो हम कुछ ना कुछ नया तो थारे लिए ला में ही है रोज। अब बहनों देखो, बात तो थारी मारी खत्म होती ना कभी भी। अब जहाँ बैठ जाओ तो बताओ, आस पड़ोस की भी, जी की, तन की, मन की बतेरी बातें हों जिन्हें करनी हो, है नहीं बहन ना? लेकिन उससे पहले सुन लें पहले कुछ जरूरी से संदेश।

खाना, घर के काम करने, खेतों के काम करने, सारे काम मिलजुल के जो करे हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उससे हमारी पहचान हो है। तभी तो कह मैं वो बस वो क्या बोल रहे हैं, वसुधाय कुटुंबकम। हाँ, सारा सारा दे दुनिया जो देश भी सब एक परिवार ही तो, और उस परिवार में हम परिवार के साथ मिलकर रह में तो अलग ही बात हो जाए। उससे सब बालकों को भी नई चीजें सीखने को मिले हैं, सबके साथ मिलजुल के बैठना, बातें करना, अपनी बात खुल के रखना। और बहना देखो, इस सबको बना के रखने में हमारा सबका योगदान हो है। और एक बात बहुत जरूरी है, इससे संबंध भी खराब ना हो है नहीं। और अब की जरूरत जो है यो है कि सबके विचारों को सुनना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, इससे परिवार के रिश्ते ना टूटते हैं बल्कि और मजबूत हो जाए हैं और कोई परेशानी

0: कि वो कितने मिलजुल के रहमे थे, है नहीं। और कई बार तो बहुत सारी चीजें बड़ों से ही हमें सीख के पता चला है कि वो चीज को ऐसे कर लो, और हम तो इलझे ही फिरे जाना, तो ये भी न जाने कैसे होएगी। और बड़ों को बता दो, चुटकी में कोई बता दे कि इसे को ऐसे कर लो, तो यो फायदा हो परिवार में बैठ के बातचीत करने का। और एक बात और है, उनके अनुभवों से जो हमें सीखने को मिला है वो भी तो हम अपनी अगली पीढ़ी को भी तो बतावे हैं, वो अगली पीढ़ी भी याद रखे। इस तरह से जो बड़े बड़ों की बातें वो हम अपनी अगली पीढ़ी को भी देते रहें और वो भी समझते रहें। आज के जमाने में नहीं तो सबसे ज्यादा मुआ यो मोबाइल जो ना, इसको तो मुए को आग ही लगे, जने क्या ईसाई है, देखिए कतई बाल लाख उसमें से निकलना ना चाहते। मगर एक नियम बना के रखो, मैंने तो बना रखा अपने घर में को, भाई इतने देर सब लोग साथ बैठेंगे, किसी की कोई भी परेशानी अपने पूरे दिन की बातें बताओ घर में को आके, उससे यो हुआ है हम अकेले परेशान ना होते, हंसी खुशी का सब माहौल हो जाए और सबको एक दूसरे की आदत भी रहे, ना तो आदत ना रहती। तो इसलिए परिवार में बातचीत बहुत जरूरी हो, और घर की बात घर में ही रहे, क्यों बाहर जा के कहें हम, तो उससे हमारी बात का हल भी हो गया और बात भी ना कहीं को निकली। और बातचीत करने से जो है बच्चे अपने माता पिता के पास रह में हैं, ना कि दूर हो जाएं। और भिन्ना देखो, अब बात करने से क्या हो, बच्चा अपने मन की बात कह दे तो उससे क्या दुर्घटना से होने से बच जा है, नहीं तो कभी कभी बच्चे अपने साथ वालों से भी ना कहते, अपने माँ बाप से भी ना कहते, और कभी कभी तो कई गलत कदम भी उठा लें। इसलिए बात करनी बहुत ही जरूरी हो, उससे समस्या का समाधान भी निकले है कि ना है। अब कह मना थे उनको लाली का रिश्ता करने जा रहे, चार बड़ों में बैठेंगे जब पता चलेगी, अरे जब पता है तो जब ही चलेगी, जब हम एक दूसरे को कोई बात बताएंगे, और जब बताने का ना तो फिर पता भी ना चलने की। इसलिए हम अखबार में देखो आजकल कितनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं, रेडियो पे हम समाचारों में कितनी बातें सुने हैं, रेडियो पे कितने अच्छे अच्छे कार्यक्रम आए उन्हें भी सुने हैं, है नहीं। अब देखो हम आपसे यूं ही से तो जुड़ रहे हैं, और देखो ऐसे लग रहे हैं मुझे तो मैं बिल्कुल थारे बीच में ही बैठी बातें कर रही, भन्ना मेरा भी जी बड़ा ही हल्का हो जा जब तुमसे बात करूं। तो यही तो फायदा बात करने का, इसलिए अपने परिवार में बातचीत करते रहना चाहिए, इससे हंसी खुशी का माहौल भी रहे, अपनी बातें भी साझा हो जाए और कोई परेशानी सिर पर चढ़ के ना बैठती, है नहीं, और हर परेशानी का समाधान भी निकल जा। तो बहनों ऐसा ही हुआ है हमारा खान पान भी, हमारा खान पान भी ऐसे ही होता जा रहा है, हम बाहर की चीजें बच्चे ज्यादा ही खामे, उन्हें रोकना चाहिए कभी कभी का, तो चलो जी आज का जमाना ही ऐसा तो चल जा है, मगर लंबा ना चलता, है नहीं। तो क्यों ना बहनों इसी बात पे जो है हम एक वार्ता भी सुन लें श्रीमती मनीषा की, और उनका विषय है बदलता मौसम और खान पान।
1: बहनों, मौसम का अर्थ किसी स्थान पर किसी खास समय पर और वायुमंडल की स्थिति से होता है, उसमें हवा का ताप, दाब, उसके बहने की गति और दिशा, बादल, कोहरा, वर्षा, हिमपात आदि की उपस्थिति और उनकी परस्पर अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं। ये क्रियाएं किसी स्थान के मौसम का निर्धारण करती हैं। बहनों, मौसम हर दिन बदलता है, बल्कि ये कहिए कि दिन में कई बार बदल सकता है, पर जलवायु आसानी से नहीं बदलती। किसी स्थान की जलवायु बदलने में कई हजार वर्ष भी लग सकते हैं, इसलिए हम बदलते मौसम की बात करते हैं, बदलती जलवायु की नहीं। हम मौसम के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, रेडियो पर सुनते हैं और टेलीविजन पर देखते हैं। हमें बदलते मौसम का मजा लेने के साथ साथ अपने शरीर और खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं इस मौसम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहनों, बदलते मौसम में खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इस मौसम में दाल, सब्जियां व कम वसा युक्त आहार खाना चाहिए। अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो घर पर ही साफ सुथरे तरीके से बनी चीजों को खाएं। स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड ना खाएं, क्योंकि बदलते मौसम में शरीर में वायु की वृद्धि होती है, तो हल्का व शीघ्र पचने वाले व्यंजनों को ही खाएं। सबसे जरूरी बातें कि बदलते मौसम में हमेशा ताजा खाना ही रखाना चाहिए। इस मौसम में थोड़ी सी लापरवाही से बैक्टीरिया तुरंत शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा फ्रिज में रखा खाना एकदम नहीं खाना चाहिए, अगर खाना भी है तो पहले निकाल कर रखना चाहिए। इसके अलावा जितना हो सके पानी पिए, तेज नमक वाला खाना नहीं खाना चाहिए, यह शरीर से पानी छोड़ता है। इसके साथ ही खट्टी चीजें जैसे इमली, अचार, चटनी भी नहीं खानी चाहिए। तले भुने खाने से भी परहेज करना चाहिए। ऐसी चीजें खानी चाहिए जो सूखी हो, जैसे मक्का, चना, बेसन, जौ आदि।

गर्मा गर्म पकौड़े और समोसा खाने को तो मन जरूर ललचाता है, लेकिन बात अगर सेहत की है तो इनसे दूर रहने में ही भलाई है। बहनों, बदलते मौसम में कुछ चीजों का परहेज करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। जैसे दही से बनी चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। फलों के जूस का सेवन सोच समझ कर करें, क्योंकि बारिश में फल पानी में भीगते रहते हैं। इससे फलों में रस की तुलना में पानी ज्यादा भर जाता है।

तेज करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। जैसे दही से बनी चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। फलों के जूस का सेवन सोच समझ कर करें, क्योंकि बारिश में फल पानी में भीगते रहते हैं। इससे फलों में रस की तुलना में पानी ज्यादा भर जाता है।

रखें। अपनी डाइट में हर रोज तुलसी के 3-4 पत्तियों को शामिल करें। फिर तुलसी की पत्ती धोकर चीनी या गुड़ के साथ खाएं। इसके अलावा आप तुलसी से बनी हर्बल टी भी ले सकती हैं। इसका इस्तेमाल बेहद फायदेमंद हो सकता है। बदलते मौसम में विटामिन सी युक्त आहार ज्यादा लें। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। दही में काला नमक डालकर खाएं। आंवला भी फायदेमंद रहता है। एक गिलास दूध हमें रोगों से लड़ने में भी मदद करता है। एक बात और, सलाद खाने के साथ खाएं तो उबालकर या भाप लगाकर, क्योंकि इससे वो रोग मुक्त और साफ हो जाता है। बहनों, बदलते मौसम में स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं आमतौर पर सर उठाती हैं। उनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही सेहत का बैंड बजा सकती है। ऐसे में यदि थोड़ी सावधानी बरती जाए तो आप खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकती हैं और बदलते मौसम का मजा भी ले सकती हैं। बहनों, साल का हर मौसम एक जैसा नहीं होता है, इसलिए मौसम के हिसाब से खान पान, रहन सहन और अपनी त्वचा का ख्याल रखना चाहिए। बदलते मौसम में अक्सर लोग बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ने की वजह है आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता की कमी होना। इसलिए बदलते मौसम में अपनी और अपने परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होती है। बदलते मौसम में तापमान बार बार बदलाव और तापमान के कारण बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनपते हैं। इस कारण पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती। इन्फेक्शन, एलर्जी, सर्दी जुखाम, डायरिया, फ्लू, वायरल जैसी पानी और हवा से होने वाली बीमारियां हमें घेरे रखती हैं। स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए नीम का तेल त्वचा के रोगों के लिए रामबाण का काम करती है। दांत दर्द या मुंह में संक्रमण होने पर नीम के पानी से मुंह साफ करने पर आराम मिलता है। इसी प्रकार प्याज और अदरक भी हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करते हैं। अक्सर अदरक और तुलसी के पत्तों की चाय पीने पर किसी भी तरह का संक्रमण होने का खतरा कम हो जाता है। और सुबह सुबह हफ्ते में 2-3 दिन गुनगुना पानी पिए नींबू शहद पीना बदलते मौसमों में लाभकारी होता है। लेकिन खुले बदन या भीगे बदन रहना, भीगे कपड़ों में रहना भी भविष्य में लकवा या गठिया जैसी बीमारियों को आमंत्रित कर सकता है। बहनों, आजकल के बेरहम मौसम यानी आधी गर्मी आधी सर्दी में ताजा तरीन और सुंदर नजर आने के लिए आपको बहुत सादा मेकअप करना चाहिए। केमिकल मिले प्रोडक्ट से बचकर रहना चाहिए। मौसम के बदलते ही अपने खाने पीने का अंदाज भी बदल देना चाहिए। अगर आप मौसम बदलने पर, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, जुकाम, बुखार, खांसी से परेशान हो जाती हैं, तो ये आपके लिए गंभीर संकेत हो सकते हैं। ये एक साइनोसाइटिस का भी लक्षण हो सकता है। बहनों, इस सब से बचने के लिए हमें चाहिए कि साफ सुथरे कपड़े पहने, जिनमें बिल्कुल सीलन ना हो। बारिश में भी नहीं भीगना चाहिए। ठंडी हवाओं में भी बैठना या घूमना नहीं चाहिए। इससे जोड़ों के दुखने की तकलीफ भी बढ़ सकती है। दिन में सोने से बचना चाहिए। थोड़ा सा आराम कर सकती हैं। हमें रोज जितना हम कर सकते हैं उतना व्यायाम, योगा करना चाहिए। सुबह सुबह घूमना चाहिए। इससे आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ेगी और आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा भी मिलेगी। हर मौसम अपने साथ अलग अलग बीमारियां लाता है। मलेरिया, लू लगना, डायरिया, खसरा आदि खतरनाक बीमारियां होती हैं, और इन बीमारियों से अपने आप को और अपने परिवार को बचाना ही हमारी जिम्मेदारी होती है। बहनों, बदलते मौसम भले ही खुशनुमा और मनोरम लगते हों, लेकिन ये अपने साथ कई बीमारियां और परेशानियां लेकर आते हैं। ऐसे में हमें अपने खानपान और अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए। साफ सुथरा पौष्टिक आहार खाएं, सेहत का ध्यान रखें। खानपान से संबंधित आदतों में थोड़ा सा बदलाव कर आप स्वस्थ बने रहकर मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि शरीर तभी स्वस्थ होगा जब आप स्वस्थ और पौष्टिक आहार लेंगे। बच्चों के लिए स्वस्थ आहार बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके खानपान का असर आपकी हड्डियों पर भी पड़ता है। स्वस्थ रहने के लिए हड्डियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे आहार हैं जिनमें शरीर के लिए सभी जरूरी पौष्टिक तत्व होते हैं, इसलिए अगर आप इन्हें अपने रोज के खाने में शामिल करते हैं तो आपके शरीर को वो सभी विटामिन्स और मिनरल आसानी से मिल जाते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। और दूध में संपूर्ण

0: आहार होता है, इसलिए दूध को अवश्य खान पान में शामिल करें। तो बहनों, इसी के साथ बदलते मौसम का आनंद उठाएं।
1: बदलता मौसम और खान पान। बहनों, अभी हमने सुनी श्रीमती मनीषा की वार्ता। देखो बहनों, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने नु कही कि हमें अपना साफ सुथरा भोजन लेना चाहिए, है ना। बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, फ्रिज में रखी बासी चीजें नहीं खानी चाहिए, और खानी भी फ्रिज में से तो उसे निकाल के बाहर रखो, जब वो थोड़ी सी बाहर के मौसम के जैसी सी हो जाए तो अपना खा लो अपना, तो ऐसे नहीं खानी चाहिए, है ना। और जैसी बदलता मौसम है उसमें दही वही नहीं ज्यादा खानी चाहिए, बासी चीजें ना खानी चाहिए, और यो ही तो कह रही वे। तो बहना देखो, मैं तो खुद यो ही कहूँ बालकों से, अनु कोई ना फ्रिज की चीज खाओ, यो बरसात के मौसम में वो नुकसान ही देवे। जरा सी देर में तो कहीं भी फंगस सी लग जा, कहीं को भी कैसी हो जा, वो खराब हो जा। यो देख लो कि खराब चीज ना खानी, काट के खाओ, और सलाद सलूद भी खाओ तो उसे काट के खाओ, उनको ऐसे ना मुंह मार दें। और नमक के पानी में धो लो और साफ कर लो और सुखा लो, और जो तनक सी धूप निकले तो तनक धूप में को भी रख दो, उससे भी यो हो जा कि जरा सी छफाई सी हो जा, और कीटाणु पिटाणु मर जा नमक ममक से, है कि ना है। बहना मैं तो देखो ऐसे ही करूँ अपने घर में को, और सब बालकों को भी ऐसे ही समझा रखी। और बहना मैं तो तुमसे भी यही कह रही, सब अपना ध्यान रखो, और थारे लिए तो हम ये लेके आ रहे हैं बार था, इसीलिए तो हम अच्छी अच्छी बातें बनाए हैं। कई कदी कदी हो जा ना बालक सुनते ना, तो उन्हें सुनवा दिया करो, उन्हें देख क्या कह रही बेबी, ऐसे ही सुने जा बालक, मेरे भी ऐसे ही सुने, दूसरे की बात समझ में आ जा, है कि ना। हाँ हाँ मुझे समझ में आ रही तमें। अरे भन्ना देखे, रोटी तो तुम धीरे धीरे खा लो, थोड़े से मुझे पता खड़ी चावल खा रही तम, खुशबू आ रही मुझे, यहाँ लो। अरे तो भन्ना, इसके साथ साथ में मुझे पता तुम गीत भी सुनना चाह रही, और तो चलो जी, मैं थारी बात को रख रही आगे, और सुन ले रहे तम और हम मिल के एक प्यारा सा यू लोकगीत।

दैया रे दैया बन्ने को नजर लगी। ए बहना बड़ा ही मजा आ गया। ए बहना देखियो, मैं तो यो गाना सुनते सुनते कुछ और भी सोचने लगी। और मैंने सोच रही कि यो बताओ जी, यो गाना सुनते सुनते जब बन्ने को नजर लगे तो हमारे पेड़ पौधों को भी तो नजर लग जा है नहीं है। ये देखिए कभी कभी अनार पे जो कितना फूल आवे और कभी कभी इतना ही फूल आवेगा, यूं ही झड़ जा नीचे को। तो बहनों, पर्यावरण संरक्षण में हमारी ग्रामीण बहनों की बहुत बड़ी भूमिका हो है। अब देखो बहना, जैसे परिवार की जिम्मेदारी हम पे हो है ना, उसी तरह अपने पर्यावरण को भी साफ रखने के हम पे बड़ा बहुत बड़ा वो है जिम्मेवारी, और इसमें हमारा सबसे ज्यादा योगदान हो है। और हमारी ग्रामीण बहनें अपनी धरती से इतनी जुड़ी हो हैं कि जैसे एक बालक अपनी माँ से जुड़ा हो है, और इसलिए धरती को भी तो माई कह में है, क्योंकि वो भी तो हमारा संरक्षण करे। जैसे हम अपने बालकों का करें, उनका ध्यान रखें, ऐसी धरती हमारा ध्यान रखे है। धान वो देवे, अनाज देवे, फल देवे, फ्रूट देवे, कितना कुछ देवे हमें, है नी। और तो देखो बहना, इसलिए जो है, और मैं तो एक बात कहूँ, जब हम अपनी माँ का ध्यान रखें तो धरती माँ का ध्यान भी तो रखना हमारा ही काम है कि नहीं है। उसका सम्मान करना भी तो हमारा ही काम है। और अपने बालकों को, अपने परिवार को, सबको बोलो कि जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखें, वैसे ही हमें अपनी धरती का भी ध्यान रखना, अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखना, कहीं कोई गंदगी ना फैलानी, है कि ना। और ये पन्नी पुन्नी जो चल रही है आजकल, इन्हें भी ना यूज करना, इन्हें ना लेके जाना कहीं भी, ये तो सारी जो बंजर कर दें जमीन को। थैले सी लो अपने घर में, है कि ना, थैले बल्ले लेके जाओ, झोले लेके जाओ, उनमें को लेके आओ सामान, कहीं भी ना कोई गंदगी फैलने की, है कि ना है बहना। और देखो जी, जानवरों का गोबर हो, हम उसे डालना है नहीं डालते कूड़ी को, और उसी पे को जो अपने घर के जितनी सब्जी सुब्जी का जो भी छिल्लक छिल्लक निकले उसमें को डाल दो, वो भी खाद ही बन जा। और यो खाद तो बड़ा ही फायदा दे हमारी धरती को, है कि ना। और देखो बहना, मैं तो यू मानू, जैसे धरती का ध्यान रखे हैं, अपने जंगलों का ध्यान रखे हैं, इन्हें जो है खत्म होने से बचाने का, उन्हें नुकसान पहुंचाने का काम जो कौन कर रहा, यो भी तो हम ही सब कर रहे हैं मिलकर, तो उन्हें रोकने का काम जो हमारा कहा जा है कि जो ग्रामीण बहनें जो खेती करे हैं, उन्हें अपनी धरती से, अपने खेतों से घना ही प्यार हो है। बहना मुझे भी बहुत ही हो है, जब खेतों में जाऊं, खेत ऐसे लहलाते रहे तो ऐसे लगे बड़ा ही जी अच्छा सा लग रहा है कि ना, कितने जी लगे। अरे देखो बहना, अब इस समय पनीर बोया, पनीर लगा, और अब मुंजी बोने लग रहे हैं, और खेतों में पानी पट रहा, कितनी अच्छी हवा लगे है, कहीं ना गर्मी लगती, तो उसमें कम से कम दवाई डालो, गोबर का, पत्ती के खाद का उसमें वो प्रयोग करो, तो कोई भी चीज ना खराब होने की, और ना हमारा पर्यावरण खराब होने का, तो बहना पैदावार भी अच्छी हो, बीमारी भी ना लगती है। तो यो बात अपने सबको बतानी है कि ना। तो चलो बहना, अब चिट्ठी लिख दियो जल्दी से, तो पहले अपने पता तो लिख लो। कार्यक्रम घर संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, नजीबाबाद, पिन 2467636। तो बहनों, दो अपनी बहन वर्षा को आ गया, बहनों राम राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। लोक धारा लोक संगीत के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपको सुनवा रहे हैं केशव अनुरागी के गाए गढ़वाली लोकगीत।

अरे तू मारी मारी की उनकी चोरी छीन ली मिला।

0: Maharashtra and Goa. Teams equipped with flood rescue equipment and trained personnel have been deployed to ensure a quick response to any rain-related emergencies. With Nivedita's report, Anuja Kumar, AIR News.
1: In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver, Canada. Switzerland will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue, aiming to reach the quarterfinals for the fourth time in their history. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of the country, extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Vikasit Bharat 2047, calls for strengthening India-France strategic partnership. Two-day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal. India steps up humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Nearly 2,600 people died, thousands still missing. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh till tomorrow. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
3: बंगाल की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
4: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
3: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और

0: प्रसिद्ध भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा

0: 2,500 95 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह काराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। काराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और ये सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में

0: 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
1: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली

0: पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम फिल्मी कव्वालियाँ। कार्यक्रम की पहली कव्वाली अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं फिल्म अल हिलाल से। स्वर इस्माइल आज़ाद कव्वाल का है।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: फिल्मी कवालियों का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम की कवाली फिल्म हम किसी से कम नहीं से, स्वर मोहम्मद रफ़ी और साथियों का है।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।

मोहम्मद रफ़ी, बलबीर और साथियों की आवाज़ में आपने सुनी कव्वाली, फिल्म थी साधना। लीजिए सुनिए आशा भोसले, मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में फिल्म ताजमहल से ये कव्वाली।

मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और साथियों की गाई फिल्म बरसात की रात के इस कवाली के साथ ही श्रोताओं, फिल्मी कवालियों का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम फिल्मी कवालियाँ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी संध्याकालीन सभा में संध्या 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये अंक लेकर मैं हूं आपके साथ, आपका अपना रेडियो मित्र जसवंत सिंह। श्रोताओं, हमारे देश की उन्नति का आधार कृषि भी है। कृषि को विकसित करने के लिए किसानों को सुख सुविधाएं मुहैया कराई जाए तो निश्चित रूप से जैसे ही कृषि का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। कृषि और किसानों के लिए भी कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं और आज ऐसी ही दो प्रमुख योजनाओं के विषय में हम आपसे बातें करेंगे। ये योजनाएं मुख्य रूप से आधारित होंगी किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से जो चलाई जा रही हैं, तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आज हम जो बात करेंगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उनमें से एक योजना की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो आइए श्रोताओं, इसके बारे में हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम से ये योजना 1 फरवरी सन 2019 को आरंभ हुई थी और किसानों को इसका लाभ जो मिला था वो पहली बार 24 फरवरी वर्ष 2019 को मिला, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पात्र किसानों के खाते में धनराशि ट्रांसफर की थी। श्रोताओं, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित ये स्कीम किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करती है, खास तौर पर ऐसे समय पर जब उन्हें पैसे की खास तौर से ज़्यादा ज़रूरत होती है। भाई वैसे तो सबको हर समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ छोटे किसान हैं, जब उनकी फसल आती है, जैसे गन्ने की फसल आती है, तब उनके पास उतना पैसा तो होता है कि वो अपने खर्च चला लें, लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब उन्हें कृषि में इन्वेस्ट ज़्यादा करना होता है और उनके पास आमदनी होती है बहुत कम। ऐसे समय पर जब उनके खाते में 2,000 रुपए आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और श्रोताओं, ये 2,000 रुपए वर्ष में 3 बार यानी पूरे साल में 6,000 रुपए उन किसानों के खाते में आते हैं। श्रोताओं, किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वास्तव में बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि हाल ही में यानी 20 जून 2026 को इस योजना की 23वीं किस्त किसानों के खाते में भेजी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल से DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करोड़ों पात्र किसानों के बैंक खाते में ये राशि सफलतापूर्वक ट्रांसफर कराई। श्रोताओं, किसानों को इस योजना का लाभ तभी मिल सकता है जब वे इसके पात्र हों, मतलब छोटे और सीमांत किसानों को ही इसका लाभ मिलता है, वो भी तब जब वे इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। किसान के नाम पर कृषि योग्य भूमि हो, उसके आधार कार्ड से लिंक एक बैंक खाता हो और एक और खास बात यह है कि उसका अपना परिवार हो, उस किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल जाएगा। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में, और आइए अब जान लेते हैं ई नाम योजना यानी ENAM योजना के विषय में। श्रोताओं, ये भी किसानों के ही लिए बड़ी हितकर योजना है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम के नाम से ये योजना जानी जाती है और ये एक ट्रेंडिंग पोर्टल है। श्रोताओं, इसकी शुरुआत 14 अप्रैल वर्ष 2016 में की गई थी। इस अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल से जुड़कर किसान अपनी फसलों की बेहतर कीमत हासिल करते हैं। श्रोताओं, इसके माध्यम से देश की सभी मंडियों को ऑनलाइन जोड़कर एक राष्ट्र एक बाजार स्थापित करना ई नाम योजना का मुख्य उद्देश्य है। किसान अथक परिश्रम करते हैं और उन परिश्रमों के माध्यम से ही वो फसल उगाते हैं, या जो वे भी फसल उगाते हैं उसका पारदर्शी और सर्वोत्तम मूल्य उन्हें अवश्य मिलना ही चाहिए। इसके लिए ई नाम योजना वास्तव में किसानों के हित में काम कर रही है। श्रोताओं, मंडियों में फसल की गुणवत्ता के आधार पर ऑनलाइन बोलियां लगाई जाती हैं। इसके माध्यम से किसानों और व्यापारियों दोनों को लाभ मिलता है क्योंकि इसमें दोनों शामिल होते हैं।
ENAM योजना के द्वारा किसान और व्यापारियों के बीच से बिचौलियों की भूमिका बिल्कुल खत्म हो जाती है। भाई वो जो बेनिफिट बीच के लोग यानी बिचौलिया ले लेते थे, वो या तो अब सीधे किसानों को मिलेगी या व्यापारियों को उतना कम दाम पर वो फसल मिल जाएगी। किसानों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिल जाता है। और इतना ही नहीं श्रोताओं, ऑनलाइन बिक्री के बाद फसल का दाम यानी भुगतान सीधा किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह से ये योजना भी किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से चलाई गई और निश्चित रूप से किसानों को इन योजनाओं का लाभ मिल भी रहा है। श्रोताओं, ई नाम योजना के संबंध में और अधिक जानकारी किसान भाई ENAM की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी ले सकते हैं। तो श्रोताओं, वास्तव में जब किसान की आय दोगुनी होगी, किसान तरक्की करेगा, तो निश्चित रूप से हमारा देश भी तरक्की करेगा। क्योंकि किसान मेहनत करके जब जमीन पर हल चलाता है, तो फिर ये जमीन यानी हमारे देश की जो भूमि है, कृषि भूमि है, ये निश्चित रूप से सोना और चांदी उगलती है।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 हुए हैं। अब सुनिए जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, आपको याद दिला दें सबसे पहले आज के विशेष कार्यक्रमों की। आज शाम 5:15 पर कार्यक्रम युववाणी में क्रम होंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज ये शाम, गजलों के नाम, आपका सितारा और कहानी के उस पार। किसान श्रोताओं के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज चर्चा का विषय होगा सब्जी वाली फसलों की खेती और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। साथ ही किसान भाई सुनेंगे किसान भाइयों की खेती एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं के उत्तर पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। आज शाम 6:45 पर कार्यक्रम कानूनी सलाह के अंतर्गत एडवोकेट बिजेंद्र सिंह से एसके नोटियाल की बातचीत का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे। इस भेंटवार्ता का विषय रहेगा अवैध कब्जा संबंधी कानूनी जानकारी। शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत। शाम 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे विविध कलाकारों की आवाज में नात। कार्यक्रम गीत संध्या आप सुनेंगे रात 8:00। 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से और रात 9:30 पर आप सुनेंगे आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो नजीबाबाद। आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। कॉल कीजिए 9457782888 पर और रात 10:30 आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का ही कार्यक्रम रात के हम सफर। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रम।

के विषय में, और आइए अब जान लेते हैं कल के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। कल यानी 4 जुलाई सन 2026 शनिवार की रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती, और कल रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम भी आप सुनेंगे। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

कल सुबह 9:15 पर कार्यक्रम जिले की हलचल आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। प्रातः 6:45 पर कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत कल आप सुनेंगे सुधीर कुमार शर्मा का काव्य पाठ। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:05 पर जानकारी का विषय होगा व्यायाम का महत्व। खेती की बातें इस कार्यक्रम में किसान भाई कल प्रातः 7:10 पर सुनेंगे जानकारी। इसका विषय होगा धान की रोपाई और सावधानियां। हमारे दैनिक कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में कल सवेरे 7:31 पर चर्चा होगी इस मानसून पौधारोपण अवश्य करें और संचारी नियंत्रण रोग अभियान, और साथ ही एक और जानकारी दी जाएगी जिसका विषय रहेगा श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु क्या क्या सावधानियां बरतें। धरती गाती है इस कार्यक्रम में कल दिन में 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे अखिलेश कुमार की आवाज में रागनी। कल दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिंदगी लाइव। महिला जगत कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर क्रम होंगे मेरी पाकशाला, आधी आबादी से और सजना है मुझे। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 5:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, युवाणी के इस खूबसूरत शाम के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आज का दिन आपका अच्छा रहा होगा और अब इस सुहानी शाम में आप कुछ सुकून भरे पल हमारे प्रोग्राम यानी युवाणी प्रोग्राम सुनकर बताइएगा।
1: जी हाँ दोस्तों, दिन भर की भागदौड़ के बाद अगर कुछ पल मुस्कुराने के मिल जाएं तो दिन बन जाता है। और दोस्तों, इस खूबसूरत सी शाम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट अलीना।
0: दोस्तों अलीना के साथ स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो पार्टनर मदीहा रहमान।
1: वैसे मदीहा, आज के प्रोग्राम में ना बहुत कुछ खास है, लेकिन हम अपने दोस्तों को आज के स्पेशल सेगमेंट के बारे में भी बता देते हैं बिना देरी किए।
0: बिल्कुल दोस्तों, आज है फ्राइडे और फ्राइडे में होता है हमारा स्पेशल सेगमेंट ये शाम गजलों के नाम।
1: जिसमें हम आपको सुनवाते हैं बहुत ही प्यारी प्यारी खूबसूरत सी गजलें थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो दोस्तों, गजलें तो हम आपको सुनवाएंगे ही, ये तो तय है, लेकिन उससे पहले आपसे पूछ लेते हैं आज का बुझो तो जाने का सवाल।
0: बिल्कुल, और दोस्तों हमारा आज का सवाल है कि राज्यों के गठन और सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसे होता है?
1: सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, राज्यों के गठन और सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो दोस्तों, सवाल का आपको सही जवाब देना है हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, हमें रहेगा आपके सही जवाब का इंतजार। तो उसके बाद सुन लेते हैं आज की शाम की ये पहली खूबसूरत सी गजल।

0: नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
2: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
1: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
2: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
5: रमेश
6: जी। सर
5: इधर आओ जरा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है।
6: जी सर बताइए, पूछिए।
5: ये बताओ कि तुम मल्टीटास्किंग कर लेते हो?
6: हाँ सर कर लेता हूँ, मैं सुन भी लेता हूँ, इग्नोर भी कर लेता हूँ, और भूलना तो मेरा टैलेंट है। हो गई ना सर एक साथ इतने सारे काम, मल्टीटास्किंग।
4: जी हाँ मजा आ गया।
7: तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे की ओर। वैसे मदिहा जिंदगी में हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है। कोई अपनी फैमिली के लिए कुछ चाहता है और कोई अपने करियर के लिए खूब मेहनत करता है।
8: बिल्कुल। वैसे अलीना, हर सफर में सबसे खूबसूरत बात क्या होती है तुम्हें पता है?
7: नहीं बताओ।
8: वो बात है शुरुआत, क्योंकि हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से फैसले से ही होती है।
7: लेकिन दोस्तों शुरुआत करना जितना आसान लगता है ना, उसे निभाना उतना ही मुश्किल होता है।
8: हाँ वैसे ये तो है, कभी लोग बोलते हैं कि नहीं कर पाओगी, कभी हालात साथ नहीं देते, और कभी तो हमारा खुद का भरोसा ही डगमगा जाता है।
7: बिल्कुल सही कह रही हो। फिर भी कुछ लोग रुकते नहीं, धीरे धीरे चलते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं।
8: क्योंकि दोस्तों उन्हें पता है कि अगर आज वो मेहनत करेंगे तो कल उनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा।
7: तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उसका सफर होता है?
8: बिल्कुल। सफर हमें पेशेंट रहना सिखाता है, लोगों की पहचान कराता है और सबसे जरूरी खुद से मिलवाता है।
7: अगर रास्ता आसान होता तो शायद जीत की खुशी भी इतनी खास नहीं होती,
8: और अगर सपने छोटे होते तो उन्हें पूरा करने का जुनून भी इतना बड़ा नहीं होता।
7: बिल्कुल सही मदिया। तो दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं दिल से डेस्टिनेशन तक के बारे में, यानी कि उस सफर की बात कर रहे हैं, उस कहानी की बात कर रहे हैं जो दिल में एक छोटे से सपने से शुरू होती है
8: दोस्तों, और मेहनत हिम्मत और विश्वास के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचती है।
7: तो दोस्तों याद रखिए, अगर सपना बड़ा है तो रास्ता भी थोड़ा लंबा होगा, लेकिन लंबे रास्ते कभी भी गलत नहीं हो सकते।
8: और अगर दिल सच्चा है, इरादे मजबूत हैं और मेहनत लगातार है तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं।
7: बिल्कुल सही मदिहा। तो दोस्तों अपने सपनों पर भरोसा रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और चलते रहिए,
8: क्योंकि आपका सफर दिल से होकर आपकी डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेगा। और इसी मजबूत इरादे के साथ आइए सुनते हैं हमारी आज की शाम का ये दूसरा गीत।

तो चलिए दोस्तों, अब आपको आज सुनवाते हैं कहानी के उस पार में, एपिसोड 5। कहानी का नाम है कानों में कंगन।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षी त्यागी और आप सुन रहे हैं कहानी के उस पार में एपिसोड नंबर 5, कानों में वही कंगन। लेकिन अंतिम पड़ाव पर पहुंचने से पहले आइए एक नजर डालते हैं पिछले एपिसोड पर। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि समय के साथ नरेंद्र अपनी ही मोह और आकर्षण में इतना उलझ गया कि उसने किरण के निष्कलुष प्रेम और समर्पण की उपेक्षा कर दी। जिस रिश्ते को विश्वास और अपनापन संभालता है, वो धीरे धीरे स्वार्थ और भटकाव की आग में झुलसने लगा। किरण सबको चुपचाप सहती रही, लेकिन उसके मौन में छिपा दर्द कोई पढ़ नहीं पाया। और अब कहानी अपने सबसे मार्मिक मोड़ पर आ पहुंची है दोस्तों। तो आइए चलते हैं और सुनते हैं कानों में कंगन का ये अंतिम अध्याय। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चांदनी मेघों से आंख मुंदोवल खेल रही थी, बिजली काले कपाट से बार बार जागती थी, किसे चंचला देखती थी तथा बादल किस मरोड़ से रह रह कर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंकर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रख कर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों ना बड़ी हो, हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांध चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा, सब संदूक झांकी, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाला था। श्रृंगार बक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा, पास जाते ही सहम गया। वो एक तकिए के सहारे निसाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा जल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आसरे से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, छिड़कंठ की काकली थी। कहाँ है, अभी देखने दो, उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा। वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिप गईं। वो जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी, वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली, भोली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे, अपनी प्राण प्रिया को आकाश पताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता। परलोक से ढूंढ निकालू ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहां। नशा चढ़ा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गईं, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें सबसे बड़ा सत्य उसी क्षण दिखाता है जब उसे बदलने का कोई अवसर नहीं बचता। नरेंद्र ने जब किरण के कानों में वही कंगन देखे तो उसे समझ आया कि सच्चा प्रेम कभी आभूषणों में नहीं बल्कि स्मृतियों और समर्पण में बसता है। लेकिन यह एहसास तब आया जब उस समय उसकी मुट्ठी से फिसल चुका था। कानों में कंगन केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि ये याद दिलाती है कि जिन रिश्तों की कद्र हम समय रहते नहीं करते, उनका खालीपन जीवन भर हमारा पीछा करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की इस अमर कथा का ये रूपांतरण आपके मन को छू गया होगा। तो मैं हूँ दोस्तों अक्षी त्यागी और फिर मिलेंगे कहानी के उस पार में हिंदी साहित्य की एक और अनमोल रचना के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, रिश्तों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा।
0: जी हाँ, मजा आ गया।
3: अरे डॉक्टर साहब, 2 साल पहले मुझे बुखार आया था।
4: हाँ तो अब क्या दोबारा हो रहा है?
3: नहीं नहीं डॉक्टर साहब, दोबारा नहीं हो रहा। आपने तब 2 साल पहले मुझे नहाने को मना किया था, तो आज मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि पूछ लेता हूँ, अब नहा लूँ क्या?
0: जी हाँ, मजा आ गया।
5: दोस्तों अब प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, जो कि है आपका सितारा, जिसमें आज हमारा सितारा रहेंगी गौरा श्री, और गौरा श्री से बातचीत करेंगी हमारी ही युवाणी की प्रेजेंटर सना। तो आइए सुनते हैं उन दोनों के बीच क्या अच्छी अच्छी बातचीत हुई है।
6: किसी की मुस्कान में तू है, किसी की दुआओं का जवाब है तू, हर रात के अंधेरे में उम्मीद की एक चुप सी किताब है तू। तू गिरा भी तो चांद जैसा चमकना तुझे आता है, तू आम नहीं वो खास सितारा है जो हर दिल में बस जाता है।
5: जी हाँ दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा सेगमेंट आपका सितारा, जिसमें हमारे साथ है एक उभरता सितारा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम।
7: मेरा नाम गौराश्री आत्रे है।
5: जी गौराश्री, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम युववाणी में।
7: थैंक यू सो मच।
5: गौराश्री, क्या मैं आपको प्यार से गौरा बुला सकती हूँ?
7: हाँ दीदी बिल्कुल।
5: ओके, तो सबसे पहले आप हमारे साथियों को ये बताइए कि आप स्टडी में क्या कर रही हैं?
7: मैंने अभी 10th पास करी है और मैं 11th में हूँ।
5: ओह, मतलब 10th पास करी है, इसका मतलब है कि खतरे की घंटी से अभी अभी आप बाहर आई हैं।
7: जी हाँ।
5: तो हमारे दोस्तों को बताइए कि आपका रिजल्ट कैसा रहा?
7: मेरी 98.4% आई है।
5: ओह 98.4, इसका मतलब है आपने कड़ी मेहनत करी होगी यहाँ तक आने के लिए।
7: हाँ मेहनत तो बहुत करी थी, तभी इतनी परसेंटेज आई है।
5: ठीक है गौरा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो कि आपने 98.4% वो भी अपने बोर्ड एग्जाम में अचीव करे हैं।
7: थैंक यू सो मच।
5: तो अब आप ये बताइए कि आप कौन से स्ट्रीम से हैं?
7: मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, PCM।
5: साइंस और PCM, इसका मतलब आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट जरूर होगा।
7: हाँ मैथमेटिक्स।
5: ओहो मैथ्स, वो भी फेवरेट, तबा तबा। खैर ये बताइए कि 10th की शुरुआत से लेकर 98.4 तक का सफर आपका कैसा रहा? स्ट्रेसफुल था, एंजॉय वाला था, या फिर बस ऐसे ही ठीक ठाक हो गया?
7: मैं सही बताऊं तो मेरा सफर एंजॉयमेंट से भरा हुआ था। ज्यादा स्ट्रेस मुझे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस साल की शुरुआत से ही मैंने थोड़ा थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करना जारी रखा था। एंड टाइम पे जब प्री बोर्ड आए तो थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी आए, क्योंकि प्री बोर्ड जर्नली थोड़े हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू बोर्ड एग्जाम्स। तो लेकिन उससे मेरा यही मैसेज है कि उसके रिजल्ट से इतना डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। अप्स एंड डाउन साल में आते हैं, पर ओवरऑल जो आपने पूरे साल मेहनत करी है उसके बेसिस पे आता है रिजल्ट।
5: बात तो सही कही है, विदाउट अप्स एंड डाउन्स तो समझो जिंदगी का मजा ही नहीं है। अगर अप्स एंड डाउन्स ही नहीं होंगे तो हमें सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा, हमें यही नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ गलत हैं और हम कहाँ सही। ये बात तो आपने बहुत अच्छी बोली। तो अब आप ये बताइए कि अभी आपने बोला आप साइंस स्ट्रीम से है, तो जाहिर सी बात है कि आपने अपने 11th क्लास में भी साइंस ही ली होगी।
7: हाँ जी।
5: सब्जेक्ट
7: फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स।
5: मैथ्स, तो आगे आपका क्या इरादा है?
7: आगे मैं JEE का एग्जाम देने की सोच रही हूँ, मतलब आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट।
5: तो उसके लिए क्या आप अभी से

0: प्रिपेयर कर रही हैं या फिर आफ्टर ट्वेल्थ?
1: अभी से
0: अभी से, तो थोड़ा सा बताइए हमारे लिसनर्स को कि उसके लिए क्या प्रिपरेशन हमें करनी पड़ती है स्टार्टिंग से। एग्जैक्ट ये बताइए कि जी मेन का पेपर होता क्या है।
1: जेई मेन्स का पेपर जो बच्चे ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स देते हैं उसी साल वो पेपर देते हैं, और वो केवल उन्हीं बच्चों के लिए होता है जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एज अ सब्जेक्ट चूज करे हुए होते हैं। इस पेपर को देने के बाद आपको ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, नॉट IITs। अगर आप जेई मेन्स क्वालिफाई करते हैं उसके बाद ही आप जेई एडवांस दे सकते हैं, जिसमें जिसके क्वालिफाई होने के बाद आपको IITs मिलते हैं, विच आर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया।
0: गौरव जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे लिसनर्स को दी है। जो तो आप ये बताइए कि 10th में 98.4 आपने अचीव करे हैं, तो उसका श्रेय आप किसको देना चाहती हैं, या आप कौन से स्कूल से आपकी स्कूलिंग है और आपके गार्जियन जिन्होंने आपको सपोर्ट किया हो?
1: मैं RR मुरारका पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट हूँ। सबसे पहला श्रेय तो मेरे टीचर्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने ऑल ओवर ईयर मुझे गाइड करा, इतना सपोर्ट करा, मतलब पूरा पढ़ाया ही उन्होंने। दूसरी चीज़ ये कि मेरे पेरेंट्स और मेरे घर में दादी दादू, उन सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, ट्रस्ट करा मुझ पर, और ऑल ओवर ईयर उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड करा, तो उन सबको मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल।
0: तो अब आप हमें ये बताइए कि पढ़ाई से हटकर क्या आपकी कोई पसंदीदा चीज़ जिसमें आप अपना वक्त देना पसंद करती हूँ?
1: आई लाइक डांसिंग वेरी मच, और आई ऑल्सो लाइक टू राइट, मुझे लिखना बहुत पसंद है। हिंदी और इंग्लिश दोनों की पोएम्स मैं लिखती हूँ, और मेरी एक बुक भी छप चुकी है।
0: सीरियसली?
1: मेरी गौराश्री की बाल कविताओं के नाम से एक बुक पब्लिश हुई थी।
0: ओके, तो फिर तो आपकी कविताएं सुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आप हमारे दोस्तों को बताइए कुछ भी 4 लाइनें अपनी लिखी हुई।
1: हाँ, 2 पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगी। जीवन है चुनौतियों का नाम, परिश्रम निरंतर करो तो मिले परिणाम। कभी मत हारो कभी मत रुको, यदि करना रोशन अपना नाम, यदि करना रोशन अपना नाम।
0: बहुत ही प्यारी लाइंस आपने हमारे लिसनर्स को और हमें बताई हैं। तो गौरवश्री, इस चीज की शुरुआत आपने कब से करी?
1: कविता लिखनी शुरू मैंने 7 साल की उम्र में करी थी। मैंने सबसे पहले अपनी छोटी सी ऐसी कविता लिखी थी, वो मैंने दादी को अपनी जाके दिखाई, तो दादी का वैसे भी लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था, फिर उन्होंने मुझको एनकरेज करा और लिखने के लिए।
0: गौरव, आप हमें अपनी जिंदगी की, मतलब के 7 साल की उम्र में जो आपने अपनी कविता लिखी थी वो बताइए।
1: मेरी कविता का शीर्षक था खुशी, उसकी 2-4 लाइन मैं सुनाना चाहूंगी। खुशी है गुस्से की दुश्मन, खुशी खुश कर देती सबका मन। खुशी को मत खोने देना, नए साल की खुशी मनाना। साल में हम खुशी मनाते, होली दिवाली पर्व मनाते। खुशी है गुस्से की दुश्मन, खुशी खुश कर देती सबका मन।
0: ये तो बहुत सही बात आपने कही है कि खुशी है गुस्से की दुश्मन और खुशी खुश कर देती है सबका मन। तो गौरव, लास्ट में आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहती हैं? जैसे कि अभी आपने अपनी 10th पास आउट करी है, आपका आगे का एम भी बहुत अच्छा है जिसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत अभी आपको करनी है, तो आप हमारे लिसनर्स को इस बारे में क्या बताना चाहती हैं? जो लिसनर्स हमारे अभी 10th में हैं, 12th में हैं, वो अपनी स्टडी को कैसे मेंटेन करें, आपकी ही तरह इतनी परसेंटेज, इतनी नहीं इससे थोड़ी आगे पीछे भी आ जाए, तो कैसे अपने दिन का शेड्यूल वो कैसे बनाएं, कौन सा टाइम पढ़ने का सही है और कौन सा नहीं, ये भी आप हमारे दोस्तों को थोड़ा सा बताएं।
1: तो सबसे पहले जो बच्चे फिलहाल क्लास 10th में हैं उनको मैं एक ही एडवाइस देना चाहूंगी, अगर कोई बुक फॉलो करनी है तो NCERT जरूर फॉलो करें। कोई भी सब्जेक्ट हो, NCERT इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बिना तो मतलब बोर्ड एग्जाम्स देना बहुत मुश्किल ही है। कोई भी सेकेंड बुक, रेफरेंस बुक तभी उठाएं जब आपने एटलीस्ट NCERT कंप्लीट कर रखी हो। शेड्यूल की ये बात है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको रात में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं भी रात में ज़्यादातर पढ़ती थी, बहुत सारे बच्चों को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। शेड्यूल भी ऐसा ही बनाना चाहिए जो आपको कन्वीनियंट लगे, कहीं से उठा के टाइम टेबल उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, अपना खुद का टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। बीच बीच में ब्रेक्स लेना इज वेरी मच नॉर्मल, पर उन चीजों को कवर करते हुए चलना है। अगर आप कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे, कोई स्ट्रेस कोई प्रेशर नहीं आएगा और आराम से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में।
0: बहुत बहुत धन्यवाद गौराश्री आपका हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने का। तो दोस्तों अभी आपने सुना हमारा सेगमेंट आपका सितारा। लास्ट में चलते चलते मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगी, चलते चलते ये दुआ देते जाएं, कल फिर नई बातों से आपका दिल बहलाए, हर लफ्ज में रहे प्यार की मिठास। आज की महफिल यहीं तक सही, कल फिर मिलेंगे यही है उम्मीद नहीं। आपका सितारा बस इतना कहे, हर रात आपके ख्वाबों में रोशनी रहे।
2: दोस्तों ये था सेगमेंट आपका सितारा, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और अब हमारा जो सेगमेंट चल रहा है लगातार इस प्रोग्राम के थ्रू आउट, ये शाम गज़लों के नाम, उसमें आपको सुनवाते हैं एक और गज़ल लेकिन कुछ लाइंस के बाद। और वो लाइंस हैं, चांद को देखा तो तेरी याद ने दस्तक दी, रात फिर खामोशी में तेरे नाम की हो गई। कल चौदहवीं की रात थी मगर एक कमी रही, चांद तो पूरा था बस तेरी रोशनी नहीं। तो आइए इन्हीं लाइनों के साथ अब सुनते हैं हमारा ये अगली गज़ल।

0: दोस्तों, प्रोग्राम की स्टार्टिंग में पूछा था हमने आपसे सवाल, और हमारा सवाल था राज्यों के गठन और सीमाओं के परिवर्तन का अधिकार किसे है। और हमारे सवाल का सही जवाब है पार्लियामेंट, यानी कि राज्यों के गठन और सीमाओं का अधिकार पार्लियामेंट यानी सांसद को है। तो अब जानते हैं हमारे किन किन लिसनर्स ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है। और वो लिसनर्स है BI धाकर, आर्यन राज, मिसबा शमसी, आकाश रस्तोगी, सुरेश गगनेजा, नंदन कुमार सिंह, देवशंकर तामूर, या मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, अरविंद कुमार, मोहम्मद अफजल ताज, राजकुमार दूरी, गजानन येले, बलवंत सिंह कुमार, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, अनिल बिगोट के, जगदीश धाकर, मसरूर हसन, मीरा सिंह, राजेश वर्मा, धर्मेंद्र छीपा, नरेन नेतम, हीरामणि वर्मा, दिनेश वर्मा, सुदर्शन शाह और जॉन डी कैस्ट्रो।
1: तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। खत के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर

सकते हैं अपडेटेड रहने के लिए। हमारा फेसबुक अकाउंट है, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है आकाशवाणी नंची बबाल। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियां, आने वाले प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नंची बबाल पर सुन सकते हैं। आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी साथी अलीना और मदिहा को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। तो दोस्तों, हम आपको छोड़ चलते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 6 बजने वाले हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जाँच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया

जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन

0: भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने बैट BMS इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है किसान श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान मान भाइयों को आपके भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और आपके भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू की
0: राम राम।
1: तो गंगाराम भाई,
0: हाँ झुमरू भाई,
1: अरे कैसे हाल चाल है भाई? राजी खुशी
0: भाई, बिल्कुल बढ़िया है, आप सुनाओ।
1: बात देखो भैया, वैसे तो बढ़िया
0: हाँ,
1: पर भाई बादल तो बतेरे आए, पर भैया वो तो वही काम हो गया भैया।
0: भाई देखो बात यो है, बादलों ने तो सामान्य सा तान रखा
1: हाँ।
0: और बूंद एक ना गिर रही।
1: बाबा देखो उस दिन थोड़े छिट्टे से आए थे,
0: हाँ।
1: लगा था कि भैया बस अब जा काम शुरू होने वाला, पर भैया देखो अभी तो बरसात हुई नहीं, पर उम्मीद है भाई, देखो उम्मीद पर जो है सब कुछ कायम है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, देखो हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए,
1: हाँ
0: क्योंकि सोचने में कुछ जाता तो है नहीं,
1: ना भैया ना,
0: तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होने की एक संभावना बनी रहेगी। तो भाई ऐसे हम सोच रहे हैं कि भाई देखो देर सवेर बारिश जरूर पड़ेगी।
1: और देखो भैया हमारे किसान बहन भाइयों ना,
0: हाँ
1: भाई जुलाई का महीना लग तो ही भाई वर्षा काल मान लिया, और अब हमारे बहन भाइयों ने जो धान की रोपाई काम शुरू कर दिया भैया।
0: बिल्कुल, और देखो भाई जिनकी फसल 21 से 25 दिन के बीच की हो गई उन्हें भैया रोपाई कर भी देनी चाहिए।
1: क्योंकि भाई देखो 21 से 25 दिन की हमारी जो पौधा वो रोपाई के लिए सर्वोत्तम अच्छी मानी जाती है,
0: हाँ
1: सर्वोत्तम होती है, और भैया अगर ज्यादा उम्र की हमारी पौध हो जा तो भैया फिर जो वो उतनी बढ़वा नहीं करती है, तो इसीलिए भैया 21 से 25 दिन की पौध ज्यादा से ज्यादा अगर हो तो 1 महीने से ज्यादा की तो भैया पौध होनी नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात की। देखो भाई ये बात तो आज हम बहुत सारी करेंगे, अपने सुनने वालों को ये जानकारी और दे दें कि
1: हाँ।
0: भैया आज माह का पहला शुक्रवार है
1: बिल्कुल,
0: और पहले शुक्रवार को भैया हमारे यहाँ से प्रसारित होता है कार्यक्रम हेलो किसान।

0: सब्जी है भैया, हमारे कुछ किसान भाई सब्जी भी लगाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो भैया सब्जियों की देखभाल करना और भैया जो इस समय हम उनकी बुआई करनी है वो भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। देखो भाई, सब्जियों की जहां तक बात आपने करी तो सब्जी वाली खेती से हमें बहुत फायदा होता, क्योंकि एक तो कम जमीन में ज्यादा उत्पादन मिल जा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और भाई आजकल आप जान रहे हैं कि सब्जियों की कीमत भी आसमान कुछ हो रही है, तो हमें जो है कम भूमि में बहुत ज्यादा लाभ हो सकता।
0: बिल्कुल। तो भाई देखो, जहां तक सब्जियों की बात है,
1: हाँ
0: तो भैया बैंगन, मिर्च और अगेती फूलगोभी की रोपाई का टाइम चल रहा है।
1: बिल्कुल।
0: और बहन भाइयों ने जो भैया पिछले महीने पौध साला डाल दी होगी,
1: हाँ
0: यानी कि पौध हमारी तैयार होगी,
1: हाँ
0: भैया फिर भी हम जो इसकी अच्छी प्रजाति है वो बताई दे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो भैया बैंगन की अच्छी प्रजाति है पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा क्रांति, पंत सम्राट, आजाद बी, नरेंद्र बैंगन एक और आजाद क्रांति।
1: बिल्कुल। तो भैया इनमें से किसी एक प्रजाति का आप बीज बाजार से लाकर
0: हाँ।
1: पहले पौध तैयार कर लो, और भैया फिर बढ़िया सा आप फसल आपकी उत्पादन हो जाएगा।
0: और भाई जहां तक मिर्च की बात है,
1: हाँ
0: तो भाई जो भाई बहन भाई मिर्च लगाना चाह रहे हैं, वैसे तो भैया पौध तैयार होगी,
1: हाँ
0: लेकिन भाई फिर भी अगर पौध तैयार ना हो तो भैया अच्छी प्रजाति हम बता रहे हैं। तो मिर्च की अच्छी प्रजाति है पंत सी एक, पंत सी दो, पूसा सदाबहार, पूसा ज्वाला, कल्याणपुर सिलेक्शन, जवाहर कैलिफोर्निया और वंडल येरो वंडल।
1: बिल्कुल। तो इनमें से कोई सी भी एक प्रजाति की मिर्च लगा के भैया आप मिर्च का उत्पादन कर सकते हैं। और भैया देखो, ये दोनों ही फसल ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा इनमें तकनीकी जानकारी की ज़रूरत नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: हमारे किसान भाई बहुत सारे रोग और कीट से इनके परिचित हैं,
0: हाँ
1: उनके नियंत्रण करना है, हल्की सिंचाई करते रहना है और भैया निराई गुड़ाई करनी है, तो इनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।
0: और भैया देखो, जहां तक सब्जी वाली फसलों की बात है, तो भैया सब्जी लगाने से पहले भैया हम कुछ तैयारी करनी है।
1: हाँ
0: और भाई इस बात का ध्यान रखना कि भैया सब्जी हमेशा उन क्यारियों में लगामो, उन खेतों में लगामो जहां जल भराव ना होता हो,
1: हाँ
0: जल निकासी की पूरी व्यवस्था हो। और वही साथ ही छोटी छोटी क्यारियां लगा कर भैया आप जो है सब्जी लगाओ। और जैसे भैया मिर्च की बात है,
1: हाँ
0: तो मिर्च हमारे किसान भाई जो हमारी सब्जियां होती है ना भैया, तो
1: हाँ
0: उसकी क्यारियों की जो मेड़ होती है, तो मेड़ों पर भैया हम जो है मिर्च की रोपाई भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात आपने की। देखो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। आजकल हमारे किसान भाई भैया सह फसली के रूप में भी ये काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। और हमारे किसान भाई बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने भैया समय से जो है बेल वाली जो सब्जी लगाई होंगी, जैसे इस टाइम तोरी चल रही है,
0: हाँ
1: इस टाइम लौकी चल रही है, इस टाइम करेला चल रहा है, तो उनकी अगर आपने भैया सब्जियों की खेती कर रखी होगी तो
0: जी
1: उनकी देखभाल और तुड़ाई का भी ध्यान रख रहे होंगे।
0: बिल्कुल। और देखो भैया इस टाइम पर अगेती फूल गोभी की रोपाई का भी टाइम चल रहा,
1: बिल्कुल।
0: और टाइम की जहां तक बात है भैया, आप ये समझ लो कि सब्जियों में समय का बड़ा योगदान है,
1: हाँ
0: क्योंकि अगर हम इस टाइम पर लगाते हैं
1: हाँ
0: तो जो हमारी अगेती फूल गोभी लगेगी,
1: हाँ
0: तो इस टाइम पर लग कर भैया वो आप ये समझ लो कि सितंबर के लास्ट में अक्टूबर में आ जाएगी,
1: बिल्कुल
0: और उस टाइम पर हम मार्केट में मंडी में मूल्य मिलता है 40 से 50 रुपए किलो,
1: हाँ
0: और वही फूल गोभी आप भैया आप सितंबर अक्टूबर में लगाते हो तो वो आएगी दिसंबर में जनवरी में,
1: बिल्कुल
0: और उस टाइम पर क्या मूल्य होगा, 5 रुपए 10 रुपए प्रति किलोग्राम का।
1: बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं भैया। तो भैया हमें यो भी ध्यान रखना है कि समय से लगानी है हर चीज़,
0: हाँ
1: समय से लगाने से भैया उत्पादन भी अच्छा मिलता है और दाम भी अच्छे मिलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई देखो ये बात तो होती रहेंगी, अब कहो तो सुन लेते हैं कुछ जरा से संदेश।
0: ठीक है भैया।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: तो भाई गंगाराम,
1: हाँ भैया झुमरू
0: भाई देखो, खेती बाड़ी तो हम कर रहे हैं
1: हाँ
0: भैया, कुछ सरकार ने ऐसी योजनाएं चालू कर रखी हैं भैया, उनकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है
1: बिल्कुल
0: भैया। पता नहीं कब किस योजना का हम लाभ लेना पड़ जा,
1: जी
0: कौन सी योजना हमारे काम में आ जा,
1: हाँ
0: तो भैया योजनाओं की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। देखो बात यह है कि आपने बात कही कि समय का कुछ पता नहीं,
0: हाँ
1: आजकल तो ऐसा हो रहा घर से निकलो तो भैया लौट के भी आएंगे ये भी जानकारी
0: हाँ
1: नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: भाई खेतों में जा रहे हैं तो गुलदार का डर, और भैया खेत में जा रहे हैं तो सांप के काटने का डर, मशीन के अंदर आने का डर,
0: बिल्कुल।
1: मशीन में भैया कोई दुर्घटना होने का डर, कुल मिलाकर हर इंसान कि किसान भाई नहीं, सारे इंसान जो है भैया इस टाइम खतरे की जिंदगी जी रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए भाई भारत सरकार भी जो है सजग है।
0: तो भाई देखो इसके लिए
1: हाँ।
0: भारत सरकार की योजना तो भैया है ही
1: है। हाँ हाँ।
0: लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के बारे में।
1: जी जी जी बिल्कुल। तो ये उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री जो है कृषक कल्याण योजना है, जिसके अंतर्गत भैया 5 लाख तक की जो राशि है
0: जी
1: उसका अनुदान मिल जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो भैया ये क्या राशि है थोड़ा सा बताओ हमारे किसान भाइयों को।
0: तो भाई देखो किसी दुर्घटना में अगर किसी किसान की मान लो मृत्यु हो जाती है
1: हाँ।
0: या भैया कुछ ऐसी स्थायी अपंगता हो जाती है
1: हाँ।
0: तो ऐसी स्थिति में भैया किसान को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। और भाई इसके लिए दुर्घटना के 6 महीने के अंदर अंदर
1: हाँ।
0: हमें भैया इसमें आवेदन करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: और आवेदन के लिए भाई देखो एक तो जब दुर्घटना हुई है तो उसका साक्ष्य हमारे पास में होना चाहिए।
1: सही बात है।
0: यानी जैसे कि अगर इलाज होया है तो जैसे डॉक्टर की जो इलाज है जो पर्चे हैं वो हमारे पास में होना चाहिए। साथ ही भैया अगर किसान की मृत्यु हो गई हो
1: हाँ।
0: तो FIR की रिपोर्ट हो
1: हाँ।
0: या भैया PM रिपोर्ट हो यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
1: बिल्कुल।
0: वो हमारे पास में हो। साथ ही वो किसान भैया एक वाजिब किसान हो यानी कि भैया खसरा खतौनी में उसका नाम हो, उसके नाम पर जमीन हो।
1: बिल्कुल।
0: और भाई इस योजना की एक और खास बात है।
1: वो क्या
0: भैया? वो बात ये हो कि देखो किसान को तो इसका मुआवजा मिलेगा ही, जो भैया पट्टे पर खेती करते है ना ठेके पर लेकर, उन किसान भाइयों को भी इसका लाभ मिलेगा।
1: बिल्कुल। तो देखो ये बहुत अच्छी योजना है। इससे भाई जो मरने वाला है या जो जाने वाला है या जो भैया अपंग हो गया वो काम तो जो हो गया वो हो गया।
0: बिल्कुल।
1: वो तो वापस आती नहीं
0: चाहिए,
1: लेकिन उसके पीछे जो घर परिवार रह जाता है
0: हाँ हाँ।
1: वो भैया अब जो है सुरक्षित हो जाता है।
0: बिल्कुल। और भाई देखो एक बात हम और बता दें भाइयों को कि जो पट्टे पर हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं
1: हाँ।
0: और वो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो भाई इसके लिए जरूरी हो
1: हाँ।
0: कि हमने जिस किसान भाई से उसकी जमीन पट्टे पर ली है तो भैया उसका एक वाजिब स्टाम्प एक एग्रीमेंट होना चाहिए।
1: बिल्कुल भैया देखो ये जरूरी है। अगर आप ठेके पर कोई जमीन लेते हैं
0: हाँ
1: तो पूरी भैया लिखा पढ़ी के बाद ले में वकील के माध्यम से भैया
0: बिल्कुल
1: जो पक्के स्टाम्प बात करके ले में तब जाकर जो है इस योजना का लाभ आपको मिल सकता है।
0: बिल्कुल। तो भैया हम लेखपाल के माध्यम से ये जो भैया हमारे ग्राम पंचायत सचिव होते हैं उनके माध्यम से भैया अपने ग्राम प्रधान के माध्यम से भैया इस योजना का लाभ ले सकते हैं, आवेदन हम कर सकते हैं और पूरी जानकारी भैया हम इसकी ले सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो भाई देखो ये तो बहुत सारी बातचीत हो गई और हमने जैसे भैया पहले ही बताया था कि आज माह का पहला शुक्रवार है।
0: बिल्कुल।
1: और पहले शुक्रवार को भैया हमारे जो बहुत सारे किसान भाई हैं वो फोन के माध्यम से भैया हमसे बातचीत करते हैं और अपनी खेती किसानी पशुपालन और बागवानी आदि संबंधी जो उनकी समस्याएं हैं उसका निदान करना चाहते हैं। तो भैया आपके और कार्यक्रम के बीच से हम फासला कम करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और शुरू करते हैं आज का हेलो किसान।

0: तो स्वागत है हमारे सभी बहन भाइयों का आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। और इस हेलो किसान कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपका भैया सुवेंद्र सिंह झुमरू,
1: और मैं हूं आपका भैया आलोक कुमार गंगाराम। और भैया, इस कार्यक्रम के जरिए भैया हम आपसे बात ये करना चाह रहे हैं कि आपकी कोई समस्या है तो आप सीधे फोन करके हमसे बातचीत कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपकी जो समस्या है उसका निदान करने की।
0: बिल्कुल भैया, फोन करने के लिए नंबर आप बता दो जल्दी से भैया।
1: भैया देखो, नंबर नोट कर लो, मैं सच सच बता रहा हूँ, 9457-07-82-88।
0: ठीक,
1: और एक और भैया लैंडलाइन नंबर है, पहला नजीबाबाद का एसटीडी कोड लगा दो, 01341, और फोन नंबर 230-105। तो इनमें से किसी एक पर भैया फोन कर दें। और भैया इस बीच में हमने बात करी और एक फोन आ गया,
0: बिल्कुल। तो भैया देखते हैं कि
1: देखते हैं फोन
0: हमारे
1: भैया आया।
0: हमारे लाइन पर। हाँ हेलो,
2: हेलो
0: हाँ जी हेलो किसान,
2: हेलो किसान। पहले
0: हाँ जी
2: तो मेरी आलोक कुमार गंगाराम और सुरेंद्र सिंह झुमरू को राम राम।
0: राम राम
1: राम
0: जी,
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम राम।
2: और मैं ग्राम का धरोना, जिला हरिद्वार उत्तराखंड से आपका निमित्त श्रोता मदन गिरी बोल रहा हूँ।
1: जी साहब
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हेलो किसान कार्यक्रम में। कैसे हैं मदन जी?
2: बहुत बढ़िया हूँ जी, और खेती बाड़ी भी ठीक चल रही है
0: जी। जी
2: और ऐसा है कि जागरूक श्रोता में भी मेरी पहली कॉल लगी थी
0: जी।
2: और ये संयोग ही कही है या मेरा भाग्य कही है कि हेलो किसान में भी मेरी पहली कॉल लग गई है।
1: अच्छा, हाँ जी। आपके यहाँ बारिश हुई क्या?
2: बारिश हुई 2 दिन, परसों और परसों।
0: अच्छा,
2: अच्छी बारिश हुई।
1: अच्छा,
2: लेकिन कल से फिर ऐसा ही मौसम हो गया है।
0: जी जी,
1: गर्मी है काफी।
2: हाँ जी, काफी धूप निकल रही है।
1: अच्छा,
2: और फिर गर्मी हो गई है।
1: तो आज

0: पूछना चाह रहे हैं आप हेलो किसान में?
1: मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 118 जो है गन्ना लगा रखा है,
2: हाँ जी हाँ जी,
1: उसकी कुछ पत्ती पीली पड़ गई है
2: जी जी जी,
1: तो उसके लिए कुछ आप मुझे परामर्श दें, सुझाव दें, जिससे वो ठीक हो जाए।
2: अच्छा, ये जो पत्ती पीली पड़ी है आपकी, ये बताइए ऊपर की पत्ती पीली पड़ी है नीचे की पत्तियां पीली पड़ी हैं?
1: ऊपर की।
2: अच्छा, ऊपर की पत्तियां पीली पड़ी हैं।
1: जी,
2: जो देखिए, ऊपर की जो पत्तियां पीली पड़ी हैं, इसका मुख्य कारण तो ये है कि अधिक तापमान होने की वजह से, अधिक उमस और लू चलने की वजह से ये पत्तियां
1: अच्छा
2: हमारी पीली पड़ी हैं, और कुछ ये सबसे लंबी वाली जो पत्ती होती है वो ज्यादातर इसमें सूखी है, ऐसा ही है ना?
1: जी, हाँ जी, हाँ
2: हाँ, जो बिल्कुल हमारी सबसे लंबी पत्ती होती है वो हमारी
1: हाँ जी
2: सूखी है। जी। और देखिए, ऐसा होता है कि जब पौधे पर मौसम की मार होती है, विपरीत प्रभाव होता है मौसम का, तो पौधे अक्सर पत्तियां गिरा देते हैं, पत्तियां अपनी सुखा देते हैं, ताकि उनको ज्यादा एनर्जी खर्च ना करनी पड़े अपनी बढ़वार को बचाने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए।
1: अच्छा जी,
2: जी बिल्कुल। और कोई जानना चाह रहे हैं?
1: बस और तो यही थी समस्या।
2: और खेती बाड़ी ठीक ठाक चल रही है आपकी?
1: और ठीक चल रही है, जो बता रहा था ठीक चल रही है।
2: जी जी
1: और
2: जी
1: जो है अपना जो है मजे में है, गेस्ट अमरूद का पेड़ लगा रखा है, बड़े बड़े अमरूद लग रहे हैं,
2: जी जी
1: बिना
2: बिल्कुल,
1: खाद के बिना केमिकल के खा रहे हैं, जामुन लग रही है
2: बहुत बढ़िया
1: और
2: जी।
1: पेड़ लगा रहे हैं, बहुत पेड़ लगा रखे हैं।
2: जी बिल्कुल, देखिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई देखिए, ये थे हरिद्वार से मदन गिरी जी, जो कि बहुत ही जागरूक किसान भाई हैं और हर काम अपने खेतीबाड़ी में समय से करते हैं। और देखिए गंगाराम भैया, हम इस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि खेतीबाड़ी में समय का बड़ा ध्यान है, समय का बड़ा महत्व है।
0: बिल्कुल, देखिए बातें करेंगे, लेकिन एक और साथी हमारे फोन लाइन पे हैं।
2: हेलो,
3: हेलो सर, नमस्कार।
2: नमस्कार
0: नमस्कार
2: जी।
3: सर, मैं सुमित्र शर्मा जिला समर यूपी से बात कर रहा हूँ।
2: जी
0: जी
2: सौमित्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो किसान कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद
0: आज क्या पूछना चाह रहे हैं आप?
3: सर, मेरे दो छोटे छोटे जिज्ञासा भी प्रश्न है सर।
2: हाँ जी
0: जी
2: बताइए।
3: सर, हमारे साथ हमारी सारी गाय है,
2: हाँ जी, गाय है जी।
3: मेरे बच्चे आनी है,
2: हाँ जी हाँ जी।
3: तो सर उसके सर गले में दो गांठें सी निकल रही हैं।
2: अच्छा, गांठें निकल रही हैं।
3: जी, और सर एक और सवाल है सर,
2: हाँ जी,
3: एक गाय है हमारी सर, तो सर उसको सर ऐसा कौन सा, मतलब 1.5 महीने की डेयरी हो गई, तो सर हम उसको ऐसा कौन सा निर्णय लेते हैं, मतलब टाइम से क्रॉस हो जाए सर।
2: जी बिल्कुल। तो देखिए, आपने गाय पाल रखी है, बहुत अच्छी बात है, और गौ पालन हमारी खेतीबाड़ी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और अगर हम जैविक खेती करते हैं तो उसमें गाय का बड़ा ही महत्व माना गया है ना गंगाराम भैया?
0: बिल्कुल सही बात आपने की। और भाई देखो, गाय पालने के कई सारे फायदे होते
2: हाँ
0: हैं,
2: हाँ बिल्कुल
0: दूध
2: बिल्कुल,
0: उत्पादन तो होता ही है,
2: हाँ
0: उसके अलावा इसका जो गोबर होता है, इसका मूत होता है, वो भी फायदेमंद है।
2: बिल्कुल
0: और भाई हम जब किसान हैं और उनके ऊपर हाथ फिराते हैं, उससे भी फायदा होता है।
2: बिल्कुल। तो देखिए, जहाँ तक इनका प्रश्न है उसकी बात करते हैं, तो
0: हाँ
2: देखिए सबसे पहले हम इनका प्रश्न ये लेते हैं कि जो इनके उसमें गले में गांठें हो रही हैं, तो ये तो देखिए जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वही देख कर बताएंगे, वही उसको देखेंगे, जांचेंगे, तभी हमें पता चल सकता है कि ये क्या बात है, किस तरीके से ऐसा हो रहा है। और देखिए, जहाँ तक आपने बताया कि जो आपकी गाय ब्याही है और वो अच्छा दूध दे सके और उसे वो अच्छे ब्यात पर आ सके, तो इसके लिए संपूर्ण पोषक तत्वों की मात्रा मिलना बहुत ही ज़रूरी है। तो रात में मिश्रण आप अपनी गाय को दीजिए, और जो हमारे पशु वैज्ञानिक हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, वो ये बताते हैं कि 3 किलोग्राम अगर हमारी गाय दूध देती है तो उसके लिए 1 किलोग्राम रात्रि दाना मिश्रण देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और 1 किलो

0: जी
1: जी गगन यादव,
0: जी गगन यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद,
0: डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में कौन सी जगह है?
1: टांडा।
0: कोट टांडा। अच्छा, बताइए खेती बाड़ी कैसी चल रही है आपकी?
1: खेती बाड़ी बढ़िया चल रही है,
0: अच्छा, क्या लगा रखा है इस समय?
1: गन्ना और धान।
0: अच्छा, गन्ना और धान। तो बताइए क्या जानकारी चाह रहे हैं आज?
1: 3 साल की बच्चा है,
0: जी
1: हीट में ना आ रही हो।
0: अच्छा,
1: नहीं,
0: 3 साल की बच्चिया हीट में नहीं आ रही है, तो देखिए उसका वजन अच्छा है,
1: वजन 3.5 क्विंटल।
0: 3.5 क्विंटल है, तो देखिए वजन भी उसका अच्छा है, पर्याप्त है, और उसको तो हीट में आ जाना चाहिए था। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें हमें पता नहीं चलता है, और जो हमारा पशु होता है वो हीट में आ जाता है, तो उसकी पहचान करना भी बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि वो थोड़ी सी कूद
2: हरकत कर रहा है।
0: हरकत करता है, कूद फांद सी करता है, कई बार हम देखते हैं गोबर काट रहा हुआ है, और कुछ श्राउप सा भी होता है, तो ये हमें परखना होता है। और कुछ पशु तो हमारे ऐसे होते हैं जो कि रंभाते हैं, लेकिन अब हर पशु जो है उसमें ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं रंभाने के, तो हमें जो हमारे बारीक लक्षण होते हैं उसी से हमें पहचान करना होता है। पशु हमारा दंगा कर रहा है, कूद फांद करता है, दूसरे पशु के साथ में लड़ता है, तो ये सारे लक्षण भी हमें पहचानने हैं इस तरीके से। और अगर फिर भी हमें ये पहचान नहीं मिल पा रही, ये लक्षण नहीं मिल रहे हैं, तो पशु चिकित्सक को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। हम अपने निकट के राज्य के पशु चिकित्सक या जो कोई भी हमारे आसपास में प्रशिक्षित पशु चिकित्सक हैं, उनको दिखाना बहुत ही ज़रूरी है।
2: बिल्कुल,
0: जिससे
2: देखिए आम तौर पे ये देखा जा रहा है कि आजकल ये एक आम समस्या हो गई
0: हाँ
2: है।
0: हाँ हाँ
2: उसका कारण ये है कि हम पौष्टिक चारे से जो है अपने पशुओं को वंचित रख रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: भाई देखिए, राती मिश्रण जब तक नहीं जाएगा, हरा चारा जब तक नहीं मिलेगा, यानी कि पौष्टिकता से भरा हुआ चारा नहीं मिलेगा, ताज़ा पानी नहीं मिलेगा, तो पशु भला कैसे अपना वंश वृद्धि करेगा। इस
0: बिल्कुल।
2: बीच में एक फोन और है।
0: हेलो, हाँ नमस्कार जी, हेलो किसान,
3: मैं जलालाबाद से बोल रहा हूँ, अब्दुल खालिक।
0: हाँ जी अब्दुल खालिक जी, बताइए कैसे हैं आप?
3: मैंने बासमती का आपका प्रोग्राम चल रहा था, जब सुनिए मैंने
0: हाँ जी,
3: आपको
0: हाँ जी
3: हमने
0: बिल्कुल
3: कहा कि बासमती का प्रोग्राम चल रहा है।
0: जी जी बिल्कुल,
3: हमारी भैंस है साहब,
0: हाँ जी
3: जो हमारी घर वाली बात चल रही है आपसे
2: जी कराओ
4: जी
0: जी।
4: जी
0: अपना नाम बताइए,
4: नमस्ते नमस्ते।
2: अपना नाम बता दीजिए
4: हाँ कल
2: जी। जी बताइए क्या समस्या है।
4: हमारी हमारी भैंस ईद के चार में भी आई थी।
0: हाँ जी
4: हम उसको हाँ 1 किलो दूध देते हैं, खली देते हैं भैंस
0: हाँ
4: की।
0: हाँ हाँ
4: हाँ तो दूसरे नहीं बढ़ रही,
0: दूध से
4: चीनी
0: नहीं।
4: भी दे देगा, मीठी चीनी चाय बनाने की और कच्ची खांड क्या
2: हाँ
4: देने, खांड खांड अच्छी रहेगी या चीनी चाय बनाने की।
0: देखिए, खांड और चीनी, देखिए गुड़ तो हम उसमें देते हैं क्योंकि गुड़ में कैल्शियम होता है, और इसके अलावा ये
4: अच्छा
0: सारी चीज़ें हमें अगर हम देते हैं तो जो हमारे पशु चिकित्सक हैं उनकी राय के हिसाब से हमें देने चाहिए, ठीक है जी।
4: देने
0: गुड़ हमारे के
4: नहीं चाहिए, चीनी नहीं देनी चाहिए ना कच्ची खांड।
0: देखिए चीनी और खांड के बारे में हम आपको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो पशु चिकित्सक हैं वही इस बारे में अच्छा बता सकते हैं। गुड़ हम पहले से देते चले आए हैं, गुड़ में कैल्शियम होता है, गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, पशु के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, तो गुड़ आप दे सकते हैं।
4: अच्छा
0: और ज़्यादा गुड़ हमें
4: और
0: नहीं देना
4: फिर
0: है, क्योंकि मौसम बरसात का है, गर्मी का मौसम है, ज़्यादा तापमान चल रहा है, तो गुड़ की तासीर जो गर्म होती है, तो ज़्यादा गुड़ भी नहीं देना है, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा गुड़ आप दे सकती हैं, 200-250 ग्राम गुड़ अपने पशु को दे सकते हैं, आधा किलो भी हम दे सकते हैं, क्योंकि भैंस है तो उसको ज़्यादा मात्रा लगती है, ठीक है जी। वैसे अगर हम पशु चिकित्सक की राय पर देते हैं, उनसे राय लेते हैं कि हमें किस तरह का खान पान इसका रखना चाहिए, अगर वो दूध से नहीं बढ़ रही है।
4: तो चीनी कच्ची खांड नहीं दो, गुड़ दे दो।
0: हाँ गुड़ अच्छा रहता है, गुड़ में कैल्शियम की मात्रा रहती है, और गुड़ स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहता है।
4: गुड़ कितना दो?
0: 250 से आधा किलो के आसपास आप गुड़ दे सकती हैं, ठीक है जी।
4: अच्छा
0: हाँ ज़्यादा,
4: एक टाइम दे, रात में एक टाइम देती हूँ।
0: हाँ हाँ रात में भी आप डाल सकती हैं उसको, वैसे भी खिला सकती हैं, तो कैल्शियम की मात्रा होगी,
4: अच्छा
0: दूध भी अच्छा बढ़ेगा। और दाना मिश्रण रात देना बहुत ही ज़रूरी है, थोड़ी सी मात्रा नमक की भी आप उसको देंगे अच्छा रहेगा, ठीक है जी।
4: अच्छा
0: और संतुलित चारा उसको खिलाइएगा, हरा चारा दीजिएगा, थोड़ा सा सूखा चारा भी उसमें मिश्रित कीजिएगा, ऐसा ना हो कि मतलब हरा चारा बहुत ज़्यादा है तो निखालिस केवल हमने हरा चारा ही दे रखा है, उसमें सूखा चारा भी आप अवश्य मिलाइए, क्योंकि उससे
4: अच्छा
0: जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो अच्छी रहती है पशु की, तो जब जो
4: अच्छा
0: हमारा
4: पानी भी कम पीए।

0: हाँ तो नमक आप देंगी तो पानी पिएगी फिर ज्यादा। वो नमक का कोई डला सा बड़ा सा ना आते हैं सेंधा नमक के बड़े डले, वो रख दीजिएगा, उसे चाटती
1: अच्छा
0: रहेगी तो फिर पानी ज्यादा पिएगी वो।
1: जी,
0: अच्छा
1: और हरा चारा अगर आप ज्यादा देंगे तो उसमें पानी की मात्रा वैसे ही रहती है तो पानी कम पिएगी, तो इसीलिए सूखा चारा उसमें मिलना बहुत ही जरूरी है। ठीक है जी।
0: जी,
1: हाँ, सूखा चारा जो है वो आधे से थोड़ा ज्यादा हो जो हरा चारा है, और सूखा चारा थोड़ा कम हो, यानी कि 40 और 60 का अनुपात हम इसमें रखते हैं हरे चारे में
0: अच्छा
1: और सूखे चारे में।
0: थोड़ा सा भूसी मिला दूं हरी कुट्टी में।
1: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही करना है।
0: अच्छा
1: ठीक है जी।
0: रोटी भी दूं
1: रोटी बची कुची आप दे सकते हैं, वैसे रोटी देना जरूरी नहीं है, जो आपकी रोटी बचती है वो आप खिला सकते हैं दाना मिश्रण में ही
0: हाँ
1: डालकर।
0: भिगो
1: जी
0: के खिला देंगे।
1: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो आपकी भैंस है वो निश्चित तौर पर अच्छा दूध देगी, ज्यादा दूध देगी और ब्यात भी अच्छा मिलेगा, है ना गंगाराम भैया?
0: बिल्कुल सही बात है। और देखिए आज पशुपालन से संबंधित
1: जी
0: ज्यादा प्रश्न हमारे पास आए, और
1: बिल्कुल
0: वास्तव में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि टीकाकरण पर हमें ध्यान देना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि गलघोटू और खुरपका मुरपका रोग होने की संभावना रहती है।
1: हाँ।
0: तो इस बीच में एक फोन आ गया, पहले ही सुन लेते हैं।
1: हेलो,
0: चुप
1: हाँ जी, हेलो
0: हेलो।
1: किसान,
0: हाँ जी हेलो किसान, राम राम जी। हाँ
1: राम राम जी।
0: जी दोनों भाइयों को साहब, मैं यहाँ ग्राम दपोर रावल से आचार्य सत्यवीर सिंह बोल रहा हूँ
1: जी आचार्य जी, बताइए आज क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं।
0: जी। प्रश्न तो साहब पूछ ही लेंगे, और साहब बरसात हो गई है, धान वान की लगाई शुरू हो गई,
1: अच्छा
0: अच्छा
1: अच्छा
0: काफी अच्छी बारिश पड़ी
1: जी,
0: और मौसम में भी कुछ राहत मिली है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: हाँ थोड़ा सा ध्यान इस ओर दिवाना चाह रहा था मैं कि हमने थोड़ी सी मक्का लगाई थी कुछ दिन पहले,
1: अच्छा जी, अच्छा
0: तो हम ये सोचते थे उसका एक प्रकार साइलेज बना लें, तो
1: जी,
0: उसमें क्या सावधानी रखी जावे जो वो खराब ना हो। पिछली बार हमने लगाया था तो वो कुछ उसमें जो खराब से हो गया सड़ सा गया।
1: साइलेज बनाना चाह रहे हैं आप उसका?
0: जी,
1: हाँ देखिए, साइलेज अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी हमें ट्रेनिंग लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने साइलेज को तैयार किया है या जो हमारे पशु वैज्ञानिक हैं, जो पशु चिकित्सक हैं, वो अच्छी तरीके से बताएं किस तरीके से हमें बनाना है, कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना है। और देखिए, इसमें हम जो साइलेज तैयार करते हैं वो यही रखते हैं कि हम कुट्टी की मात्रा रखते हैं और उसकी तह बिछाते हैं, है ना गंगाराम भैया?
0: बिल्कुल सही बात है।
1: और फिर उसको नमी भी उसको देते हैं, इस तरीके से साइलेज तैयार करते हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर ही, क्योंकि इस समय पूरी विधि बताना बहुत ही मुश्किल है साइलेज बनाने की।
0: हाँ चूंकि बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, उनकी समस्या का भी निदान करना है, तो इसके लिए हम समय समय पर प्रोग्राम प्रस्तुत करते रहते हैं, और आजकल आसानी से इसकी जानकारी मिल जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये 2 से 3 महीने में लगभग हमारा साइलेज अच्छा रहता है, इसको हम अपने पशुओं को देते हैं, और साइलेज से फायदा ये हमारा होता है कि हम अपने और भाइयों को बता दें कि अगर किसी समय हमारे पास में हरा चारा ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है तो उसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, और फिर जब हमारे पास में चारा उपलब्ध नहीं होता है तो उस समय हम उसको अपने पशु को दे सकते हैं।
0: बिल्कुल, हम अगर कम शब्दों में कहें तो ऐसा हो सकता है जैसे सब्जी के साथ अचार होता है,
1: हाँ, बिल्कुल
0: किस दिन सब्जी नहीं बनी तो अचार से खाना खा लो, तो उसी
1: जी,
0: प्रकार से साइलेज का भी काम होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ये सब हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी हमने लोगों के प्रश्नों के जवाब दिए, फ़ोन हमारे साथी कर रहे हैं। इससे पहले कि और कोई प्रश्न हमारे पास आए तो सुन लेते हैं एक प्यारा सा लोकगीत।
1: ठीक है भैया।

0: तो भाई ने सुना ये हरियाणवी लोकगीत, और एक बार फिर से अपने सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आपका स्वागत करते हैं। और आप इसमें फोन कर सकें तो भैया नंबर आप बता दो।
1: भैया देखिए, आपकी कोई खेती किसानी, पशुपालन या बागवानी आदि संबंधी समस्या है तो आप हमें फोन करें। हमारा नंबर है 94-57-07-88। और एक हमारे साथी का फोन आ रहा है, देखते कौन भैया।
0: हेलो,
2: हेलो किसान।
0: हाँ जी, हेलो किसान।
2: नमस्ते भाषा, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते जी।
2: जी मैं उत्तराखंड से निकाल से निगाम फैक्ट्री से प्रकाश चंद्र बोल रहा हूँ। जी मैं
1: जी प्रकाश जी, कैसा मौसम चला पहाड़ पे? इसमें
2: ऐसा मौसम तो बारिश बंद हो गई, फिर बारिश नहीं हो रही अब।
0: अच्छा, बारिश का मौसम चल रहा है आपके यहाँ?
2: आज 3-4 दिन पहले हुई थी, अब धूप खिल गई, अब मतलब बारिश नहीं हो रही, अब बारिश बंद हो गई। 3-4 दिन पहले तो बहुत अच्छी बारिश हुई थी इधर।
0: अच्छा अच्छा,
2: मैदानी क्षेत्रों में।
0: जी जी बिल्कुल, मैदानी क्षेत्रों में भी थोड़ी बारिश हुई है 2-3 दिन पहले। अभी फिलहाल यहाँ भी धूप खिली हुई है।
2: इधर भी भाषा धूप ही खिली हुई थी, ऐसे लग रहा था जैसे जून का महीना लगा हो।
0: जी जी बिल्कुल। तो बताइए आपकी खेती बाड़ी कैसी चल रही है?
2: भाषा खेती बाड़ी तो सब ठीक ठाक है, लेकिन मैंने भिंडी बोई थी
0: जी,
2: उसमें वो क्या ज्यादा बारिश हो गई क्या, एकदम मुरझा जा रहे हैं वो भिंडी भी, मुरझा जा रही है और वो भी मिर्च भी मुरझा जा रही है, इसमें क्या बात हो गई होगी।
0: ज्यादा पानी तो नहीं भर गया उनके आसपास?
2: पानी तो नहीं भरा जी,
0: पानी नहीं भरा है तो फिर तो ऐसा लगता है कि उकठा की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो आपकी मिर्च और वो हो रही है ना जी।
2: हाँ जी
0: हाँ, दो ही कारण होते हैं, या तो उकठा की वजह से कोई फंगस लग जाती है, उकठा बीमारी लग जाती है फंगस की वजह से, या हो सकता है कि ज़्यादा पानी मिलने की वजह से, ज़्यादा बारिश होने की वजह से, जल भराव की वजह से ऐसा होता है। ये दो ही कारण है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी।
2: हाँ जी हाँ, तो वैसा भी है, कुछ कुछ पेड़ तो बहुत अच्छे हैं।
0: हाँ हाँ,
2: कुछ तो बहुत अच्छे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छी बात है जो आपके पौधे चल रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए कहा जाता है कि जब भी हम बीज की बुआई करें तो उसमें शोधन करना बहुत ही जरूरी है बीज को, क्योंकि जो बीज जनित हमारी बीमारियां होती हैं वो नहीं लगती हैं। तो जैसे कार्बन डाइजिम है या मैंकोजेब है, इससे हमारे किसान भाई शोधित करके अगर बोते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है, और जो बीज जनित बीमारियां होती हैं वो नहीं लगती हैं। ठीक है प्रकाश जी।
2: हाँ यहाँ बैठा, लेकिन यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में तो इतना देखभाल नहीं करते, इतनी दवा नहीं छिड़कते, यहाँ पे इतना ध्यान भी नहीं देते ज्यादा।
0: नहीं, छिड़काव नहीं करनी है, बुआई से पहले बीज को शोधित करना है, जैसे उसमें मिला लेते हैं ना उस तरीके से। हाँ हाँ हाँ जी, शोधन करना बहुत ही जरूरी रहता है, चाहे कोई भी फसल हो, कोई भी बीज हो, ताकि जो बीज जनित बीमारियां वो ना लग पाए, और जल भराव की स्थिति से हमें बचाना है। अगर ज़्यादा जल भी भर जाता है तो जल सड़न, हमारी जड़ जो है वो सड़ जाती है, उस वजह से भी हमारे पौधे सूखते हैं, तो ये कारण भी हो सकता है। ठीक है प्रकाश जी।
2: ठीक है भाषा, ठीक है भाषा, जानकारी दे, जानकारी सुन के भाषा बहुत वो मिली हमें जानकारी, क्योंकि आकाशवाणी नजर आपकी बहुत अच्छी अच्छी जानकारी सुनते हैं
0: जी। बिल्कुल, तो हमें फोन करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगाराम भैया
1: जी। भैया
0: भाई देखो, आज हम अभी सबसे पहले बात कर रहे थे सब्जियों के बारे में, और देखिए अगर हम बरसात में सब्जी लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि भैया हम ऐसे खेत में, ऐसी जगह पर सब्जी लगाएं जहां पर पानी की निकासी की उचित व्यवस्था हो, जल भराव ना होता हो, है ना भैया?
1: बिल्कुल, देखिए जल भराव से जल जो जड़ है वो गलने की संभावना रहती है, जड़ गलन रोग आ जाता है और उससे बहुत सारी समस्या हो जाती है, और जो हमारा उत्पादन है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। तो हमारे उन सभी किसान भाइयों को बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है जो भैया सब्जी की खेती करते हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए अब हम अपने बहन भाइयों को ये बता देते हैं कि अगले माह और इस माह जो भैया हमारे शेष कार्यक्रम है, जो हमारे फोन इन कार्यक्रम है, वो कब कब होंगे, तो इस बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, देखिए भाई, अगस्त माह में जो हेलो किसान होगा भैया वो होगा 7 अगस्त को
0: जी,
1: और भैया जो हम हेलो गन्ना किसान है वो माह के 3rd शुक्रवार को करते हैं, तो 17 जुलाई को, आने वाली 17 जुलाई को हेलो गन्ना किसान होगा। तो इसके अंतर्गत हमारे किसान भाई गन्ने से संबंधित जो भी उनकी जिज्ञासाएं हैं उसको पूर्ण कर सकते हैं
0: जी।
1: और 28 जुलाई यानी कि माह के आखिरी मंगलवार को हमारा कार्यक्रम होता है हेलो बासमती।
0: बिल्कुल,
1: तो बासमती धान से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो विशेषज्ञ हमारे बीच में रहेंगे, उनसे आप 28 जुलाई को इसका निदान कर सकते हैं।
0: और भाई हमारे फोन नंबर है, नजीबाबाद का स्टेडियो कोड है 01341, और फ़ोन नंबर है 230-105, और हमारा दूसरा मोबाइल का नंबर है 94-57-07-88-88।
1: तो बिल्कुल भैया, देखिए आपकी कोई भी खेती किसानी की समस्या हो तो इनमें से किसी एक नंबर पर फ़ोन करके अपनी समस्या का निदान आप कर सकते हैं। तो अब देखिए समय आपसे बातें करने की ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है,
0: बिल्कुल। तो
1: तो
0: भैया
1: अब
0: हर माह के पहले और 5वें शुक्रवार को सुनते रहिए हमारा ये सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसका नाम है
3: हेलो किसान।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। और गंगाराम भैया, अब बारी आ गई है मौसम की चिट्ठी की।
1: बिल्कुल। तो भैया, मौसम की चिट्ठी जो आई है भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के ग्रामीण मौसम विभाग से,
0: हाँ
1: उनके अनुसार भाई आने वाली 5 तारीख तक का मौसम की जानकारी ये है कि भैया कहीं कहीं हल्की से सामान्य वर्षा हो सकती है
0: बिल्कुल
1: और कहीं कहीं भैया तेज हवा भी चल सकती है।
0: बिल्कुल
1: तो ऐसे मौसम को ध्यान में रखते हुए भैया अपनी जो धान की रोपाई है उसके काम को जारी रखें।
0: बिल्कुल। तो भैया, इस तरीके से हमें खेती बाड़ी के काम करने हैं और जिन फसलों की बुआई होनी है उनकी बुआई करनी है, साथ ही धान की रोपाई हमें करनी है, साथ ही जो सब्जी की रोपाई है वो भी हमें करनी है। तो ये सारे काम भैया हमें खेती बाड़ी में करना है। और किसान भाइयों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, इसमें आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं, तो भैया अपनी राय और मशवरे से हमें ज़रूर अवगत कराएँ। और इसके लिए भैया आप चिट्ठी लिखें, और चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता है
1: कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। और इसके अलावा भैया आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के नाम से।
0: बिल्कुल। और भैया, अगर आप चिट्ठी ना लिख सकें तो हमारा जो मोबाइल का नंबर है 9457072888, इस पर आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भी हमें भेज सकते हैं।
1: तो भैया अपने जो समस्याएं हैं उनको आप छिपा के ना रखें, हम तक पहुंचा दें। और अब समय ज़्यादा बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, तो इसी के साथ आज का कृषि जगत कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया आलोक कुमार गंगाराम,
0: और अपने भैया सुवेंद्र सिंह झूमरू को अनुमति दीजिए।
1: किसान भाइयों राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कानूनी सलाह। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे एडवोकेट बिजेंद्र सिंह से एसके नौटियाल की बातचीत, जिसका विषय रहेगा अवैध कब्जा संबंधी कानूनी जानकारी।
1: कानूनी सलाह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर आपके साथ एसके नौटियाल एक नए विषय के साथ, और आज हमारे साथ हैं एडवोकेट बिजेंद्र सिंह। इनसे हमारी आज की बातचीत का विषय है अवैध कब्जा और कानूनी प्रावधान। बहुत से हमारे जो नागरिक हैं, सरकारी भूमि पर, सरकारी आवासों पर, या फिर कहीं सड़कों पर, या इसके अलावा जो ऐसी भूमि होती है जिसका स्वामित्व उनके पास नहीं होता है, वो उन पर कब्जा कर लेते हैं। उसको कैसे कब्जा मुक्त कराया जाए, उसके नियम क्या हैं, इन सब बातों पर विचार करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट बिजेंद्र सिंह।
2: थैंक यू नौटियाल साहब।
1: सबसे पहला सवाल वकील साहब यही है कि जो वस्तुएं जिन पर उनका स्वामित्व नहीं है और वो कब्जा कर लेते हैं, तो ये जो अवैध कब्जा है और या वैध कब्जा है, दोनों क्या है?
2: कब्जा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो तलवार का जो कब्जा होता है जिसे मूठ कहते हैं, उस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, कब्जा।
1: अच्छा,
2: पकड़। और अवैध कब्जा, अवैध पकड़ उसे कहते हैं जो इस बात का लोप कराती हो कि वह व्यक्ति उस वस्तु का स्वामी है।
1: जी,
2: वास्तव में उसका असल स्वामी कोई और होता है।
1: कोई और होता है जी।
2: तो वह उस आदमी का वह कब्जा अवैध कब्जा कहलाएगा। कई कानून ऐसे हैं जो हम अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं, और अवैध कब्जा कई संपत्तियों पर होता है, एक स्थावर संपत्ति पर, एक चल संपत्ति पर।
1: अच्छा, चल और अचल संपत्ति दोनों पर अवैध कब्जा होता है, वैध कब्जा होता है। मैं जानना चाहूंगा कि जो वैध कब्जा है, अवैध कब्जा है, इनमें दोनों में अंतर क्या है?
2: वैध कब्जा एक ये है कि जिसे कानूनी अधिकार प्राप्त हो ऐसा कब्जा वैध कब्जा माना जाए, जिसको हमारा कानून स्वीकृति देता हो, स्वीकृति प्रदान करता हो।
1: जी जी जी।
2: जिसके हमारे कानून के तहत दस्तावेज जो बनते हैं वो उसके पास हो, उसका स्वामित्व, कानूनी स्वामित्व उस व्यक्ति के पास हो, तो वह उसका उस वस्तु पर कब्जा वैध माना जाएगा। अगर उसका स्वामित्व दस्तावेज के आधार पर, कानून के आधार पर किसी व्यक्ति के पास नहीं है और वह उस पर काबिज है, तो उसका वह कब्जा अवैध कब्जा
1: माना जाएगा। वकील साहब, जमीन से संबंधित या ऐसी जो संपत्तियां होती हैं उनसे संबंधित जो कानून है, प्रावधान है, हमारे जो देश में लागू है, और फिर भी हमारे नागरिक जाने अनजाने में वो सरकारी संपत्ति पर या किसी दूसरे की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं, उसको अवैध कब्जे के रूप में माना जाता है। ये बताएं वकील साहब के जो व्यक्ति अवैध कब्जा कर लेता है, वो चाहे सड़क पर अतिक्रमण करे या फिर किसी सरकारी संपत्ति पर वो कब्जा करे या फिर किसी दूसरे नागरिक की संपत्ति पर वो कब्जा करे, तो इसके जो प्रावधान है, कानून है, क्या है, कैसे रोका जाए उनको, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है?
2: बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। संपत्ति दो तरीके की है, एक तो सरकारी और एक गैर सरकारी। गैर सरकारी का मतलब है प्राइवेट संपत्ति, निजी संपत्ति।
1: जी।
2: अब दोनों संपत्तियों से अवैध कब्जा हटाने के लिए अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग एक्ट है।
1: जी।
2: जैसे निजी संपत्ति के लिए, जैसे किसी की खेती की जमीन है
1: जी,
2: उस पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, उसके आधार पर हम, एक तो हमारे पास जो वैध कब्जाधारी है, स्वामित्व है, उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके
1: दस्तावेज होते हैं,
2: फर्द, खतौनी, खसरा, नक्शा वगैरह सब होते हैं।
1: बिल्कुल।
2: उसके आधार पर वो कोर्ट में जा सकता है। इसके लिए कोर्ट होती है एसडीएम कोर्ट या तहसीलदार कोर्ट।
1: जी।
2: अगर निजी संपत्ति है तो उसके लिए एसडीएम कोर्ट में 209 जो पहले रूल था, अब 209 को बदल के 134 कर दिया गया है।
1: कोर्ट में वकील साहब हम तभी जा सकते हैं यदि वो जिसने अवैध कब्जा किया है, अगर वो आसानी से नहीं हटता है तो हम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं।
2: जी, पहला तो प्रयास यही होना चाहिए कि उसे समझाएं, उसे बैठ के बातचीत के माध्यम से उसका वो कर लें कि भाई हमारे पास इसका दस्तावेज है, तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है,
1: ये आपकी संपत्ति नहीं है,
2: ये आपकी संपत्ति नहीं है, हमारा स्वामित्व है इस पे।
1: जी।
2: आप अवैध तरीके से, बलात् तरीके से इस पे काबिज है, कृपया इससे अपना अधिकार हटा लें, स्वामित्व हटा लें, कब्जा हटा लें। अगर वह नहीं मानता तो मजबूर होकर कोर्ट का आप रुख कर सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: निजी संपत्ति के लिए 209 में तो जा सकते हैं, एसडीएम कोर्ट में।
1: जी।
2: ठीक है जी, जो वर्तमान में 134 हो गई है, पहले 209 थी
1: जी,
2: उस सेक्शन के तहत आप एसडीएम कोर्ट में दावा दायर कर सकते हैं
1: जी।
2: उसमें बेदखली का नोटिस रूल 106 के तहत पार्टी को, पक्षकार को जो अवैध कब्जा धारक है उसको दिया जाता है
1: जी।
2: उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है और उसमें कोर्ट के आदेश पर उसको बेदखल कर दिया जाता है
1: जी। ये निजी संपत्ति जो हमारी है उसके ऊपर यदि कोई अवैध कब्जा कर लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। सरकारी जो संपत्ति होती है उसका क्या प्रावधान है?
2: सरकारी संपत्ति के लिए जैसे 122 भी पहले प्रचलित थी
1: जी,
2: अब वर्तमान में उसे बदलकर धारा सेक्शन 67 कर दिया गया है।
1: अच्छा।
2: उसके तहत जो जिस क्षेत्र में, जिस परिक्षेत्र में वो संपत्ति आ रही है तो वहाँ का लेखपाल उसकी सूचना तहसीलदार को देगा, वहाँ के क्षेत्र के तहसीलदार को या नायब तहसीलदार को उसकी सूचना देगा। सूचना के तहत ही कार्रवाई चालू होगी, उसमें 106 के तहत ही फिर समन उस पार्टी पर जाएंगे, नोटिस जाएंगे और एक नोटिस डीएम साहब को जाएगा सीपीसी की धारा 80 के तहत
1: जी। तो ये मान के चलते हैं वकील साहब के जो सरकारी संपत्ति होती है उस पर अवैध कब्जा हटाने के लिए कोई सरकारी कर्मचारी यानी कि जो लेखपाल होते हैं वो कार्रवाई कर सकते हैं, करवा सकते हैं, उनके थ्रू कार्रवाई की जा सकती
2: है। सकते।
1: और वकील साहब ये बताएं कि जो सरकारी संपत्तियां होती हैं जैसे लोग सड़कों पर अतिक्रमण कर लेते हैं या फिर ऐसी जगह बाजार जो हमारे होते हैं वहां सड़कों पर लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, उसको कब्जा मुक्त कराने के लिए क्या प्रावधान है?
2: ये अतिक्रमण का मामला होता है कि अतिक्रमण किया हुआ है किसी ने
1: जी,
2: उसके लिए एक लिमिटेशन एक्ट 1963 है। अगर ये कोर्ट की वह है मानन कानून ने यह लोगों को एक वो दिया है अवैध कब्जा धारकों के हित में है ये।
1: अच्छा।
2: कि अगर कोई अवैध कब्जा धारक, कब्जा अवैध है मगर वह सरकारी संपत्ति पर 30 साल से काबिज है,
1: अच्छा,
2: बिना रोक टोक के, यानी कि सरकार उसको कोई हस्तक्षेप नहीं करती उसके कब्जे में
1: जी,
2: उसको कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती तो 30 साल के बाद वह उसका
1: मालिक हो जाएगा,
2: मालिक समझा जाएगा, उसे बेच सकता है, क्रय विक्रय कर सकता है। इसलिए कानून में यह कहा गया है कि सरकार भी अपनी संपत्ति का
1: समय से
2: ध्यान दे, उस पर कार्रवाई करे
1: जी जी,
2: वरना फिर वह मुश्किल हो जाएगा, कानून उसे हक दे देता है
1: जी,
2: उसे सील करने का या उसमें
1: रहने का हक दे देता है। अब वकील साहब ये जो अवैध कब्जे होते हैं, कोई कब्जा कर लेता है, अतिक्रमण कर लेता है, सरकारी संपत्ति होती है तो सरकार के सामने भी समस्याएं आती हैं। जानना ये चाहूंगा कि जो सरकारी कानून है, नियम है, उसके अनुसार क्या ऐसे व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, क्या उसको सजा दी जाएगी, क्या प्रावधान है सजा का इसमें?
2: सजा का प्रावधान इसमें यह है, अगर आप एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट की, तो यह है ये एक प्रक्रिया आर्थिक दंड के रूप में चलती है और इसके लिए अगर दंड सिविल कोर्ट में जाएंगे आप
1: जी,
2: तो उसमें सेक्शन 441 अतिचार

0: आपराधिक अत्याचार, ये कब्जा अवैध कब्जा इस तरह का आपराधिक अत्याचार में आता है।
1: अच्छा।
0: और धारा 441 के तहत आईपीसी की धारा जिसमें सिविल कोर्ट में हम मुकदमा दायर कर सकते हैं।
1: अच्छा।
0: उसमें 3 मास का
1: कारावास
0: और 500 रूपये का जुर्माना की व्यवस्था
1: जी।
0: और ये संज्ञेय अपराध है और जमानती अपराध है।
1: अच्छा,
0: संज्ञेय है मगर जमानती अपराध है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसका विचारण कर सकता है और इसका समझौता भी हो सकता है।
1: अच्छा, समझौता भी हो सकता है,
0: समझौता के आधार पर भी निपटाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा।
1: जी जी। और हम वकील साहब ऐसा मानते भी हैं कि जो समस्या आसानी से निपट जाए तो वो समाधान आसान होता है।
0: जी।
1: और मैं ये जानना चाहूंगा अब कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी निगाह रहती है कि ये सरकारी संपत्ति है या ये किसी की निजी संपत्ति है, खाली पड़ी हुई है और वो अवैध कब्जा कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे?
0: आप जिस संपत्ति के जो मालिक नहीं हो उस पर काबिज नहीं होना चाहिए
1: जी।
0: ये गैर कानूनी है, उसके लिए कानून आपको दंड दे सकता है, आर्थिक दंड भी दे सकता है और कारावास भी दे सकता है। तो इसलिए ये है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स उस संपत्ति से संबंधित नहीं है जो कानूनी है तो आपको उस पर काबिज नहीं होना चाहिए।
1: जी, आपने सही कहा है। और वकील साहब, ये भी मैं मानता हूँ कि जब हम किसी संपत्ति के मालिक नहीं है, वो हमारी है ही नहीं, तो हमें कब्जा उस पर नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा विचार और ऐसी धारणा अपने मन में रखते हैं तो कोई समस्या ना सरकार के सामने आएगी, ना आपको कोर्ट कचहरी का रास्ता देखना पड़ेगा, ना आपको कहीं कोई आपस में कोई विवाद पैदा होगा। हम अपनी संपत्ति के मालिक हैं, हमें अपनी संपत्ति पर ही कब्जा रखना चाहिए। जो लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं, सड़कों पर अतिक्रमण करते हैं या फिर किसी सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करते हैं या किसी की जो ऐसी निजी संपत्ति है उस पर वो कब्जा करते हैं, तो ये अवैध कब्जे के रूप में आता है, आपको सजा दी जा सकती है, आपको जुर्माना भी दिया जा सकता है। वकील साहब, ये बताएं कि जो हमारे नागरिक हैं, हमारे शहर के नागरिक हों या गाँव के नागरिक हों या फिर हमारे कस्बे के नागरिक हों, कभी कभी लोगों में इस तरह की समस्याएं या इस तरह की जो मानसिकता देखने को मिलती है कि हम हमेशा दूसरे की जमीनों पर या दूसरे के रास्तों पर या सड़कों पर हमेशा निगाह रहती है कि अतिक्रमण करने की।
0: जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि शहर में ये समस्या आम हो गई है। हम भी देखते हैं कोर्ट में ऐसे मामले बहुत आते हैं कि कोई किराए पर रहता है, कोई दुकान किराए पर ले लेता है या मकान किराए पर लेता है और काफी दिनों हो जाते हैं उसे, तो उसकी नीयत में फतूर आ जाता है, वे चाहता है कि मैं इसका मालिक बन जाऊं। ऐसे मामले आते हैं तो उसके लिए कानून में बहुत प्रावधान स्वामी के लिए कर दिए गए हैं
1: जी।
0: मालिक के लिए, मकान मालिक के लिए या दुकान मालिक के लिए किए गए हैं। उसमें उत्तर प्रदेश शहरी किराएदारी अधिनियम 1951 है, उसके तहत उसके सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 28 में प्रावधान है।
1: अच्छा।
0: अगर किराएदार किराया नहीं देता, टाइम पर किराया नहीं चुका रहा, तो उसके लिए सेक्शन 20 में हम जा सकते हैं।
1: अच्छा।
0: उसके लिए कार्रवाई की जा सकती है किराएदारी के तहत, ठीक है। और सेक्शन 21 में यह है कि अगर हमें कोई दुकान है या मकान है उसमें अपना कारोबार करना है, हमने किराए पर दे रखा था मगर अब हमारा विचार है कि हम उसमें अपना कारोबार या अपने यूज में उसे लाना चाह रहे हैं, हमें आवश्यकता है, तो उसके लिए सेक्शन 21 में जा सकते हैं
1: जी जी।
0: और अगर यह है कि हमें अपने मकान का प्रारूप बदलना है, उसकी मरम्मत करानी है, उसे चेंज कराना है, तो इसके लिए सेक्शन 28 है।
1: अच्छा।
0: उसमें हम सेक्शन 28 के तहत जाकर उसको बेदखल कर सकते हैं अपनी संपत्ति से
1: जी। वकील साहब, कई सवाल पैदा हो जाते हैं, हम जैसे जैसे बात करते हैं वैसे वैसे हर समस्या आगे बढ़ती जाती है। किराएदार होता है या फिर हम कोई खेती की जमीन किसी को ठेके पर दे देते हैं या फिर कोई ऐसी समस्या हमारे सामने आती है कि वो अतिक्रमण हो जाता है उस पर किसी की संपत्ति पर, तो जो किराएदार होते हैं वो सोचते हैं लंबे समय तक वो किराए में रहते हैं, किसी के घर में रहते हैं या कोई दुकान किराए पर लेकर वो लंबे समय तक उसमें अपना व्यवसाय करते रहते हैं और फिर वो उस पर कब्जा कर लेते हैं, वो खाली नहीं करते हैं
0: जी।
1: वो हटते नहीं है वहां से।
0: हाँ।
1: कोशिश मालिक कितनी भी कर ले, लेकिन
0: कभी ऐसा होता है
1: आनाकानी करते हैं और फिर हमें कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है।
0: कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट भी उनके पक्ष में निर्णय दे देती है, ऐसा देखने में आता है
1: जी।
0: वो देखने में हम और हमें ऐसा लगता है कि ये गलत हुआ है, वास्तव में वो गलत होता है,
1: गलत होता है,
0: मगर उसके लिए एक लिमिटेशन एक्ट, मैंने आपको पहले भी बताया, लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि सरकारी संपत्तियों के लिए तो 30 साल का कब्जा
1: जी
0: और निजी संपत्ति पर 12 साल का कब्जा,
1: 12 साल का कब्जा जी,
0: 12 साल के कब्जे, मगर उसमें 5 शर्तें हैं कि उस कब्जे के दौरान उसमें कोई दखल ना हो और एक पक्षीय कब्जा हो।
1: अच्छा।
0: और निरंतर कब्जा हो।
1: अच्छा, निरंतर कब्जा जी, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए।
0: और एक ये पब्लिक सिटी, पब्लिक में उसका ऐसा वो हो कि ये दर्शाया गया हो, यह दर्शाता हो कि ये इसका मालिक है,
1: मालिक है जी।
0: पब्लिक में एक ऐसी सोच हो कि हमने कोई मकान ले लिया, ठीक है, और हमने किराए पे ले रखा है वास्तव में, मगर हम उसमें दसों साल से रह रहे हैं।
1: हाँ।
0: उसकी हमने दीवार तोड़ के बढ़ा ली है, उसमें हमने नल लगा लिया है, उसमें पेड़ लगा लिया, उसकी चार दीवारी कर ली है हमने।
1: जी, जी, जी।
0: तो आम पब्लिक जो आस पड़ोस के जो लोग हैं
1: वो ये मान,
0: तो वो ये मान लेंगे कि ये इसका अपना मकान,
1: अपना मकान है, अपनी संपत्ति है।
0: हाँ, तो जब कोर्ट में कार्रवाई चलती है तो कोर्ट इन तथ्यों पर ध्यान देता है,
1: विचार करता है,
0: इन पे विचार करता है
1: जी।
0: और अगर ये तथ्य उसके पक्ष में जाते हैं, अवैध कब्जा धारक के, क्या कि नंबर एक निरंतर कब्जा, एक पक्षीय कब्जा, और पब्लिक में ये दर्शाया गया हो, ये लगा हो कि ये इसका मालिक है, स्वामी है, तो इसके आधार पर कोर्ट उसके फेवर में उसे स्वामी मान लेती है।
1: वकील साहब, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही शायद ऐसा नियम बनाया गया है कि यदि कोई संपत्ति को किराए पर लेता है, यदि कोई मकान किसी को किराए पर देता है, यदि कोई दुकान किसी को किराए पर देता है, तो उसका बाकायदा लिखित में समझौता होना चाहिए, स्टाम्प जो नोटेरी होते हैं हमारे उनके थ्रू उस पर जो समझौता होना चाहिए कि वो उसको एक साल के लिए दिया गया है या दो साल के लिए दिया गया है, ताकि विवाद आगे ना बढ़े, आपको कोर्ट ना जाना पड़े और ये जो समस्या है उसका निस्तारण वहीं हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि अपने श्रोताओं से, अपने नागरिकों से, कि वो इन समस्याओं से दूर रहें, किसी की संपत्ति पर अपना स्वामित्व ना बनाएं, किसी की संपत्ति पर आप कब्जा ना करें, अपनी संपत्ति आपकी है उस पर आप अपना कब्जा रख सकते हैं, हम कानून के अनुसार अपने काम करें, अगर नहीं करेंगे तो कानून हमें सजा देगा। इन सब बातों को ध्यान में आप रखें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस बातचीत से आपको कुछ लाभ होगा। वकील साहब, इस कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
0: थैंक यू।
2: कानूनी सलाह, कानूनी सलाह।
3: अवैध कब्जा संबंधी कानूनी जानकारी, इस विषय पर श्रोताओं ये पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता अभी आपने सुनी कार्यक्रम कानूनी सलाह के अंतर्गत। एडवोकेट बिजेंद्र सिंह से बातचीत कर रहे थे एस के नौटियाल। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजे हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, छाया गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस बेहद खूबसूरत नगमे से। इस नगमे को हमने लिया है फिल्म सरस्वती चंद्र से। आवाज है लता मंगेशकर की, गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में भी आपने सुना सरस्वती चंद्र फिल्म का ये प्यारा सा गीत। और आइए श्रोताओं, अब छाया गीत कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा उपहार फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: छाया गीत कार्यक्रम में श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मनचली का ये गीत, किशोर कुमार और लीना चंदावरकर की आवाज़ में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।
1: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी,
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा

किशोर कुमार और लीना चंदावरकर की आवाज़ में भी आपने सुना मनचली फिल्म का ये गीत। और श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब सुनिए जानकारी आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। पहले जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें श्रोताओं, आज शाम 7:32 पर कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे विविध कलाकारों की आवाज में नात। फिल्म संगीत का आनंद श्रोताओं आज आप ले सकते हैं रात 8:00 गीत संध्या में 8:30 पर एक ही फिल्म से के अंतर्गत, और आपके फेवरेट प्रोग्राम हेलो नजीबाबाद में रात 9:30 पर। रात 10:30 पर भी आप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेंगे रात के हम सफर। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में, और आइए अब आपको बता दें कल के प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी। कल यानी 4 जुलाई 2026 को रात 9:30 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती, और कल रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कल सुबह 9:15 पर कार्यक्रम जिले की हलचल आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले होगा। काव्यधारा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रातः 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे सुधीर कुमार शर्मा का काव्य पाठ। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत कल सवेरे 7:05 पर जानकारी का विषय रहेगा व्यायाम का महत्व। किसान श्रोताओं के लिए जानकारी रहेगी 7:10 पर कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत, जानकारी का विषय रहेगा धान की रोपाई और सावधानियां। सूरज के साथ साथ इस कार्यक्रम में कल प्रातः 7:31 पर जानकारी देंगे इस मानसून पौधारोपण अवश्य करें, संचारी नियंत्रण रोग अभियान, और श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु क्या क्या सावधानियां बरतें, इन विषयों पर जानकारी दी जाएगी। कल दोपहर 12:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिंदगी लाइव। इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। महिला जगत कार्यक्रम में कल दोपहर 1:15 पर क्रम रहेंगे सजना है मुझे, मेरी पाकशाला और आधी आबादी से। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव

314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर। शाम के 7:18 मिनट हो रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी लखनऊ से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की आधारशिला बनाए प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन। प्रदेश को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन बनाने पर दिया बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे में हुई अनियमितता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि न्यास से उम्मीद है कि वह व्यवस्था और संचालन की सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए।
4: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।
3: वहीं इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला को पुलिस ने आज रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर पुलिस उसे लेकर कौशलपुरी कॉलोनी स्थित योग आश्रम गई, जहां वह कुछ समय के लिए अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस की टीम ने आश्रम की तलाशी ली। भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने कल अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की पुलिस

0: कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रहित की भावना से काम करेगा तो विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला जरूर बनेगा।
1: संवेदनशील प्रशासन को प्रोत्साहित करना होगा, विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत की आधारशिला बने, ये जज्बा हम सबके लिए हमारे मन में हो कि पंच संकल्प जब हम लेकर के चलेंगे परिणाम आएंगे। याद रखना, विकसित भारत की आधारशिला यूपी तब बनेगा जब यूपी का हर गांव, यूपी का हर कस्बा, हर वार्ड आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित बनेगा, और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना हो।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आम महोत्सव उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के अन्नदाता किसानों को 800 प्रजातियों के आम प्रदर्शित करने का मंच प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के साथ ही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बने।
2: हमारा प्रयास होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन का केंद्र बनाए। इसके लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करना होगा, जहां पे इससे संबंधित रिसर्च भी हो, यहां पे आम की नई पौध को उत्पादन करने की तकनीक भी हमारे पास होनी चाहिए, ड्रोन और AI बेस्ड फार्मिंग को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता है।
0: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी को आज सुबह दिल का दौरा पड़ने पर लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। इससे पहले उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल लिया। उन्होंने श्री चौधरी का उपचार कर रहे डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET की दूसरे दिन की परीक्षा आज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा को पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की AI कैमरों से निगरानी की गई। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर 3 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के पहले दिन कल दोनों पालियों में पंजीकृत 8,07,636 परीक्षार्थियों में से 84.76% अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय UPTET परीक्षा के अंतिम दिन कल एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही प्रामाणिक माने। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: अटल पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में श्रेष्ठ कार्य करने वाले बैंकों, बैंक कर्मियों और बैंक मित्रों को आज लखनऊ में सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तर प्रदेश और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में PFRDA के महाप्रबंधक प्रवेश कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। उन्होंने बैंकों से इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रचार प्रसार कर इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया।
4: यूपी का APY स्कीम में काफी बड़ा योगदान रहा है। अभी तक यूपी में 1,47,00,000 लोग जुड़ चुके हैं। अगर हम पूरे देश वर्ष की बात करें तो 9,25,00,000 से ज्यादा लोग इस APY स्कीम में जुड़ सके हैं। तो इस परसेंटेज से आप देख सकते हैं कि यूपी का काफी बड़ा योगदान है। क्योंकि एक यूपी बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, तो यहाँ पर कवरेज काफी अच्छी रहती है। और इस साल हम आशा कर रहे हैं कि जितने भी कीर्तिमान अभी तक हमने यूपी में स्थापित किए हैं उस सबको तोड़ते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में जोड़ पाएंगे।
0: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने

आधार ऐप के जरिए आधार में मुफ्त ईमेल अपडेट की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि आधार को ईमेल से जोड़ने पर जब भी आधार प्रमाणीकरण की कोई रिक्वेस्ट पूरी होती है तो रियल टाइम ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस पहल से पारदर्शिता बढ़ती है और सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर मिलता है। एटा के बागवाला थाना क्षेत्र में आज तड़के एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 लोग घायल हो गए। हादसा कीलर मऊ गांव के पास उस समय हुआ जब सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के बाहर खड़े यात्री इसकी चपेट में आ गए। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मॉनसून सामान्य रहा। प्रदेश के कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल राज्य के पूर्वी जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और कहीं कहीं बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, दोषियों को मिलना चाहिए कठोर दंड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अकादमी के नवीन परिसर का किया लोकार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश को विकसित भारत की आधारशिला बनाएं प्रशासनिक अधिकारी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में किया आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन। प्रदेश को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मैंगो वैल्यू चेन बनाने पर दिया बल। और बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश। मौसम विभाग ने कल हल्की वर्षा और बिजली गिरने का येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:32 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं विविध कलाकारों की आवाज़ में नाते पाक। तो आइए श्रोताओं, इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस नात से।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं विविध कलाकारों की आवाज में नात, और लीजिए पेश है एक और नाते पाक।

श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में एक और नात हम आपको सुनवा रहे हैं।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुन रहे हैं नात। और लीजिए, इस कार्यक्रम की आखिरी नात हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में।

श्रोताओं, इसी नाते पाक के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। श्रोताओं, गीत संध्या कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म के इस गीत के साथ। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

चोरी चोरी चुपके चुपके। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। और आइए, इस कार्यक्रम का अब अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म चाहत से। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर की। गीत लिखा है निदा फाजली ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। श्रोताओं, आइए अब इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं हाँ मैंने भी प्यार किया है फिल्म का ये प्यारा सा नगमा उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है

0: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
0: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: कार्यक्रम गीत संध्या में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं करीब फिल्म का ये गीत, कुमार सानू और संजीवनी की आवाज में। गीत लिखा है राहत इंदौरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना करीब फिल्म का ये गीत, और आइए कार्यक्रम में अब आखिरी गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म दिल है तुम्हारा से। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम की। गीत लिखा है समीर ने और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने।

दिल है तुम्हारा। श्रोताओं, इसी फिल्म के इस गीत के साथ अब ये कार्यक्रम गीत संध्या यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात के 8:30 हुए हैं और लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का ही एक और कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं वर्ष 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है के कुछ गीत। श्रोताओं, ये फिल्म न केवल अपने गीतों के लिए ही जानी जाती है बल्कि एक दमदार कहानी के लिए भी, और ख़ास तौर से इसलिए भी जानी जाती है कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल ने पहली बार ये अभिनय मुख्य रोल के लिए किया था, यानी अपने अभिनय के सफर की ये दोनों की पहली फिल्म थी। और भी इस फिल्म के लिए हम और बात करेंगे, लेकिन यहाँ सुन लेते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

कहो ना प्यार है, इस फिल्म के गीत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत। श्रोताओं, ये इस फिल्म के गीत लिखे थे इब्राहिम अश्क, सावन कुमार और विजय अकेला ने, और इस फिल्म के गीतों को आवाज़ दी थी उदित नारायण, अलका याग्निक, लक्की अली, आशा भोंसले, कुमार सानू और बाबुल सुप्रियो ने। और श्रोताओं, इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ऋतिक रोशन, अमीषा पटेल, अनुपम खेर, दिलीप ताहिल, मोहनीश बहल, आशीष विद्यार्थी, सतीश शाह और फरीदा जलाल ने। श्रोताओं, और भी बातें करेंगे इस फिल्म के विषय में, फिलहाल यहां सुन लेते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत लक्की अली और रम्या की आवाजों में।

श्रोताओं, ये गीत जो भी आपने सुना लकी अली की आवाज़ में और आपके साथ रम्या, आपको बता दें कि लकी अली साहब ने इस फिल्म के गीत के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता था वर्ष 2001 में। और इतना ही नहीं श्रोताओं, इस फिल्म ने और भी कई इनाम जीते। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार राकेश रोशन साहब को मिला, फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राकेश रोशन को मिला, और फिल्म फेयर पुरस्कार पुरुष प्रथम अभिनय पुरस्कार ऋतिक रोशन को मिला था। तो इस तरह से कई शानदार इनाम वर्ष 2001 में इस फिल्म ने जीते थे। और आइए इस फिल्म का एक और गीत आपको सुनवाते हैं, और ये है इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। रात के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। अरब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: इंडिया पोजीशन ऑन दी इंडस वाटर्स ट्रीटी।
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance।
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
5: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी

0: पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7:00 घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 2-1 से शिकस्त दी। स्पेन ने अमेरिका के लॉस एंजलिस स्टेडियम में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हरा दिया। गुजरात एटीएस ने कलदम दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये सभी पाकिस्तानी हैंडलर्स अब्दुल्ला और मोहम्मद उमर के साथ राब्ते में थे। ये अफराद दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के लिटरेचर का गुजराती जबान में तर्जुमा करने और उसके नजरिए को फैलाने का काम कर रहे थे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। हुकूमत ने कहा है कि सिंध हावी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर गामजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। दिफाई साजो सामान की हौसलियाबी की कौंसिल ने जंगी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए मालियत की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दे दी है। और फीफा आलमी कप में आज रात अमेरिका के आर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला राउंड ऑफ 32 के एक मैच में मिस्र से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 9:30 हुए हैं। अब पेश है आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो नजीबाबाद। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी पसंद के कुछ गीत और आपसे करते हैं बात और आपके दिल की बात हम पहुंचाते हैं अपने और श्रोताओं तक। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद।

0: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त जसवंत सिंह। श्रोताओं जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, कॉल कीजिए हमें 9457078288 पर और सुनिए अपनी पसंद का गीत। जी हाँ, नंबर एक बार फिर आपको बता दें 9457078288। इस नंबर पर आप जल्दी से कॉल कीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। और देखते हैं एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कौन है वो श्रोता, बात कर लेते हैं उनसे भी। हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर जी।
0: सचिन जी,
1: मेरी पहली सतीश।
0: अच्छा सतीश जी, फर्रुखाबाद से आप बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: आज मेरा बहुत खुद नसीब हूँ और आज मेरी पहली कॉल पे पहली सर से बात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अरे हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपसे हमारी बात हो रही है।
1: नजीबाबाद में तो ट्राई मारता हूँ लेकिन बाई चांस काबत नहीं है, दूर मिलट लग जाता तो लग जाएगी कॉल। लेकिन नजीबाबाद वो चीज लगा वो कैसे काबत नहीं, लोहे से ना चबानो और कॉल लगाना बराबर है नजीबाबाद में।
0: अरे अरे अरे, देखिए दिल में अगर चाहत है तो यकीनन मंजिल मिलती ही
1: सर
0: है।
1: जी
0: आप
1: पूरे
0: की चाहत
1: पूरे
0: रंग
1: दिल
0: लाई
1: से
0: है।
1: मैंने मेरी बात सुनो तो मैंने एकदम लगाया, पूरे दिल से लगाई कॉल लेकिन वो कावत नहीं। मेहनत करने वाले की हार नहीं होती,
0: जी
1: लेकिन मैंने
0: कोशिश
1: इतनी
0: करने
1: मेहनत
0: वालों की
1: करी
0: हार नहीं
1: लेकिन
0: होती।
1: कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करी लेकिन भी हार मानी गई, पहले घंटी गई लेकिन जीत नहीं पाई थी, तब से
0: चलिए
1: हार
0: आज
1: मानी गई।
0: आज आपकी कॉल लग गई है तो कौन सा गाना सतीश जी आप सुनेंगे?
1: और आप मैं हालचाल बताइए, आपके इधर मौसम मौसम कैसा, बारिश कैसी हो रही है जी आबाद में,
0: मौसम
1: ये
0: तो बहुत अच्छा
1: सब।
0: इधर है, बारिश अभी बहुत अच्छी वाली नहीं हुई है, लेकिन मौसम 2 दिन से हम देख रहे हैं कि बादलों का जो एक आवरण है वो हो गया है, सूरज की धूप को थोड़ा सा कम कर दिया गया है। कुल मिलाकर मौसम सुहाना हो गया है, कहीं कहीं पर हल्की हल्की बारिश की बूंदें आ रही हैं। आपकी तरफ कैसा मौसम है?
1: अरे सर जी मेरे इधर जैसे आपके इधर मौसम तैसे मेरे इधर, मेरे इधर तो दो तीन दिन से बात बार बारिश हुई है, कुछ
0: अच्छा
1: राहत मिली है, गर्मी से राहत मिली है और कुछ फसलों के लिए राहत मिल जाएगी क्योंकि अभी तो धान और धान की रुपाई होने हो रही है तो खेतों में धान कर रहे हैं तो उनकी रुपाई हो रही है तो

0: रात मिल जाएगी और फसलें लग जाएंगी, क्यों बारिश के मौसम में तो
1: जी
0: पानी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पहले नहीं तो वर्षा नहीं होती, तो बस सिंचाई उससे करते तो बस समर से लाइट वाली समझ से करना पड़ता है। लेकिन क्या
1: जी
0: बारिश
1: जी
0: का
1: जी
0: पानी, और उसका पानी भी खेत में जो बारिश का पानी होता है उसमें खेत में ज्यादा हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फसल भी अच्छी होती
1: ठीक।
0: है बारिश के।
1: अच्छा
0: आज
1: सतीश जी, आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आज इस कार्यक्रम में?
0: तेरे नाम का सुनवा दीजिए, कोई सॉन्ग सुनवा दीजिए बढ़िया सा
1: अच्छा
0: लगता तो।
1: देखिए सब बढ़िया ही हैं, और चूंकि आपकी पसंद बहुत अच्छी है तो बस हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।
0: और दोस्तों का नाम लेना चाहता
1: हाँ
0: हूँ,
1: जल्दी जल्दी सतीश जी।
0: पहले सबसे पहले आपके लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ, अनु कुमार भट्टाचार्य जी हैंगे, दिव्यांशु हैं, और जितने लोकेंद्र गुर्जर रहेंगे दिया मध्य प्रदेश से, और जितने तमाम विजय पांडे जी हैंगे, और इतने तमाम सुनने वाले सबको वहाँ डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: लीजिए हम आपको सुनवा रहे हैं तेरे नाम फिल्म का ये गीत।
0: धन्यवाद सर जी।

0: तेरे नाम फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर का लिखा यह गीत था और हिमेश रेशमिया ने इसमें संगीत दिया था। आकाशवाणी से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। आप जल्दी से जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कॉल कीजिए हमें 9457078288 पर। देखिए एक और श्रोता अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो नजीबाबाद,
1: हेलो नजीब आबाद सर जी को राधे राधे।
0: राधे राधे, कौन सा बात कर रहे हैं?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश।
0: अरे केसरी जी, भोपाल से बात कर रहे हैं।
1: हाँ जी सर, हाँ जी,
0: स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: तो
1: सर, थैंक
0: वहाँ
1: यू।
0: मध्य प्रदेश में अब इस समय कैसा सुनाई देता है आकाशवाणी नजीबाबाद?
1: बहुत बढ़िया सुनाई देता सर, ये मोबाइल ऐप पर सुनते न्यूज होने IRF की मदद से।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी फ्रिक्वेंसी वहाँ पर पहुँचती है। उधर मौसम कैसा है भोपाल में?
1: मौसम सर बढ़िया है, बारिश हो रही है
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात
1: और
0: है।
1: हाँ सर, लगभग 2-3 रोजों से बारिश हो रही है, सुबह शाम हो जाती है, कभी दिन में भी हो जाती है, तो ठंडा मौसम है बिल्कुल।
0: जी, अच्छा केसरी जी, क्या करते हैं आप?
1: सर मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटर, और साथ में खेती भी है सर।
0: बहुत अच्छी बात है, ये तो आपके अंदर एक कलाकार भी है। तो आपकी कोई ऐसी कृति, ऐसी कोई पिक्चर जो किसी एग्जीबिशन में गई हो, याद है आपको कोई ऐसा वाकया?
1: ऐसा तो वाक्य सर याद तो है, लेकिन ज्यादा मतलब उसमें तो नहीं गई, लेकिन फिर भी हाँ ऐसी मैंने 2-4 चित्र ऐसे बनाए हैं जिनको देखकर शिक्षकों ने और एक जज साहब थे उन्होंने भी तारीफ की थी, तो मुझे बहुत अच्छा
0: जी,
1: लगा।
0: बहुत अच्छी बात है। तो किस तरह की तस्वीरें आप बनाते हैं?
1: ये सर जैसे अपनी गांधी जी हुए और तिरंगा हुआ, गणपति जी की इमेज हुई,
0: अच्छा अच्छा
1: और
0: चलिए,
1: नदी नदी पेड़ पहाड़ प्रकृति
0: प्राकृतिक दृश्य
1: प्रकृति
0: भी
1: के।
0: आप जी हैं उकेरते हैं, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी इस कला के माध्यम से और आगे बढ़िए और किसी प्रतियोगिता में जाइए, राष्ट्र स्तर तक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आप पहुंचिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। तो केशरी
1: बहुत
0: जी,
1: बहुत
0: आज कौन सा
1: धन्यवाद
0: गीत
1: सर।
0: आप सुनेंगे कार्यक्रम में?
1: यादगार मूवी से है सर, एक गाना पुरानी मूवी है, उसमें जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे यहाँ चल तो बिछाने।
0: अच्छा, बड़ा लोकप्रिय गीत है लता मंगेशकर की आवाज का।
1: हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है मुझे उनका।
0: जी चलिए, हम आपको सुनाएंगे यादगार फिल्म का ये गीत। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
1: बस सर यही कहना चाहूंगा कि सभी मिलजुल कर रहे, भाईचारा बनाए रखें और परोपकार की भावना जीवन में सदैव जिंदा रखें।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परोपकार जिसके हृदय में है वो निश्चित ही आगे
1: हाँ
0: बढ़ता है।
1: जी
0: तो
1: जी जी कहते हैं सर, और सुमत सुमत भी बहुत अच्छी चीज होती, कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति
0: विपत्ति
1: निवारण।
0: निदान, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब हम आपको सुनवा रहे हैं यादगार फिल्म का
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल
0: प्यारा
1: सर,
0: सा गीत।
1: आप भी सुनेंगे, दो मित्र और हैं हमारे, मांगीलाल चंदेल जी, गजराज लोधी जी, भगवान सिंह परमार जी और रामबाबू शर्मा जी, तीनों भी सुन रही हैं और आप सुनेंगे, और सभी के लिए रहेगा।
0: जी, हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ का ये गीत।

0: हेलो, नजीबाबाद कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और देखते हैं अब हमारे साथ कौन श्रोता जुड़े हुए हैं। हेलो नजीबाबाद
1: हेलो नजीबाद
0: जी, स्वागत है आपका। कौन बात कर रहे हैं?
1: जी। सर, मैं जिला मुरादाबाद ग्राम मिलक भूजपुरा सा बड़ी मस्जिद के पास से राजा हुसैनउल्लाह सर जी
0: मुरादाबाद से रजा
1: हुसैन
0: रजा हुसैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और
1: जी।
0: कैसे
1: सर
0: हैं आप?
1: जी, हम ठीक है सर। आप कैसे हैं? आकाशवाणी नजीबाबाद में सभी लोग कैसे हैं?
0: सब आनंद में हैं सब। आप जैसे जब प्रिय श्रोता साथी और उनकी दुआएं साथ में होंगी तो यकीनन निश्चित रूप से अच्छे ही होंगे। क्या करते
1: जी
0: हैं
1: सर,
0: आप
1: हमारा
0: रजा हुसैन जी?
1: हम खेती किसानी करते हैं, बिजली की लाइनें बनाते हैं सर जी।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बिजली की लाइनें बनाते हैं, बिछाते हैं और लोगों के
1: जी
0: घर घर तक
1: बिल्कुल
0: रोशनी पहुंचाते हैं।
1: जी, हमने तुम्हारे आकाशवाणी में रोशनी पूछा रखी है सर जी।
0: अरे आपकी यादों की, आपकी बातों की जो रोशनी है, इससे बेहतर और क्या हो सकता है।
1: जी, सन 2005 में पहुंचाई थी सर जी आपके वो आकाशवाणी हमने रोशनी।
0: अच्छा,
1: जी
0: चलिए
1: बिल्कुल
0: आज फिर आपकी मधुर वाणी यहाँ पहुंच गई है। तो
1: जी,
0: कार्यक्रम से जुड़ के कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है। काफी समय के बाद मेरी कॉल लगी। मैं सोचती मेरी कॉल लगती रहती है क्योंकि मुझे कम से कम 20-25 साल हो गया आकाशवाणी नजर सुनते हुए और

0: अरे आकाशवाणी सुनते हुए मैं बहुत पुराने में सोता हूँ, रेडियो सुनता हूँ बहुत समय से।
1: जी, तो क्या मतलब मोबाइल में रेडियो सुनते हैं या रेडियो ट्रांजिस्टर आपने लिया हुआ है?
0: मेरे पास तो पहले रेडियो था, फिर मैं रेडियो अब जो है जब खराब हो गए तो उसको इस्तेमाल वाला नहीं, मरा जब बड़े फोन आ गए तो बड़े फोन में सुनते हैं सर जी।
1: जी। और परिवार में कौन कौन है आपके?
0: मम्मी हैं, पापा हैं, बहन हैं, भाई, काफी बड़ा भरा पूरा परिवार है हमारा सर जी।
1: अच्छा, तो अभी आपकी जीवन संगनी नहीं मिली है?
0: नहीं, मिल चुकी है सर जी।
1: अच्छा, उनका जिक्र आपने नहीं किया।
0: उनका जिक्र नहीं कहा।
1: चलिए, तो कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस कार्यक्रम में?
0: तो फिल्म रहेगी राजा, और गाने के बोल रहे हैं किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, इस तरह से बोला है। कुछ
1: जी
0: नाम बोलें सर जी?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: मेरा भाई शाहिद हुसैन, छोटा भाई आदिल हुसैन, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, मकसूद हुसैन है, और नजीबा हैं, ये बिश्नोई दरबार हमारे दोस्त हैं, वो मोहल्ला लोहाई सराय से नगीना से है, अस्सी के अमन हाजी जी हमारे ठेकेदार थे, वो भी उनसे बिजली का काम लेते थे हम सर जी।
1: अच्छा, तो लीजिए आप
0: जी,
1: सभी के दोस्तों के।
0: और
1: हाँ
0: दोस्त एक दोस्त और है कस्बा फाट में, सितारा हनी खान।
1: जी, आप सब दोस्तों के लिए, आप सबके परिवार वालों के लिए और आप सबके परिचितों के लिए हम आपको सुनवा रहे हैं राजा फिल्म का ये प्यारा सा नगमा, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में।
0: थैंक यू सर।

0: राजा फिल्म का गीत अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। श्रोताओं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9457078288। ये नंबर डायल कीजिए और लाइव जुड़ जाइए हमारे साथ। सुनिए अपनी पसंद का कोई भी नगमा। देखते हैं कौन हमारे साथ श्रोता जुड़े हुए हैं। हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो, हेलो नजीबाबाद।
0: हाँ जी, स्वागत है आपका। थोड़ा तेज बोलिए।
1: जी जी, शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि, शुभ संध्या।
1: जी जी,
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: दुनिया के रैन बसेरे में, दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन रहना है, इसलिए सबके दिलों को बस यही जीवन का कहना।
0: अरे वाह।
1: तो मैं अनूप कुमार से बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, भूमि आसाम से तालुका।
0: आसाम से आप हमारे साथ जुड़े हैं अनूप कुमार जी, आपका बहुत बहुत
1: जी,
0: स्वागत है कार्यक्रम में।
1: जी, मतलब क्या होता है, बाकी इससे फोन मिलाना और फोन लगना दोनों अलग बात।
0: जी
1: मिलाते हैं हर दम, कभी नहीं लगता। जब लगता है तो दिल के भीतर बनाते रहते, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़ा और थोड़ा सा तेज बोल लीजिएगा। आवाज़ वैसे हम तक आ रही है लेकिन हमें लग रहा है हमारे
1: जी
0: और
1: जी
0: श्रोताओं तक वो उतनी स्पष्ट नहीं जा रही होगी।
1: जी जी ऐसे होते हैं जब फोन लगता है ना
0: जी
1: तो क्या होता है, दिल के गिटार के तार छन छनाते रहे, है
0: बिल्कुल। और
1: ना?
0: जैसे ही आपकी कॉल हमारे पास आती है, हमारे साथ श्रोता जुड़ते हैं, तो हमारे भी दिल के तारों में एक झनकार पैदा होती है और बहुत अच्छा लगता है, और वो झनकार
1: सही बात
0: हमारे
1: है।
0: हमारे
1: और
0: मन
1: क्या हुआ,
0: मस्तिष्क पर छा
1: मैं
0: जाती
1: जी,
0: है।
1: और आकाशवाणी नजीबाबाद जो केंद्र होते हैं और दूसरी जो केंद्र होते हैं आकाशवाणी लखनऊ,
0: जी
1: उसमें फोन लगाना क्या होता है, मतलब ऐसा होता है बात के ही ये होता है, क्या बोले, लोहे के चाने चिबाने बराबर।
0: लेकिन
1: कभी
0: आज
1: कभी
0: आज तो
1: मिला
0: आपने लोहे के चने चबा लिए हैं अनूप कुमार जी।
1: एकदम सही बात है, सही बात है। क्योंकि बहुत ट्राई कर रहा था, बहुत बहुत ट्राई कर रहा था, जब निराश हो गया था तो मैं प्रमिस करा था
0: जी
1: मैंने,
0: जी
1: जब आज नहीं लगेगा क्या होता है, मतलब मैं फोन कभी नहीं करूंगा,
0: लेकिन
1: तो माहौल तो बदल गया, फोन
0: बहुत
1: लग
0: अच्छा,
1: गया
0: अब हो
1: और
0: गया,
1: अब
0: आपकी कॉल
1: बात
0: लग गई है। अब आप
1: हो
0: भविष्य में
1: रहा
0: और प्रयास करते रहिएगा।
1: जी एकदम सही बात है।
0: जी
1: और क्या बोले, बहुत अच्छा लगता है फोन इन कार्यक्रम, जब आया तो एकदम कोचल ला गया सारे जीवन।
0: जी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि देश के उस भाग से, उस कोने से आप बोल रहे
1: जी,
0: हैं
1: और
0: जहां हम लोगों की
1: ऐसे
0: पहुंच बहुत कम है।
1: में सर
0: जी
1: जी ये बात कहूँ, मतलब ऐसे में मैं बंगाली हूँ,
0: जी
1: बांग्ला एक कथा बोली, और बांग्ला रसगुल्ला भालोबासी,
0: बांग्ला का
1: बांग्ला बांग्ला
0: रसगुल्ला जो आपने याद दिला दिया है, तो निश्चित रूप से अब हमें उस रसगुल्ले की याद आ गई है कि जैसे हम जाएं और बस अभी खा लें, है ना?
1: जी, ये तो
0: तो
1: हमारे
0: अनूप
1: धरोहर है।
0: कुमार जी, और उधर मौसम कैसा है?
1: अरे मौसम तो इतना गर्मी पड़ गया, इतना गर्मी, मानो क्या होता है, कल तो बारिश हुआ, लेकिन बारिश हुआ एक तरफ और दूसरी तरफ गर्म की जो बौछार है, गर्म की जो क्या बोले,
0: लू चल गई, गर्म हवाएं।
1: कड़कदार गर्म है। अभी तो गर्मी में बैठ के मैं फोन कर रहा हूँ, लेकिन आज लग
0: अच्छा
1: गया गर्मी तो उतर गया
0: चलिए,
1: सब।
0: अब आपकी जो है गर्मी वो दूर हो गई है। ये जो
1: जी जी
0: मौसम में
1: चलिए,
0: अब आपने अपनी भाषा से, अपनी बातों से, अपने प्रेम से जो ठंडक आपने लाए हैं वो बहुत
1: गुप्ता जी
0: अच्छा।
1: आपका नाम क्या है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं।
0: नहीं, आपकी बात जसवंत सिंह से हो रही है। और
1: जसवंत सिंह जी, जी
0: जी
1: जी
0: जी
1: तो
0: जी
1: जसवंत सिंह जी, आज मेरा भाग्य इतना सुप्रसन्न है, आपसे मेरा बातचीत हो रहा है,
0: जी हमें
1: और
0: भी
1: आज
0: बहुत
1: इस
0: अच्छा लग रहा है।
1: प्लेटफॉर्म, जी, इस
0: अनूप कुमार जी,
1: प्लेटफॉर्म में गाने का लुत्फ,
0: आप कौन सा गीत सुनेंगे ऐसे अब इस कार्यक्रम में?
1: गाने का बोल ऐसे है, होते होते होते होते प्यार हो गया, एक किस चेहरे से मुझे प्यार हो गया, ऐसे करके गाने हैं
0: जी,
1: और कुछ
0: माशू का
1: दुखद है
0: फिल्म का ये
1: क्या
0: गीत है, लेकिन हमें लग रहा है कि
1: जी
0: आपको
1: जी
0: वास्तव में किसी से प्यार हो गया है।
1: नहीं जी, एकदम सही सही पकड़े हैं आप।
0: चलिए
1: आपका जो
0: हम,
1: हसबनी
0: जी,
1: नसीबाबाद जो है वो तो परम प्रिय है हमारे हृदय के, एकदम साक्षात हृदय के नजदीक है वो तो।
0: बिल्कुल, आप भी हमारे
1: जी
0: दिल के बहुत करीब हैं अनूप कुमार जी। तो
1: जी
0: लीजिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत हम आपको सुना रहे
1: जी
0: हैं,
1: जी और
0: माशू
1: कुछ
0: का फिल्म
1: दोस्तों को
0: का।
1: मैं
0: जी
1: याद करता हूँ
0: जी
1: सर,
0: हाँ, जल्दी।
1: जसवंत जी कुछ दोस्तों को मेरा मैं याद करता हूँ।
0: हाँ जी,
1: पहले है हमारे बहुत अच्छे सिस्टर है मध्य प्रदेश बिलोंग करता है, बबीता, बबीता बाघेल जी, और त्रिपुरा से हमारे बहुत अच्छे दोस्त है उसका नाम अविनाश जी है, और प्रेम जी चक्रवर्ती जी है, बसंती सूर्यवंशी जी है सतीश भाई के लिए, और है साक्षी से पुरुषोत्तम कुमार जी के लिए, और मध्य प्रदेश से हमारे बहुत अच्छे दोस्त है लोकेंद्र वर्मा जी के लिए।
0: जी
1: तो
0: जी जी तो
1: चलिए बातचीत को यही पे विराम देता हूँ। बहरहाल आप अच्छे रहिए जसवंत जी, बहुत अच्छा लगा, मेरा भाग्य इतना सुप्रसन्न आपसे मेरा बातचीत।
0: बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी थैंक यू।

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जल्दी से कॉल कीजिए 9457078288 पर। देखते हैं अब कौन से श्रोता हैं हमारे साथ। हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद
0: जी, स्वागत है आपका, कौन बात कर रहे हैं?
1: थैंक यू सर। जी, शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी बोल रहा हूँ।
0: जिला बिजनौर की भी एक कॉल हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत अच्छा लगा। चूंकि आपसे पहले हमारी बात आसाम के एक श्रोता से हो रही थी और अब हमारे ही जिले के एक श्रोता से अब हमारी बात हो रही है, तो राशिद अली जी हैं?
1: जी, राशिद अंसारी।
0: राशिद अंसारी जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया, आप माध्यमिक शिक्षा में बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। कौन से विषय के आप शिक्षक हैं?
1: मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है।
0: इंग्लिश, बहुत अच्छी बात है। तो कई बार हम देखते हैं कि जो हिंदी भाषी परिवार के लोग हैं या हिंदी मीडियम के लोग हैं, बच्चे हैं, तो उन्हें इंग्लिश में कुछ परेशानियां आती हैं, तो उन परेशानियों को कैसे दूर करते हैं आप?
1: उन परेशानियों को मैं ऐसे दूर करते हैं कि मेरा मेथड ही ऐसा है पढ़ाने का।
0: अच्छा,
1: तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। पहले जो चैप्टर होता है मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ।
0: अच्छा, तो फिर तो आपकी क्लास में बच्चे बहुत रुचि से पढ़ते होंगे।
1: यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को, किसी भी व्यक्ति को काम में जब इंटरेस्ट होगा तो काम जो है लगन से करेगा।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अभी तो कॉलेजेस खुल गए हैं।

0: इंटर कॉलेज भी खुल गए हैं,
1: जी
0: बच्चे आने लगे हैं।
1: हाँ, 1 जुलाई से आने लगे हैं। 1 जुलाई में थोड़ा कम थे कि मौसम बारिश का था, लेकिन बच्चे आने शुरू हो गए हैं।
0: जी, तो क्या संदेश अपने और सुनने वाले विद्यार्थियों को देंगे कि वो किस तरह से स्कूल में अपनी प्रेजेंट को बढ़ाएं, निरंतर कॉलेज पहुंचे, क्लास में पहुंचे?
1: देखो, मैं गार्जियन से कहना चाहता हूँ कि वो जो अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजे
0: जी
1: वर्किंग डे में, क्योंकि जब बच्चा जाता है तो कुछ ना कुछ सीखेगा, और
0: जी
1: जब वो जाएगा ही नहीं तो क्या सीखेगा।
0: हाँ जी, बिल्कुल सही बात है।
1: और दूसरी, सर, मैं अपने श्रोताओं को मैसेज देना चाहता हूँ कि हिम्मत ना हारे, लग रहे हैं जैसे हमारी एक बार कॉल कटी और फिर इसी बार इसी गाने पर लग गई एकदम।
0: बिल्कुल, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपकी कॉल लग गई है। देखिए, तो कौन सा गाना सुनेंगे आप राशिद जी?
1: आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं, गाना तो हम आपकी पसंद का सुनेंगे, और मैं समझता हूँ कि कुछ श्रोताओं को पसंद आएगा, और कुछ श्रोताओं के नाम लेना चाहता हूँ आपकी परमिशन हो तो।
0: जी, बिल्कुल।
1: आचार्य सत्यवीर सिंह जी, भाई निजामुद्दीन भाई, वकार फरीदी, और साथ में है महबूब दुकानदार, मुकेश कश्यप, आसिफ चौधरी, रजा हुसैन, और नेहटोर से है गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपने ज़्यादातर शिक्षक साथियों के नाम भी लिए हैं। तो राशिद जी, आप सबके दोस्तों के पसंद पर और आपकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं। कौन सा गाना सुनना चाहा आपने?
1: तुझ संग प्रीत लगाए संग सजना, और मदन गिरी जी भी हैं हमारे साथ में।
0: अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो कामचोर फिल्म का एक गीत है हम आपको सुनवा रहे हैं, आप सबकी पसंद पर।
1: थैंक यू भाई।

0: कामचोर फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। और श्रोताओं, आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का कोई गीत तो जल्दी से डायल कीजिएगा 01341-230-105 यानी 01341-230-105, या एक और नंबर है हमारा, उस पर भी कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर है 9457078288। तो जल्दी से आप भी जुड़िए और देखते हैं फिलहाल हमारे साथ कौन जुड़े हुए हैं। हेलो नजीब आबाद।
1: हेलो नजीब आबाद सर जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं
0: जी, वेरी गुड इवनिंग, बहुत अच्छे हैं हम। कौन बात कर रहे हैं आप?
1: जी? सर मैं पूनम बोल रही हूँ कानपुर से।
0: पूनम जी, कानपुर से आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और कानपुर में भी नजीबाबाद कैसा सुनाई देता है अपना रेडियो स्टेशन?
1: सर बहुत अच्छा सुनाई देता है, मैं तो रेडियो पर सुनती हूँ और मोबाइल ऐप पर भी सुनती हूँ,
0: अच्छा, अभी
1: तो
0: भी
1: दोनों
0: आपके
1: ही।
0: पास रेडियो है?
1: जी हाँ सर
0: कौन कौन से
1: बिल्कुल।
0: कार्यक्रम आप सुनते हैं नजीबाबाद के?
1: सर मुझे हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम ज्यादा मैं सुनती हूँ, इसके अलावा जो युवाओं के लिए कार्यक्रम आता है युवाणी,
0: जी
1: उसमें भी कभी कभी मेरी कोशिश रहती है कार्यक्रम में जुड़ने का, तो उसमें भी मंडे को जो कार्यक्रम आता है फोन प्रोग्राम, उसमें भी
0: जी
1: मैं जुड़ती हूँ, और साथ साथ महिलाओं के लिए कार्यक्रम जो लेकर आते हैं आप, वो भी बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए पूनम जी, आज आप हेलो नजीबाबाद में हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि कानपुर के श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। क्या करती हैं
1: जी
0: आप?
1: सर मैं भी फोनिंग प्रोग्राम करती हूँ आप
0: अच्छा,
1: ही की तरह।
0: अरे
1: जी
0: बहुत अच्छी बात, कहाँ से आप जुड़ी हैं?
1: सर मैं बस प्राइवेट रेडियो चैनल है, वहां से मैं प्रोग्राम देती हूँ, रेडियो वाले पर प्रोग्राम करती
0: जी
1: हूँ।
0: जी जी चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे आप आकाशवाणी नजीबाबाद से?
1: सर मुझे गीत सुनाइएगा जिनका नाम है लाल दुपट्टा मलमल का, और गीत के बोल हैं तुमने रख तो ली तस्वीर हमारी, और सर जानना चाह रहे हैं मौसम वहां का कैसा है जीवा
0: मौसम तो
1: वाले।
0: यहाँ का बहुत अच्छा है, बड़ा सुहाना मौसम हो गया है, जैसे बादलों ने एक चादर तान
1: हाँ
0: रखी है, बस ज़रूरत है कि अब वहाँ से बूंदें जरा बरस जाएं, पानी बरस जाए, तो किसानों को, धरती को, पक्षियों को, प्रकृति को बहुत राहत मिलेगी। आपकी तरफ कैसा
1: बिल्कुल।
0: मौसम
1: तो
0: है?
1: सर हम बताएंगे कि हमारे यहाँ का जो है 2 दिन से बारिश हो रही है, सुबह
0: जी
1: में आज भी बारिश हुई थी, अभी कल भी बारिश हुई थी, तो थोड़ा सा मौसम सुहाना सा हो गया है, जैसे कि आपने कहा है कि बादलों ने एक नया राग छेड़ा है बारिश का
0: जी
1: और उस वजह से गर्मी से भी राहत मिली है, और बारिश अपना काम कर रही है, बादल अपना काम कर रहे हैं, बरसा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि सर आपकी नदियों वादे में भी बारिश जल्द हो जाएगी।
0: चलिए, जल्दी अब आपकी दुआओं का प्रभाव होगा और यहाँ भी बारिश होगी। फिलहाल हम आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं।
1: जी सर आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लग रही है,
0: बहुत
1: आपको बहुत बहुत
0: धन्यवाद, बहुत
1: शुक्रिया
0: धन्यवाद आपका,
1: जी,
0: आपका कॉल
1: बहुत
0: करने के लिए धन्यवाद।
1: बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। श्रोताओं, ये कार्यक्रम ऐसा है जिसके माध्यम से हम देश के अलग अलग कोने से जुड़ते हैं, अपने श्रोताओं के साथ बातें करते हैं उनके साथ। आप भी जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। मोबाइल नंबर 9457078288। देखते हैं, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो नजीबाबाद।
1: हाँ, हेलो नजीबाबाद
0: जी, स्वागत है आपका। कौन बात कर रहे हैं?
1: शुक्रिया सर, मैं बढ़ापुर बिजनौर से एम ताहिर बोल रहा हूँ सर।
0: जी अच्छा, बढ़ापुर जनपद बिजनौर से ताहिर साहब।
1: यस सर। जी सर।
0: जी जी जी, तो आज आपकी कॉल लगी है, कैसा महसूस कर रहे हैं?
1: बहुत अच्छा लग रहा है सर क्योंकि बहुत पुराना नाता है आप लोगों से।
0: जी निश्चित, आपके तो मैसेज आते रहते हैं हमारे यहाँ फरमाइशी कार्यक्रमों में, पत्र भी आपके आते हैं।
1: जी सर, मैसेज द्वारा भी आते हैं और पत्र भी आते हैं, और आपका श्रोता जब से हूँ, जबकि सड़ाना सर थे कवि।
0: अच्छा अच्छा बिल्कुल।
1: हाँ, गुप्ता जी, जयरंधर जी।
0: अरे वाह, बहुत पुराने आप हमारे श्रोता हैं।
1: जी सर,
0: बहुत अच्छा लगा हमें भी कि हम इतने पुराने श्रोता से जुड़ गए हैं।
1: कुछ दिनों से सर किसी वजह से बस सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन रेडियो पे अब मोबाइल पे जो एप्लीकेशन आई है उसके द्वारा जुड़े हैं बस।
0: बिल्कुल,
1: जुड़े ही रहेंगे।

0: हाँ, तो
1: बहुत अच्छा चल रहा है पूरा।
0: कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, ये किशोर कुमार की आवाज है, किशोर कुमार पे ये गीत पिक्चराइजेशन भी हुआ हुआ है
0: जी, बहुत अच्छा ये गीत है, और इस गीत को हालांकि
1: मेरे
0: कुछ
1: में।
0: जी, लेटेस्ट म्यूजिक के साथ भी लोगों ने गाया बजाया है, लेकिन जो
1: नहीं सर,
0: पुराने
1: मतलब
0: और मूल गीत
1: पुराना
0: का
1: वाला
0: जो भाव है वो बिल्कुल अलग है, वो जैसे दिल पर सीधे दस्तक देता है, वो आवाज़, वो
1: जी सर,
0: खनकती हुई आवाज़
1: जी सर,
0: निश्चित रूप से सभी सुनने वालों को प्यारी लगती है। तो क्या करते हैं आप?
1: मैं सर अब शॉपकीपर हूँ सर। हाँ
0: अच्छा, क्या क्या सामान बेचते हैं?
1: ये सर, इसमें कॉस्मेटिक्स है, गिफ्ट वगैरह है, और मेकअप से मुतालिक जितना भी है वो सभी है
0: अरे बहुत बढ़िया, तो
1: जी
0: आपके
1: सर।
0: पास जो भी ग्राहक आते हैं आप उनको भी बताते हैं कि हम नजीबाबाद रेडियो स्टेशन से जुड़े हुए
1: नहीं सर,
0: हैं।
1: वो बहुत से
0: हेलो।
1: जानते, बिना बिन बताए जानते हैं सर वे।
0: चलिए, खैर ताहिर जी, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से।
1: शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात के 10:30 हुए हैं और लीजिए श्रोताओं।

पेश है फिल्मी गीतों का व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित विशेष कार्यक्रम रात के हम सफर। श्रोताओं, रात के हम सफर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए हमारा नंबर है 9457078288। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 9457078288। इस नंबर पर आप जल्दी से कीजिए व्हाट्सएप मैसेज, लिख लिए अपनी पसंद का कोई गीत और ख़ास तौर से आज जो हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो आपको लिखनी है, ख़ास तौर से ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक्या जिसमें आपने किसी बुज़ुर्ग की सहायता की हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो। यानी ज़िंदगी में जब भी कभी आपको कोई ऐसा मौका मिला है कि आप किसी की मदद कर सकें, आप किसी के काम आ सकें, आप किसी की ज़िंदगी में कुछ लम्हों के लिए ही सही उसके सहायक बन सकें, ऐसे समय पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप याद कीजिए कोई ऐसा लम्हा, लिखकर भेज दीजिए, हम शामिल करेंगे आपका मैसेज। तो देखते हैं अब कौन श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि हमने पहले ही कहा है कि इसमें आप अपनी ज़िंदगी के वो लम्हे लिखकर भेजें जब आपने किसी की मदद की हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो, किसी की दुआएं आपने ली हो। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने हमें मैसेज भेजा है। बस ज़रूरत है कि उस विषय पर भी आप थोड़ा सा लिखकर भेजिए जो हमने आपके साथ शेयर किया है। ये मैसेज हमारे पास इशरत खान, शायरा बेगम, रऊफ़ खान और सावरीन बेगम के साथ साथ आज़म खान, ईशान खान, सैफ खान और अरहान खान के द्वारा भी भेजा जा रहा है। और ये मैसेज हमारे पास आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर और विशाल नवाकर। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायडे और आशीष मोरहेकर। ये मैसेज हमारे पास छत्रपति संभाजी नगर से आ रहा है। राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। तो आपका स्वागत है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि हम मैसेज आपसे मांग रहे हैं ये किसी उस विषय पर जब आपने किसी की मदद की हो, किसी बुजुर्ग की कोई भी मदद आपने किसी तरह की हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो। बहरहाल, तारे ज़मीन पर फिल्म का ये गीत सुनने की फरमाइश हमारे पास लिखकर भेज रहे हैं अलख राजपूत, अद्विक राजपूत, धनवी चौहान, इशिता चौहान, एम राजपूत, नन्हे मुन्ने सभी प्यारे बच्चे जो तारे ज़मीन पर फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। और इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास भेज रहे हैं ज़िला मुरादाबाद, ग्राम धोलापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इसरार और नरगिस खातून। ये मैसेज हमारे पास आदर्श नगर मलोट पंजाब से आ रहा है। राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना और निवान शर्मा का। तो लीजिए, आप सब की फरमाइश पर फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत तारे ज़मीन पर फिल्म से। आवाज़ है शान, आमिर खान और अरमान मलिक की।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना तारे ज़मीन पर फिल्म का ये गीत, और इस कार्यक्रम में आप भी अपनी पसंद का कोई गीत सुन सकते हैं। जुड़ जाइए हमारे साथ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से। हमारा मोबाइल नंबर है 9457078288। इस नंबर पर आप जल्दी से लिख भेजिए अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाकया जब आपने किसी ज़रूरतमंद की हो मदद, आपको कैसा लगा, ये अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। और जल्दी से मैसेज टाइप कीजिए, तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा विराम।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपका फिर से स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हम अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सुहाग का ये प्यारा सा गीत, जिसे सुनने के लिए फरमाइश कर रहे हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। और ये मैसेज हमारे पास भेज रहे हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से। देखिए, हमने जिस विषय पर आपसे बात करने की कोशिश की है उस विषय को भी आप लीजिए। जी हाँ, लिख दिया है हमारे कई कवाई सालपुरा जिला 12 राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं कि हमारे गांव में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जब हम गए तो वहाँ एक बुजुर्ग माता जी बहुत ज़्यादा बीमार थीं, उनके बेटों ने भी माता जी को खून नहीं दिया। ऐसी स्थिति में हमने सोचा अगर हमने अपने खून से किसी की जान बचाने की कोशिश कर दी तो बहुत अच्छा रहेगा, तो क्यों ना हम ये काम कर दें। और हमने वो खून वहाँ दे दिया। बहुत दिनों बाद माता जी बिल्कुल स्वस्थ हो गई और मेरे को उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी आशीर्वाद से मेरी आज लगभग 58 साल की उम्र हो गई है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और न जाने ऐसी ही कितनी दुआएं मेरे साथ है। यकीनन बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी की मदद करते हैं तो भले ही हमें प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना मिले, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो दुआएं, जो आशीर्वाद, जो ईश्वर की रहमत और कृपा हमें मिलती है वो यकीनन अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं। भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई मंसूरी और आपके पूरे परिवार के लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहल्ला बारादरी महमूद खा रामपुर से हमारे साथ हैं रफत साहब और आपके सब साथी। आपने भी बचपन के किसी ऐसे वाक्य को लिखा है कि वो दौर क्या दौर था जब हम अपने माता पिता भाइयों से 10 पैसे 20 पैसे लिया करते थे और दुकान पर जाकर चीज़ खाया करते थे। ऐसे समय में वो ज़माना हमें बहुत याद आता है जब 10 और 20 पैसे की चीज़ें मिल जाया करती थी। आज 10 और 20 रुपये में भी वो सामान नहीं मिल रहा है। तो खाने पीने की चीज़ें बहुत इतनी महंगी हो गई हैं कि अब जब कुछ सामान लेने के लिए हम जाते हैं तो 10-20 रुपये तो खैर क्या 100-200 रुपये भी कम पड़ जाते हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। जैसे जैसे पैसे की कीमत बढ़ रही है, चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, बस घुमा फिरा के लगभग हम आते उसी दायरे में हैं। पहले इनकम भी उतनी हुआ करती थी और उसके बाद खर्च भी वैसे ही होते थे। देखिए, एक और मैसेज हमारे पास ये लिखकर भेज दिया है अलख राजपूत, अद्विक राजपूत, धनवी चौहान, इशिता चौहान और आपके सभी परिवार के बच्चों ने। ये लिखते हैं कि मुझे एक बूढ़े व्यक्ति मोबाइल की कोई बात याद आती है, मोबाइल की शॉप पर मिले। वो बूढ़े व्यक्ति अपना पुराना कीपैड वाला फ़ोन दिखाने आए थे। शॉपकीपर ने फ़ोन ऑन तो कर दिया पर ये कहा, बाबा इसमें बैटरी डलवा लेना, ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, इसकी बैटरी ख़राब है। मुझे स्थिति देखकर लग रहा था शायद फ़िलहाल तो वो बैटरी नहीं डलवा पाएंगे। मैंने शॉपकीपर से कहा कि भैया बैटरी डाल दो, मैं इसके पैसे दे दूंगी। तो शॉपकीपर ने जितने पैसे में वो बैटरी आई थी सिर्फ उतने ही पैसे मुझसे लिए। वो भी समझ गए कि मैं एक उपकार कर रही हूँ और वो बाबा उसे शॉपकीपर को और मुझे बहुत दुआएं देने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, और ईश्वर करे मैं आगे भी और लोगों की मदद करूं, ईश्वर मुझे लोगों की मदद करने के लिए सक्षम बनाए, ऐसा लिख रही हैं रितु चौहान। और पसंदीदा गाना भी आपने बताया है, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। जी हाँ, बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। तो आपके जैसे और भी बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी की कोई ऐसी याद हमें लिखकर भेजिएगा जिसमें आपने किसी की मदद की हो। देखते हैं और हमारे कौन साथी जुड़ गए हैं। ये रसूलपुर नगला ज़िला बिजनौर से पंकज शर्मा, दीपक नामदेव और आपका पूरा परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है मैसेज के माध्यम से। कह रहे हैं कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, तो हम सभी श्रोताओं से कहना चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक पेड़ ज़रूर लगाएं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और मैसेज हम शामिल कर ले रहे हैं। गांव फ्रांसी, ज़िला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है हमारे साथ। लिखते हैं, हमारे गांव में एक आदमी 25 बार रक्तदान कर चुके हैं, उनकी सेहत भी बहुत बढ़िया है। चलिए, ये तो उनकी प्रशंसा हुई। हमने कहा आप ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो भी हमारे साथ साझा कीजिएगा। आप जल्दी से लिखिए मैसेज, हम आपको सुनवा रहे हैं सुहाग फिल्म का ये प्यारा सा गीत, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम रात के हम सफ़र, और जल्दी से आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ जाइए। और देखिए, ये मैसेज हमारे पास केशरी सिंह राजपूत बैसरिया ज़िला भोपाल मध्य प्रदेश से आया है। लिखते हैं कि परोपकार करना बहुत ही अच्छी बात है, परोपकार करना भी चाहिए, किसी की मदद करना चाहिए तन से मन से और हो सके तो धन से भी। किसी भूखे को भोजन भी खिला देना चाहिए, चिड़ियों को दाना डालना चाहिए, चींटियों को दाना डालना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे काम जो उपकार के हैं वो सब कर देने चाहिए। जीवन में जो दुआएं कमाता है वो धन से ज़्यादा बड़ी चीज़ कमा लेता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मैसेज और हमारे साथ शेयर कर रहे हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिक वर्मा और दीपाली वर्मा। आप लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हमारे साथ जुड़े, और ये मैसेज हमारे पास आया है सहारनपुर से आशा नारंग और सुरेश नारंग का। रितु चौहान जी ने मैसेज किया है, ये मैसेज आप हमें कर रही हैं, और लीजिए आप सबकी पसंद पर ये जो गीत आपने पर फरमाइश की है, मुकेश की आवाज़ का गीत सुनने की फरमाइश की है, तो हम आपको सुनाएंगे ये गीत। और ये मैसेज हमारे पास आ गया है अब्दुल खालिक, अब्दुल मालिक, अब्दुल तालिब, मोहम्मद ताहिर, आफीफ और आपका पूरा परिवार। पत्थर वाली मस्जिद जलालाबाद ज़िला बिजनौर से हमारे साथ जुड़े हैं, और ये है हमारे साथ, इन्होंने अभी तक इसमें नाम अपना शामिल नहीं किया है लेकिन मैसेज बहुत अच्छा लिखा है। सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख और करुला, मुरादाबाद से अयूब खान और इरम गुड़िया। मैसेज में लिखते हैं कि नेकी का फल देर से ही सही मगर मिलता ज़रूर है। नेकी का ऐसा अमल है जो इंसान की पहचान को बुलंद करता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं या किसी का दुख बांटते हैं तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जिन लोगों के लिए हम दिल से भलाई करते हैं वही लोग कभी कभी एहसान फरामोश निकल जाते हैं और हमारी नेकी को भूल जाते हैं। मगर सच्ची नेकी तो वही होती है जो किसी की तारीफ़, शुक्रिया या बदले की उम्मीद के बिना की जाए। इंसान का फ़र्ज़ है कि वो अच्छाई के रास्ते पर चलता रहे, क्योंकि लोगों की याददाश्त कमज़ोर हो सकती है लेकिन ऊपर वाला किसी की भलाई को कभी नहीं बोलता। नेकी का फल देर से ही सही मगर मिलता ज़रूर है। इसलिए अगर आप किसी की भलाई करना चाहते हैं तो दिल खोल कर कीजिए। भलाई का जवाब बुराई से मिले उससे घबराइएगा मत। तब भी अपने अच्छे किरदार को बिल्कुल ना बदलें, नेकी करते रहिए, मोहब्बत बांटते रहिए और इंसानियत का दामन थामे रखिए। ऐसी ही बातों से जुड़ा है ये गीत मुकेश की आवाज़ का, बस यही अपना।

जाते हैं तो दिल खोल कर कीजिए, भलाई का जवाब बुराई से मिले उससे घबराइएगा मत, तब भी अपने अच्छे किरदार को बिल्कुल ना बदलें, नेकी करते रहिए, मोहब्बत बांटते रहिए और इंसानियत का दामन थामे रखिए। ऐसी ही बातों से जुड़ा है ये गीत मुकेश की आवाज़ का, बस यही अपराध।

रात के हम सफर कार्यक्रम में लीजिए अब एक और मैसेज हम शामिल कर ले रहे हैं कि एक बार हम हरिद्वार से वापस लौट रहे थे, बस में एक आदमी जो बोल रहा था मेरी जेब कट गई है, मेरी कुछ मदद कर दीजिए, तो हमने उसकी मदद की। ये लिख रहे हैं शिव कुमार गीता रुड़की से हैं। और एक और मैसेज हमारे साथ मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और आपका पूरा परिवार शेयर कर रहे हैं। और ये मैसेज हमारे पास आया है स्नेह रेडियो श्रोता संघ ग्राम मिरतला जिला महोबा उत्तर प्रदेश से, सोनू भास्कर, मोनू भास्कर, सुषमा, रश्मि, दीपिका, देवांश और भास्कर पूरा परिवार हमें मैसेज कर रहे हैं। लीजिए आप सबकी फरमाइश पर एक और नगमा हम सुनवा देते हैं, कभी कभी फिल्म का आवाज़ है मुकेश की।

कभी कभी फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम रात के हम सफर अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के

0: 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे।
1: अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
3: इंडिया डेवलपमेंट असिस्टेंस,
4: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
3: तीस्ता इशू।
2: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
5: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
2: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।